90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज बुधवार है। विक्रम संवत 2083 के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आठवीं तिथि और शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। इस समय 7:04:35 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, यही कामना सुबह सवेरे आपके लिए है हमारी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओं, किसी ने कहा है, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। जी हाँ, बारिश का सुहाना सा मौसम ऐसा ही तो है ना। गुनगुनाती हुई ये बूंदें धरती पर आती हैं और जल तरंग बज उठता है, एक संगीत पूरी धरती पर छा जाता है। बहुत ही सुंदर सुहाना सा मौसम है बारिश का, जो आ चुका है। बहुत इंतज़ार के बाद ये बारिश आई है, तो जाहिर सी बात है कि हर मन तृप्त है, हर मन खुश है। धरती का मन भी, जीव जंतुओं का मन भी, पेड़ पौधों वनस्पतियों का मन भी, और हम इंसानों का मन भी। तो बारिश का खूब आनंद उठाइए, इस मौसम को एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। ये बारिश के मौसम में बासी खाना ना खाएं, क्योंकि बहुत जल्द खाना ख़राब हो जाता है। बारिश के मौसम में बाहर की चीज़ें भी कम खाएं, क्योंकि मालूम नहीं कब का बना हुआ ये भोजन होता है या किस तरह का उसमें जो खाद्य पदार्थ है वो प्रयोग में लाया जाता है। तो थोड़ा सी सतर्कता अगर आप बरतते हैं तो इस मौसम का पूरा पूरा आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ ही बारिश के मौसम को जब हम देखते हैं, चारों तरफ हरियाली का वातावरण होता है, धुला धुला सा आसमान होता है, धुली धुली सी फिज़ा होती है, सब कुछ नहाया हुआ धुला पुछा सा, तो एक और बात जीवन से उठकर हम तक पहुंचती है कि जीवन में मौसम कोई भी हो, कितनी भी तपिश हो, फुहारें पड़ती हैं, सब कुछ धुल जाता है, जीवन फिर से नया हो जाता है, जीवन फिर से हरा भरा हो जाता है। तो इस उम्मीद को जगाए रखिए अपने भीतर कि अगर कठिनाइयां हैं जीवन में तो ये तपिश ख़त्म होगी और रिमझिम फुहारें आपके जीवन पर गुनगुनाती हुई पड़ेंगी और जीवन गा उठेगा, गुनगुना उठेगा और सारी तकलीफ़ें धुल जाएंगी, पुछ जाएंगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आइए बुधवार के इस दिन में प्रवेश करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज। सबसे पहले तो आप जीवन सौरभ कार्यक्रम सुनते हैं, रोज़ की तरह आज भी इसे हम प्रसारित करेंगे आपके लिए। उसके बाद अक्षय निधि कार्यक्रम आप सुनेंगे, फिर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम होगा, इसमें आज हम बात करेंगे बरकतुल्ला भोपाली की, इतिहास के पन्नों से। ये कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे होगा, इसमें चर्चा का विषय होगा आज गोंड राज्य चंद्रपुर का इतिहास। टेक गुरु कार्यक्रम में AI पर बातचीत होगी सुबह 9 बजे। 9:30 बजे भारत विभूति कार्यक्रम में हम बात करेंगे माधव राव सप्रे की। नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:30 पर काव्य गुंजन के अंतर्गत सुनिएगा रश्मि रथी का 6वां भाग। हमारे वैज्ञानिक, इस कार्यक्रम में 11 बजे हम बात करेंगे PK अयंगार की और 11:30 बजे सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। सुहाने से इस मौसम का आनंद लीजिए, सुबह सवेरे अगर जाग चुके हैं तो अच्छी सी एक चाय पीजिए और साथ में रेडियो आज़ाद हिंद की जो यात्रा है उसको भी जारी रखिए। विविध कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जीवन सौरभ कार्यक्रम से। एक छोटा सा अंतराल लेंगे, उसके बाद आप सुनेंगे इस कार्यक्रम को।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।
2: एक समय की बात है, एक महिला महात्मा जी के पास आई और उसने कहा कि वे उनके बेटे से कहें कि वो शक्कर खाना छोड़ दे। महात्मा जी ने उस महिला को अपने बच्चे के साथ एक हफ्ते बाद आने के लिए कहा। पूरे एक हफ्ते के बाद वो महिला अपने बच्चे के साथ महात्मा जी के पास वापस आई और महात्मा जी ने उसके बेटे से कहा, बेटा कृपया शक्कर खाना छोड़ दो। जाते जाते उस महिला ने महात्मा जी का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए जैसे ही मुड़ रही थी उसने महात्मा जी से पूछा कि उन्होंने यही शब्द एक हफ्ते पहले उसके बेटे से क्यों नहीं कहे थे। महात्मा जी ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, क्योंकि एक हफ्ते पहले मैंने शक्कर खाना बंद नहीं किया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि आपको दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। यही महात्मा के शब्द थे। हम सभी में दुनिया बदलने की ताकत है, पर इसकी शुरुआत खुद से ही होती है। कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। हमें खुद को तैयार करना होगा, अपनी काबिलियत को अपनी ताकत बनाना होगा, अपने रवैये को सकारात्मक बनाना होगा, अपनी चाह को फौलाद करना होगा और तभी हम वो हर एक बदलाव ला पाएंगे जो हम सचमुच में लाना चाहते हैं। दोस्तों, इस बात को महात्मा ने बड़े ही प्रभावी ढंग से कहा, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो चलिए, क्यों ना आज से ही हम महात्मा की राहों पर चलने की कोशिश करें और पहले खुद में वो बदलाव लाएं जो आप लोगों में अपने आसपास में देखना चाहते हो।
1: जीवन सौरभ।
3: न जी भर के देखा न कुछ

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आज़ाद हिंद के साथ। श्रोताओं, अब लीजिए, आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: पंच पादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् अथे मे अन्य उपरे विचक्षणम् सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितम्। आयन मास ऋतु पक्ष दिन और रात रूपी पांच पैरों वाला मास रूपी 12 आकृतियों से युक्त तथा जल को बरसाने वाले पिता रूप सूर्य देव दिव्य लोक के आधे हिस्से में रहते हैं, ऐसी मान्यता है। अन्य विद्वानों के मतानुसार ये सूर्य देव ऋतु रूप 6 अरों तथा अयन मास ऋतु पक्ष दिन रात एवं मुहूर्त रूपी 7 चक्रों वाले रथ पर आरूढ़ हैं। पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तस्थुर्भुवनानि विश्वा तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सनाभिः। अयन मासादि 5 अरों वाले इस कालचक्र रथ में समस्त लोक विद्यमान हैं। इतने लोकों का भार वहन करते हुए भी इस चक्र का अक्ष धुरा न गरम होता है और न टूटता है। सनेमि चक्र मजरम विवावृत उत्तानायाम दशयुक्ता वहन्ति सूर्यस्य चक्षु रजसैत्यावृतम् तस्मिन्नार्पिता भुवनानि विश्वा। नेमि से युक्त कभी क्षय न होने वाला सृष्टि चक्र सदैव चलता रहता है। अति व्यापक प्रकृति के उत्पन्न होने पर इसे 10 घोड़े, 5 प्राण एवं 5 उपप्राण, 5 प्राण एवं 5 अग्नियां आदि चलाते हैं। सूर्य रूपी नेत्र का प्रकाश जल से आच्छादित होकर गतिमान होता है, उसमें ही संपूर्ण लोक विद्यमान हैं। सप्त थमाहुरेकजम् षडिद्यमा ऋषयो देवजा इति तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः। एक साथ जन्मे जोड़े से रहने वाले 6 और 7वां यह सभी एक काल अथवा परमात्म चेतना से उत्पन्न हैं। यह देवत्व से उपजे ऋषि हैं। वे सभी अपने बदले हुए रूपों में अपने अपने इष्ट प्रयोजनों में रत अपने अपने धामों क्षेत्रों में स्थित रहकर गतिशील सक्रिय हैं। स्त्रियः सतीस्ताम् उमे पुंस आहुः पश्य दक्षिणवान्न विचेतदन्धः कविर्यः पुत्रः स इमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पिता सत। ये स्त्रियां हैं फिर भी पुरुष हैं, यह तथ्य दृष्टि संपन्न ही देख सकते हैं। दूरदर्शी पुत्र ही इसे अनुभव कर सकते हैं। जो यह जान लेता है वह पिता का भी पिता हो जाता है। अवह परेण पर एना वरेण पदावत्सम बिभ्रति गौरुदस्थात सा कद्रीची कम स्विदर्धम परागात क्व स्वित्सूते नहीं यूथे अंतः। गौवे पोषक किरण द्युलोक से नीचे की ओर तथा इस पृथ्वी से ऊपर की ओर सतत गतिमान है। यह बछड़े जीवन तत्व को धारण किए हुए किस लक्ष्य की ओर जाते हैं, यह किस आधे भाग से परे निकलकर जन्म देती हैं, यहां समूह के मध्य तो नहीं देती।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

श्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, भोर की पहली किरण जब धरती को आलोकित करती है तब मन भी ईश्वर के स्मरण से एक नई ऊर्जा, एक नई शांति का अनुभव करता है। तो आइए इसी पावन वेला में भक्ति के सुरों का दीप जलाएं।

श्रोताओं, भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, वो तो हर उस हृदय में जागती है जहां प्रेम, विश्वास और करुणा का वास हो।

श्रोताओं, जब मन ईश्वर के चरणों में ठहर जाता है तब जीवन की सबसे कठिन राह भी सहज लगने लगती है। आइए श्रद्धा के इन सुरों में डूबकर कुछ पल ईश्वर को याद करें।

श्रोताओं, संगीत जब भक्ति का रूप ले लेता है तो वो केवल कानों तक नहीं पहुंचता, वो आत्मा तक पहुंच जाता है और हमारा भीतर प्रकाश से भर जाता है।

श्रोताओं, प्रभु का नाम मन को स्थिर करता है और हमें आशा और विश्वास से भर देता है। भीतर का सारा अंधियारा समाप्त हो जाता है और हम नए विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। यही नाम स्मरण की महिमा है।

श्रोताओं, भक्ति का सबसे बड़ा स्वर प्रेम का स्वर है, और इस संसार में प्रेम से बड़ा कोई उपहार नहीं, क्योंकि प्रेम आपको मनुष्य से जोड़ता है, प्रेम आपको इस प्रकृति से जोड़ता है, प्रेम आपको ईश्वर से जोड़ता है।

श्रोताओं, हर नया सवेरा ये संदेश देता है कि ईश्वर ने हमें एक और सुंदर दिन जीने का अवसर दिया है। एक नया दिन, एक कोरा दिन आपके हिस्से आया है। अब इस दिन में आप क्या रचेंगे, इस दिन को आप किन बातों से भरेंगे, ये आपको तय करना है। तो ईश्वर का आभार करते हुए भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम से हम अनुमति लेते हैं। इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। बरकतुल्ला भोपाली एक ऐसा नाम है जिससे सब वाकिफ हैं। भारत की आजादी के लिए उनके द्वारा जीवन भर किए अथक प्रयासों और उनके हैरतअंगेज कारनामों से अधिकांश लोग अपरिचित हैं। बरकतुल्ला भोपाली ने भारत की स्वतंत्रता के लिए विश्व भर का समर्थन जुटाने हेतु संसार भर में कई इनकलाबी दौरे किए, साथ ही विश्व के अधिकांश मुल्कों में फैले ब्रिटिश जैसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव हिलाकर अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी। सन 1857 के पूर्व का स्वतंत्रता संग्राम वो बुनियादी स्वतंत्रता संग्राम था जिस पर आगे चलकर स्वतंत्रता की मजबूत इमारत खड़ी हुई। बरकतुल्ला भोपाली का जन्म भोपाल में ही हुआ और भोपाल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो कुछ समय बम्बई में रहकर लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन में रहते हुए उन्होंने भारत और लंदन की आर्थिक स्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजों की खुशहाली और संपन्नता वास्तव में भारत से लूटी गई दौलत की बिना पर है। दिन ब दिन उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा और वतन को गुलामी से आजाद कराने की भावना जोर पकड़ती गई। बरकतुल्ला भोपाली ने लंदन की सभाओं और सम्मेलनों में धार्मिक व्याख्यानों के साथ भारत की स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर तन मन धन से स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। उनके भाषण और लेख लंदन के लोकप्रिय और प्रतिष्ठित अखबारों में प्रकाशित होने लगे। बरकतुल्ला भोपाली ने बहुत प्रभावी ढंग से अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण और दमनकारी नीतियों को खुलकर प्रचारित किया। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों में सन 1857 से लेकर उन सारे जुल्मों का क्रमवार उल्लेख किया जब से हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर बर्तानिया शासन के अधीन हुआ। उन्होंने बर्तानिया को दोषपूर्ण पॉलिसी और उनकी दास्ता के अंतर्गत आने वाले देशों में उनकी बर्बरता, उपेक्षा, हिंसात्मक गतिविधियां और उनकी स्वार्थ सिद्धि, साथ ही अन्यायपूर्ण नीतियों और अव्यवस्थाओं पर चोट की। बरकतुल्ला भोपाली के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उन्हें लंदन से बाहर निकालने के फैसले किए जाने लगे। इससे पहले कि उन पर सीधे कोई कार्यवाही होती, बरकतुल्ला अमेरिका प्रस्थान कर गए। अमेरिका में भी उन्होंने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए लोगों की मानसिकता तैयार करने का काम शुरू किया। अमेरिका और एशिया के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से वो क्रांति की लौ भड़काते रहे।

सन 1909 में वो फ्रांस होते हुए इस्तांबुल और फिर काहिर गए। यहाँ भी उन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं और जनसंपर्क के माध्यम से भारत की आजादी के लिए एकजुट होने का आह्वान किया और फिर जापान पहुंचकर अंग्रेजों के खिलाफ वातावरण तैयार करने के लिए बागियाना गतिविधियों में संलग्न हो गए। बरकतुल्ला भोपाली हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। वर्षों की मेहनत और कोशिशों से हजारों की तादाद में न केवल अमेरिका बल्कि कनाडा और मैक्सिको जैसे क्षेत्रों में भी बसे हिंदुस्तानियों को उन्होंने गदर पार्टी की विचारधारा और उसके उद्देश्य से जोड़ा। गदर पार्टी का उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत का तख्ता पलटकर मुल्क को आजाद करना था। गदर पार्टी के कामों में बरकतुल्ला के जिम्मे जगह जगह दौरे करना, सम्मेलन और सभाओं में भाषण देना, प्रचार प्रसार करना था। सन 1914 की नई इनकलाबी पार्टी बर्लिन कमेटी आजाद हिंदुस्तान लीग यूरोप एशिया का गठन हुआ। बरकतुल्ला भोपाली इसके लिए जिम्मेदार एवं महत्वपूर्ण सदस्य थे। उनके जादुई शब्दों से भरे भाषणों ने ऐसा प्रभाव डाला कि हजारों हिंदुस्तानी अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए तैयार हो गए। बरकतुल्ला भोपाली अनेकों इनकलाबी संगठनों से जुड़े और विश्व विख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा के गुप्त मिशन में भी उनके साथ रहे। वो इंडो जर्मन तुर्क गठबंधन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिसका उद्देश्य हिंदुस्तान पर काबिज अंग्रेजी हुकूमत पर सीधा आक्रमण करने का था। अफगानिस्तान में जो फौज हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए तैयार की गई थी उसमें लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर उन्हें नियुक्त किया गया। बरकतुल्ला भोपाली नस्ल रंग भेद की भावना के कट्टर विरोधी और भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता के जबरदस्त पक्षधर थे।

29 अक्टूबर सन 1915 को काबुल में इनकलाबी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिंदुस्तान की प्रथम निर्वाचित सरकार के गठन का निर्णय लिया गया था। 1 दिसंबर सन 1915 को भारत की निर्वाचित सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति और बरकतुल्ला भोपाली को भारत निर्वाचित सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। देश की स्वतंत्रता के लिए निर्वाचित सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वर्ष 1927 में ब्रुसेल बेल्जियम में साम्राज्य दुश्मन आलमी कॉन्फ्रेंस के प्रथम सम्मेलन में बरकतुल्ला भोपाली गदर पार्टी के प्रतिनिधि की हैसियत से सम्मिलित हुए। यहीं पर उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। पंडित नेहरू ने अपनी जीवनी मेरी कहानी में लिखा है कि हिंदुस्तान के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता प्रेमी और भारत की प्रथम निर्वाचित सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री से मेरी साम्राज्य दुश्मन आलमी कॉन्फ्रेंस के प्रथम सत्र में पहली और आखिरी मुलाकात हुई। मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली ने वतन की स्वतंत्रता के खातिर लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, हांगकांग, शंघाई, बैंकॉक, सिंगापुर, कोलंबो, पेरिस, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को और भी कई जगहों का भ्रमण किया। वो न केवल जहां गश्त इनकलाबी थे बल्कि जंगे आजादी के महानायक भी थे। अंत में वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, जहां उन्होंने गदर पार्टी के दफ्तर युगांतर आश्रम में ही ठहरना पसंद किया। अब वो बहुत बूढ़े और बीमार हो चुके थे, दिनों दिन उनका स्वास्थ्य गिरता गया। 27 सितंबर सन 1927 की रात उनकी जीवन की आखिरी रात थी। जीवन के आखिरी क्षणों में उन्होंने पूरे होशोहवास में कहा था, सारा जीवन मैं पूरी ईमानदारी से अपने वतन की आजादी के लिए संघर्ष करता रहा। ये मेरी जबरदस्त खुशकिस्मती थी कि मेरा ये तुच्छ जीवन मेरे प्यारे वतन के काम आया। आज इस जिंदगी से रुखसत होते हुए जहां मुझे ये अफसोस है कि मेरी जिंदगी में मेरी कोशिशें कामयाब ना हो सकी, वहां मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे बाद मेरे मुल्क को आजाद कराने के लिए लाखों आदमी आज आगे बढ़ आए हैं, जो सच्चे बहादुर और जाबाज हैं। मैं शांति के साथ अपने प्यारे वतन की किस्मत इनके हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। बरकतुल्ला भोपाली नहीं रहे, परंतु उनकी आजादी का जज्बा अमर है। ऐसे महान वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम के लिए इंतजार करें बस जरा सा।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से की 16वीं कड़ी तक पहुंच गए हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित देवगढ़ किले के बारे में। हमने बताया कि किस तरह वो किला ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, जहां पर पानी के सप्लाई के लिए उस जमाने में टेराकोटा की पाइपलाइंस का इस्तेमाल किया गया था। किले में स्थित राजा की कचहरी, बादल महल, खजाना, हाथी खाना, बारूद खाना और अनेक इमारतों के बारे में हमने जाना। इसके साथ ही किले की सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षा दीवार और उसमें स्थित बुर्जों की महत्वपूर्ण लोकेशंस के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। किले के आसपास स्थित बावड़ियों, किस्बन महल और जाटवा की समाधि के साथ अनेक शिव मढ़ियाओं के बारे में हमने आपको बताया। हमने बताया कि किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक सुरक्षा चक्र, जैसे आसपास छोटे किले या गढ़ी और उसके बाद घना वन, नदियां और अनेक किलों से कैसे सुरक्षा जाल बिछाया जाता था, जो कि सूचना तंत्र की तरह भी काम आता था। ये सारी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई अपनी विषय विशेषज्ञ मशहूर पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना के जरिए। स्वागत है पूजा जी आपका आज भी हमारे इस एपिसोड में।
3: नमस्कार
2: पूजा जी। देवगढ़ के बारे में तो आपने हमें विस्तार से पिछले एपिसोड में बता दिया था, आज हम गोंड शासन के किस किले के बारे में, किस शहर के, किस नगर के बारे में चर्चा करेंगे?
3: पिछली कड़ियों में बात करते हुए हमने गढ़ा मंडला के गोंड राज्य के बारे में जाना
2: जी,
3: जो कि जबलपुर और उसके आसपास मध्य प्रदेश में स्थित था, और उसके बाद हमने छिंदवाड़ा और उसके आसपास स्थित देवगढ़ के किले के बारे में जाना
2: जी,
3: और अब बारी है अगले गोंड राजवंश की, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था।
2: अच्छा,
3: तो ये जो चंद्रपुर है ये बड़ा ही प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है
2: जी,
3: और वर्तमान में इसे चांदा के नाम से जाना जाता है, हालांकि फिर से इसका नाम बदल कर चंद्रपुर कर दिया गया है और अब ये महाराष्ट्र का एक जिला भी है
2: जी, बिल्कुल।
3: तो गोंड इतिहास में अगर हम देखें तो कथा आती है कि कोल नाम का एक पराक्रमी गोंड था, जो कि जुन गांव मोवाड़ के आसपास किसी क्षेत्र में रहता था
2: जी।
3: तो उसने अपने पराक्रम से मानिकगढ़ के किले को जीत लिया और यहीं से गोंड राज्य की स्थापना हुई, ऐसे तथ्य हमको लोक कथाओं में मिलते हैं। उसने अपने पराक्रम से मानिकगढ़ के किले को जीत लिया और यहां से चंद्रपुर के गोंड राज्य की स्थापना हुई, ऐसा हमें कथाओं से पता चलता है।
2: अच्छा,
3: लेकिन ऐतिहासिक तथ्य जो है उसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है भीम बल्लाल सिंह का, जिनको राजा भीका भी कहते हैं
2: जी,
3: और इनका जो शासनकाल है वो है 13वीं शताब्दी में, यानी 1247 से लेकर 1272 ईस्वी तक
2: जी।
3: तो जो भीम बल्लाल सिंह है इनको ऐतिहासिक रूप से चांदा राजवंश का संस्थापक माना जाता है, और कहीं कहीं ये भी आता है कि जो कोल था उन्होंने सिरपुर की जागीर भीम बल्लाल सिंह को सौंप दी थी, इसलिए उनको राज्य करने का अवसर मिला और उन्होंने चंद्रपुर के गोंड राज्य की शासन व्यवस्था संभाली।
2: अच्छा,
3: इसी राजवंश में एक राजा हुए खंडाक्या बल्लाला राजा। तो जब उन्होंने चंद्रपुर की शासन व्यवस्था संभाली तो कहा जाता है कि उन्हें सिरपुर राजधानी के रूप में जच नहीं रहा था।
2: अच्छा,
3: और उन्हें लगता था कि ये भौगोलिक, आर्थिक और वित्तीय कारणों से ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया
2: जी,
3: और सिरपुर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा नदी के किनारे पर उन्होंने एक नया शहर बसाया
2: जी।
3: सबसे पहले यहाँ पर एक किला बनाया
2: जी,
3: और इस जगह को सुरक्षित कर दिया, तो इस शहर का नाम पड़ा बल्लार शाह।
2: तो क्या ये वही वल्लार शाह है जो कि नागपुर और हैदराबाद के बीच पड़ता है और चंद्रपुर के बिल्कुल नजदीक?
3: जी हाँ, ये वही वल्लार शाह स्टेशन है।
2: अच्छा,
3: आप कभी दक्षिण की तरफ जा रहे हो
2: जी, जी
3: तो ट्रेन यहाँ बड़े लंबे समय तक हॉल्ट करती
2: जी,
3: है
2: जी।
3: वो आज भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से अगर आप सिकंदराबाद जाना चाहते हैं
2: जी, जी।
3: तो उसके लिए एक रूट है, अगर आप चेन्नई जाना चाहते हैं तो दूसरा रूट है, और केरल और कर्नाटक के लिए भी रूट है
2: जी, बिल्कुल।
3: तो आज भी यहाँ पर एक जंक्शन जैसा है
2: जी।
3: तो बल्लार शाह इस जगह के महत्व को 600-700 साल पहले भी समझ पाए थे
2: जी, बिल्कुल।
3: और उन्होंने यहाँ राजधानी स्थानांतरित कर ली। तो उस जमाने में भी जो पैदल मार्ग था वो यहीं से होकर गुजरता था, और बल्लार शाह उस समय भी एक जंक्शन की तरह था
2: जी।
3: जब यहाँ राजधानी स्थानांतरित हो गई तो धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी
2: जी।
3: और दूर दूर से आकर लोग यहाँ पर व्यापारी बसने भी लगे
2: जी।
3: तो ये घनी आबादी वाला एक शहर हो गया जहाँ पर विभिन्न स्थानों से आए हुए लोग बस गए थे।
2: तो श्रोताओं, देखिए पूजा जी हमें इतनी अच्छी जानकारियां देती कि हमें हमारे सोचने का जो नजरिया है वो भी कितना विस्तृत होता चला जा रहा है कि हमारे पूर्वज इतने पहले भी उनकी सोच कितनी बड़ी थी कि वो जानते थे कि यदि किसी जगह से, आज तो हम ये निश्चित रूप से जानते हैं कि वो एक जंक्शन है, वहां से ट्रेनें विभिन्न मार्गों की होकर के गुजरती हैं, लेकिन तब उन्हें ये मालूम था कि दक्षिण जाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। तो उत्तर और दक्षिण के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु था और व्यापारिक स्थल बनाया, तो क्या खूब है ये बात जी। पूजा जी आगे चलते हैं।
3: इसके बाद उनका पोता हुआ हीर सिंह।
2: अच्छा,
3: और हीर सिंह ने जब शासन व्यवस्था संभाली तो उसने अपने अच्छे राजनीतिज्ञ होने का और युद्ध कौशल में पारंगत होने के बहुत से प्रमाण दिए। उसका शासनकाल भी बहुत अच्छी स्मृतियों से जुड़ा हुआ है
2: जी।
3: खास बात जो हीर सिंह की थी वो ये थी कि उन्होंने कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम सब जानते हैं कि जो गोंड जनजाति है
2: जी,
3: उसका कृषि का अपना एक परंपरागत तरीका है
2: जी, जी।
3: वह जंगल में ही कृषि करते हैं और एक स्थान पर करते हैं, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पर करते हैं, तब तक वहां जंगल उगता है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। लेकिन ये वो समय था जब वास्तव में समय बदल रहा था
2: जी।
3: और कृषि के आधुनिक तरीकों को भी अपनाना आवश्यक था
2: जी।
3: क्योंकि बहुत से लोग अब वनों को छोड़कर नगर में बस गए थे
2: जी।
3: या नगरों के पास जो ग्राम थे उनमें बस गए थे, तो अब खेती की तकनीकों में अंतर लाना समय की मांग थी। तो हीर सिंह ने समय की इस मांग को समझा और उन्होंने कृषि में क्या आधुनिकता लाई जा सकती है, क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, इस पर बहुत काम किया। इसका परिणाम ये हुआ कि उस समय का जो गोंड समाज था उसकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ, जो अब नगरों में आकर रहने लगा था या ग्रामों में आकर रहने लगा था।
2: तो पूजा जी, किस तरह के सुधार किए, किस तरह की आधुनिकता की आप बात कर रही हैं?
3: जी हाँ, गोंड काल में जो कृषि में सुधार हुए उसमें बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं
2: जी।
3: जैसे कि हम देखते हैं कि गोंड राजवंश में ही एक और राजा हुए हैं, राजा धुंडिया राम शाह।
2: अच्छा,
3: जिनका समय है 16वीं सदी में, 1597 से लेकर 1622 तक। तो इनके समय में हमें दिखता है कि बहुत से जो शैव लिंगायत थे वो आकर चंद्रपुर राज्य में बस गए थे
2: जी।
3: तो वे लोग खेती के अच्छे जानकार थे
2: जी।
3: राम शाह धुंडिया ने इनको भी खेती के कार्यों में कैसे और अधिक आधुनिकता लाई जा सके इस काम पर लगाया
2: जी।
3: और लगातार जो चंद्रपुर राज्य था वो फिर कृषि के आधार पर बहुत प्रगति करता चला गया। इसके साथ ही एक और जो हमको इनका कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है वो ये कि बहुत से तालाबों का निर्माण हुआ। कृषि के लिए जल आपूर्ति की तो आवश्यकता होगी ही,
2: और साथ ही वो जो क्षेत्र है वहाँ जल की कमी भी हमेशा बनी रहती, काफी गर्म जगह
3: जी हाँ। और हमने देखा था ना कि जब गढ़ा मंडला की बात हुई थी तब भी रानी दुर्गावती ने अनेक तालाबों का निर्माण कराया था जी। और उस समय भी हमने बात की थी कि जो गोंड है उनको जल प्रबंधन का बड़ा ही अच्छा ज्ञान है, और यहाँ पर क्योंकि आपने जैसे कहा कि पानी की बहुत कमी है तो कुछ नई तकनीक भी हमको देखने को मिलती है कि कम से कम निर्माण में अधिक से अधिक पानी कैसे संग्रहित किया जा सकता है प्राकृतिक रूप से तालाबों में। उसके भी कई सारे उदाहरण हमको यहाँ दिखाई देते हैं। तो जैसे कि चंद्रपुर है, चंद्रपुर के आसपास जो है एक हमको रामाला तालाब दिखाई देता है और इसका निर्माण भी खांडक्या बल्लाल शाह ने कराया था।
2: अच्छा।
3: और इसके अलावा उनके जो वंशज हैं राम शाह, उन्होंने भी तालाब को आगे और सुदृढ़ किया, तो फिर नाम कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर रामाला पड़ गया था।
2: अच्छा।
3: जी हाँ। और हीर शाह जो हुए, उन्होंने भी कोमटी नाम का एक तालाब बनाया, और उन्होंने ही नहीं, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने भी एक घुटकला नाम का एक तालाब बनाया। इस तरीके से हमको चंद्रपुर में ही 6 तालाब मिल जाते हैं। तो अनेक तालाब बनाए गए, और यहाँ तक कि जो छोटी छोटी जगह हैं उन पर भी हमको बहुत से तालाब चंद्रपुर राज्य में मिलते हैं जो राजाओं ने ही नहीं बल्कि आम जनता ने भी बनवाए हैं। ऐसे तालाबों में जैसे एक नाम आता है गढ़चिरौली का कुनघाड़ा तालाब है, इसी तरीके से बहुत सारे नाम हैं जो इस जगह में हमको मिलते हैं तालाबों के।
2: जहाँ भी पानी उपलब्ध होता है वहाँ जाकर लोग बसते आए हैं, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन जो हमारे पूर्ववर्ती राजा थे वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि यदि उन्हें सुदीर्घ शासन करना है तो उस जगह पर जल व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहां पर समुचित पानी होना चाहिए। और इसलिए देखिए हमारे राजाओं ने सबसे ज्यादा जो काम किया है वो पानी की उपलब्धता को लेकर किया है, तालाब खुदवाएं।
3: चंद्रपुर के गोंड राजा थे हीर शाह
2: जी,
3: और उनका तो एक उदाहरण बड़ा सुनने लायक है
2: जी।
3: और कैसे उन्होंने समृद्ध किया देखिए, उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक आदेश दिया कि जो किसान तालाब खोदेंगे और उसके जल का उपयोग कृषि के लिए करेंगे तो जितनी वो भूमि सिंचित करेंगे वो भूमि उसी किसान की हो जाएगी।
2: अरे वाह।
3: तो इससे कृषि को बड़ा प्रोत्साहन मिला।
2: भी।
3: कुछ लोग मिलकर अपना तालाब खोदते और फिर उस पानी से कृषि करते थे। तो इसके साथ ये भी डर था कि अगर लोग इस तरीके से कृषि भूमि ले लेंगे और मान लीजिए फिर उस पर कृषि नहीं की तो फिर स्वामित्व तो उनका हो गया, अब क्या होगा। तो राजा ने एक और आदेश पारित किया और उसमें ये सुनिश्चित किया कि यदि किसी किसान ने उस कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं किया, उसे यूं ही छोड़ दिया साल भर के लिए, तो फिर वो कृषि भूमि राजा वापस भी ले लेगा। तो इस तरीके से कृषि को बहुत प्रोत्साहन दिया, तालाबों के निर्माण के लिए भी बहुत प्रोत्साहन मिला
2: जी। पूजा जी, जब भी चंद्रपुर के गोंड शासन की बात आती है तो वहाँ के की एक रानी के भी शासन की चर्चा होती है, तो कौन थी वो रानी, किस तरह का था उनका राज्य?
3: जो अभी हमने हीर शाह की बात की
2: जी,
3: जिन्होंने अनेक तालाबों का निर्माण कराया, कृषि भूमि तैयार कराई, तो ये जो हीर शाह थे ये निसंतान थे।
2: अच्छा।
3: और इनकी पत्नी थी रानी हीराई। राजा की मृत्यु बड़ी जल्दी हो गई, तो रानी ने उनकी मृत्यु के उपरांत एक बालक को गोद लिया
2: जी।
3: लेकिन वो भी वयस्क हो पाता उससे पहले उस बालक की भी मृत्यु हो गई। तो फिर रानी ने एक और गोंड बालक गोद लिया जिसका नाम अकवा था, वो बाद में फिर राजा भी बना
2: जी।
3: लेकिन अगर हम चंद्रपुर के गोंड इतिहास में देखें तो हम देखते हैं कि जो रानी हिराई है उनका स्थान तो राजमाता का है, और लोग तो उन्हें सनातन की प्रतिमूर्ति भी कहते हैं।
2: अच्छा।
3: क्योंकि उन्होंने इतने सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया, मेले लगवाए
2: जी।
3: बहुत कुछ काम किया, तो इसलिए हिराई जो है वो राजमाता चंद्रपुर के नाम से जानी जाती है।
2: तो पूजा जी, क्या जो रानी हिराई ने उस वक्त जो वहां पर मंदिरों का निर्माण कराया चंद्रपुर में, क्या वो आज भी देखे जा सकते हैं?
3: जी हाँ, बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे।
2: अच्छा।
3: और बड़े सुप्रसिद्ध हैं, जैसे एक महाकाली का मंदिर है
2: जी,
3: बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। एक और मंदिर है जिसका नाम एक वीरा मंदिर है, और अचलेश्वर का मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है
2: जी।
3: ये सारे मंदिर राजमाता हिराई के द्वारा बनाए हुए हैं। इसके अलावा एक जुनोना नाम की जगह है, वहां पर एक किला है, उसकी भी नींव जो है वो राजमाता हिराई ने रखी।
2: अच्छा।
3: और उसकी जो परकोटे की दीवार है उसका भी काफी हद तक निर्माण जो है रानी हिराई के शासनकाल में ही हो चुका था।
2: अच्छा।
3: इसी तरह चंदनखेड़ा का किला भी रानी हिराई ने ही बनवाया। और रानी हिराई का जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम माना जाता है वो ये है, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि महाकाली का मंदिर
2: जी
3: रानी हिराई ने बनवाया था, तो वहां उन्होंने एक और परंपरा डाली एक मेले का आरंभ करवाया
2: जी।
3: ये मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है।
2: अच्छा।
3: और आज भी लगता है, इतने 100 साल के बाद भी वहाँ लगता है
2: जी।
3: और इस मेले ने उस समय भी और आज भी बहुत सा परिवर्तन लाया
2: जी। जी,
3: जैसे कि धर्म, व्यापार, सांस्कृतिक विनिमय को बहुत प्रोत्साहन मिला, और आज भी ये बड़े धूमधाम से ये मेला लगता है, हजारों लाखों लोग वहां पर जाते हैं
2: जी, जी।
3: चैत्र की पूर्णिमा पर। फिर यहाँ जब ये मेला लगता है, इससे पहले कुछ यात्राएं भी होती हैं, परिक्रमाएं भी होती हैं, उससे भी बहुत सारे जन समुदाय आज तक इस क्षेत्र में जुड़ता है।
2: बिल्कुल।
3: तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। और एक और योगदान है जो राजमाता हिरई का है, वो ये है कि जब उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया तो उन्होंने विद्वानों को, लोक गीतकारों को, कवियों को बहुत प्रश्रय दिया।
2: अच्छा।
3: और आप मराठी के जो कई भजन सुनते हैं, कई गीत सुनते हैं जो आज भी प्रचलित हैं, यहाँ तक कि बहुत सी मराठी की आरतियां भी जो हैं
2: जी जी,
3: वो भी राजमाता हिरई के समय की हैं।
2: अरे वाह।
3: जो उन्होंने उस समय विद्वानों को प्रश्रय देकर लिखवाई
2: जी,
3: और उनका प्रचलन आज भी हमको जगह जगह सुनाई देता है।
2: तो देखिए कितनी अच्छी परंपरा जो चैत्र पूर्णिमा का मेला रानी हिरई ने वहां पर शुरू कराया, वो न सिर्फ परंपरा के रूप में, आस्था के रूप में या धर्म का प्रतीक है, बल्कि आज तक वो पूरे क्षेत्र को, लोगों को के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का भी केंद्र हो गया, क्योंकि पहले यात्राएं निकलती हैं, फिर इतने वक्त तक तो व्यापार का भी हो गया और साथ ही साथ मनोरंजन का तो है ही। तो पूजा जी, राजमाता हिरई के बाद चंद्रपुर में किसने शासन किया?
3: चंद्रपुर में अनेक राजा हुए, पर जो उल्लेखनीय राजा हैं वो हैं कर्ण शाह।
2: अच्छा।
3: और उनका समय है 1547 से लेके 1572 तक
2: जी।
3: ये अकवा के पुत्र थे जिनकी अभी हमने बात की
2: जी जी जी।
3: और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत न्यायप्रिय थे और इन्होंने गोंड राज्य का बहुत विस्तार भी किया
2: जी।
3: और इनके समय की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, वो घटना ये है कि जैसे हमने गढ़ामंडला में भी देखा था कि ये वो समय था जब तेलंगाना में बहमनियों का शासन था।
2: अच्छा।
3: और उस समय जो तेलुगु ब्राह्मण हुआ करते थे उनका बड़ा उत्पीड़न हो रहा था
2: जी।
3: और हमने जैसा पहले सुना भी था कि गढ़ामंडला में रानी दुर्गावती ने भी उनको प्रश्रय दिया था तेलुगु ब्राह्मणों को, तो उसी प्रकार से कर्ण शाह ने भी उनको प्रश्रय दिया। और केवल प्रश्रय ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने बहुत सारी जमीनें भी उनको अच्छा, दान में दी जिससे कि वे वहां पर अध्ययन अध्यापन कर सकें और राज्य के प्रगति में काम आ सकें
2: जी, जी।
3: तो आपने एक जगह सुनी होगी शायद, बाबूपेठ के नाम से
2: जी जी,
3: महाराष्ट्र में है
2: जी।
3: यही चंद्रपुर के पास में। तो कहते हैं कि जब कर्ण शाह ने तेलुगु ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुलाया तो सबसे पहले उन्होंने उनको अपने चंद्रपुर किले के अंदर ही बसाया।
2: अच्छा।
3: किले की जो बाहरी दीवार होती है उसके अंदर का जो परिसर होता है वहां पर उनको बसाया
2: जी।
3: तो इतनी बड़ी संख्या में तेलुगु ब्राह्मण वहां से उत्पीड़ित होकर आए थे कि वह जगह छोटी पड़ गई।
2: अच्छा।
3: और जो परकोटा था किले का, उसके बाहर बबूल के पेड़ों का जंगल था
2: जी।
3: तो इतनी बड़ी संख्या में ये ब्राह्मण आए थे कि उन्हें परकोटे के बाहर बबूल के पेड़ों को की सफाई करके भी रहना पड़ा।
2: अच्छा।
3: तो ये जगह का नाम पड़ा, परकोटे के बाहर की जो जगह थी, बबूलपेठ।
2: अच्छा, अच्छा।
3: आजकल ये जगह बाबूपेठ के नाम से जानी जाती है।
2: तो बबूलपेठ से बाबूपेठ हो गया।
3: हाँ जी,
2: बोलते बोलते अपभ्रंश हुआ। तो जो कर्ण शाह थे पूजा जी, इनका क्या क्या योगदान था, इन्होंने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया?
3: इन्होंने अपने पहले तो राज्य का विस्तार किया, इनका राज्य अब उमरेड़, पटपवनी, चीचगढ़ यहाँ तक फैल चुका था।
2: अच्छा।
3: और फिर अनेक निर्माण कार्य भी कराए। तो चांदा में एक पुराना शिव मंदिर है
2: जी,
3: वो भी इनका बनाया हुआ है। इसके अलावा एक गुफा है।
2: अच्छा।
3: उसको भी इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। तो कर्ण शाह ने काफी काम कराए और जो उमरेड का दुर्ग है वो भी कर्ण शाह के काल का ही है। कर्ण शाह के बाद फिर बाबा जी बल्लाल शाह का राजत्व काल आरंभ हुआ 1572 से लेकर 1597 तक
2: जी।
3: तो इस समय जो है वो बहमनियों ने चंद्रपुर पर आक्रमण किया और बाबा जी बल्लाल शाह को उनका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। लेकिन एक यहाँ एक कहानी भी है, वो कहानी ये है कि जो चंद्रपुर के गोंड राजा थे
2: जी,
3: उन्होंने भी संगीत को बड़ा अपनाया, बड़े अच्छे संगीतकार हुए इनके यहाँ भी।
2: जी जी।
3: और कहते हैं कि जब इनको जेल में डाल दिया गया बहमनियों द्वारा,
2: जी,
3: तो एक सुबह बाबा जी ने एक गीत गाया।
2: अच्छा।
3: जो बहमनी शासक थे, उनकी जो रानी थी, उन्होंने सुना
2: जी।
3: और वो इससे इतनी प्रभावित हुई कि फिर उन्होंने उन्हें उसी दिन कैद से छोड़ दिया, और इतना ही नहीं उनका राज्य भी वापस कर दिया।
2: अरे वाह।
3: हाँ, और ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि चंद्रपुर के गोंड राज्य से अनेक राजा लखनऊ जाते थे शास्त्रीय संगीत सीखने।
2: वाह।
3: तो इतनी संगीत की परंपरा,
2: लगाव था और परंपरा जी। हाँ। थी जी।
3: आदिया बल्लाल शाह ने बर्दा नदी के पूर्वी किनारे पर ये किला बनवाया, और इस किले के निर्माण में काले पत्थर का उपयोग किया गया। ये किला लगभग 6 एकड़ में फैला है, और इसका जो प्रवेश द्वार है वो पूरब की तरफ है। तो सबसे पहले जब हम इस किले में प्रवेश करते हैं तो केशवनाथ का मंदिर आता है, और कहते हैं कि पहले जो केशवनाथ के मंदिर में प्रतिमा रखी थी उस पर सोने का मुलम्मा चढ़ा हुआ था, यानी सोने की परत चढ़ी हुई थी। बाद में फिर कभी 1818 ईस्वी के आसपास ये मूर्ति चोरी हो गई।
2: अच्छा।
3: तो अब फिर जो भोसले आए, जब मराठा शासन काल आया, तो एक पुजारी थे पाटिल मोरे, उन्होंने फिर एक नई शिला की एक नई मूर्ति वहां पर रखवा दी।
2: अच्छा।
3: जिसके दर्शन आज भी होते हैं। इसके अलावा दुर्ग में अगर हम अंदर जाएं तो वहां पर जो राजा का महल है वो भी हमें दिखाई देता है। उसमें कई सारे अंडरग्राउंड कमरे भी हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ, अंडरग्राउंड कमरों का भी बहुत सा उपयोग है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था,
2: सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है।
3: हाँ, ये एक और बात है कि जो ये अंडरग्राउंड कमरे हुआ करते हैं, इसमें कई बार तो जैसे दुश्मनों को कैद किया जाता ना, तो उसके भी उपयोग आ जाते हैं कि नीचे के कमरों में उनको कैद करके रख लिया
2: जी।
3: और ऊपर आप रह रहे हो
2: जी,
3: इस तरीके के भी प्रमाण मिलते हैं इतिहास में
2: जी।
3: तो इस दुर्ग का जो परकोटा है लगभग 12 मीटर चौड़ा है, और काफी दूर तक ये इसकी परिधि है। इस दुर्ग में अस्तबल भी है, अस्तबल के साथ में कुछ और कमरे भी हैं जो वहां के जो कर्मचारी हुआ करते होंगे उनको रहने के लिए। इसके साथ ही किले के चारों तरफ खाई भी है।
2: अच्छा।
3: जो कि सुरक्षा व्यवस्था के काम आती थी। किले के अंदर कचहरी है, बहुत सारे निर्माण कार्य हैं, एक बावड़ी भी है। तो ये जो किला है ये आज एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। और किले की एक बड़ी और खास बात भी है कि ये जो पहाड़ी है जिस पर किले का निर्माण हुआ है, एक और हीरे की खदान भी है। बल्लालपुर की तरह ही एक और किला है चंद्रपुर राज्य का
2: जी,
3: जो कि गढ़चिरौली जिले में है।
2: अच्छा।
3: और ये किला तो चांदा से उत्तर पूर्व दिशा में है और 150 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग।
2: अच्छा।
3: ये भी एक पर्यटन स्थल है। एक मरुम गांव नाम का स्थान आता है।
2: अच्छा।
3: वहां से फिर आप मुड़ेंगे तो फिर ये किला आ जाता है। ये जो किला है ये भी पहाड़ी पर है, और जो इसकी योजना है वो वर्गाकार है।
2: अच्छा।
3: और ये लगभग 960 मीटर लंबा, 960 मीटर चौड़ा, इस तरीके से लगभग 2 मील क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि दुर्ग में तो तालाब की बहुत जरूरत होती है, तो यहाँ पर भी एक बड़ा गहरा तालाब है पहाड़ी के ऊपर। इसके साथ ही इसी पहाड़ी से एक नाला भी निकलता है।
2: अच्छा।
3: जिसको वेलोचना कहते हैं, और ये जाके आगे एक नदी बहती है खोबरागढ़ी नदी, उसमें मिल जाता है। तो यहाँ से कई सारे, इससे जुड़े हुए कई सारे अनुष्ठान भी हैं, मेले भी हैं, जो आज भी यहाँ पर लगातार कई 100 सालों से चलते आ रहे हैं
2: जी।
3: टीपागढ़ के इस किले के अवशेषों में कुछ भूमिगत कमरे भी हमको देखने को मिलते हैं
2: जी। और उनका जिक्र अभी कुछ देर पहले ही किया था, हमने चर्चा की थी कि वो किस काम में आते थे। पूजा जी ने हमें बताया कि दुश्मनों को कैद करने के लिए भी रखा जाता था, ताकि राजा खुद ऊपर रहें और दुश्मन जो उनके कैदी हैं वो नीचे रहें, और किसी भी तरह से गुंजाइश ना हो कि वो भाग सकें। तो देखिए, बहुत अच्छी अच्छी इनकी योजनाएं थीं, और हम हर जगह देख रहे हैं कि गोंड अपने किलों के अंदर पहाड़ियों में जल की बहुत अच्छी व्यवस्था करते थे। वहाँ तालाब होते थे, तालाब खुदवाए जाते थे, और बल्कि पाइपलाइंस तक की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। पिछले एपिसोड में तो पूजा जी ने हमें बताया कि वहाँ पर बाकायदा टॉयलेट्स का निर्माण किया गया था, और मैला ढोने की परंपरा भी नहीं थी। जो मैला था उसे भी पाइप्स के जरिए किले के बाहर किया जाता था। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही हैं। और जहां तक बात की, जहां पर पूजा जी ने बात समाप्त की कि अवशेष तो निश्चित रूप से ये जो अवशेष हैं वो हमारे सुनहरे इतिहास की थाती हैं और हमें इन्हें सहेज कर रखना होगा, इन पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि इसी से हमें हमारा समृद्ध इतिहास पता चलता है। फिलहाल इतिहास के पन्नों से मैं आज इतना ही। अपने अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एपिसोड में भी बने रहने के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम टेक गुरु।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे एआई पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि एआई क्या है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये है क्या, किसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है। अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कितना हम आप तक पहुंचा पाएं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MANIT मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने देने का मौका देने के लिए।
1: अनुग्रह जी, AI एक ऐसा विषय है जिस पर हम आपसे चाहेंगे रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कुछ आपके बारे में।
2: जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी अपने देश में, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणगान गा रही है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या विषय अछूता नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों की चर्चा ना हो रही हो। साथ ही साथ वृहद स्तर पर राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच भी AI वॉर ऐसी संबंधी चर्चा आ रही है। तो AI के बारे में मेरा जो रुझान था, मैं मूल रूप से वास्तुकला एवं नगर नियोजन, ये मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है, और मैंने 9 से 13 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रथम दृष्टया मेरे को पता चला अपने संस्थान के कंप्यूटर साइंस के लोगों के द्वारा। तो उस समय मेरा परसेप्शन ये बना कि मशीनों के शायद संवाद, जो ऑटोनोमस मशीन्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बोलते होंगे। इससे हमारा कोई उत्ता सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के है उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पे मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है। तब मैंने धीरे धीरे इस पर शोध करना चालू किया। तो मैंने जैसे बताया, ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, भू संचार प्रौद्योगिकी, इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है, उसकी मदद से हम लोग जो अपने सेटेलाइट इमेजरी रहती है उसकी विवेचना करने का, उसके विश्लेषण करने में योगदान ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यही वो समय था जब मैंने अपनी आंखों से AI का अपने विषय में इस्तेमाल देखा, और उस इस्तेमाल को, चूंकि मैं बाहरी था, कंप्यूटर साइंस से बाहर से आ रहा था, और मैंने देखा कि जब मेरे विषय में AI इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं यहाँ मैनिट में पढ़ता था तो किसी शहर की शहरी विकास योजना बनती है, शहर का एक नक्शा बनता है, तो 5-6 लोग 2-3 दिन बैठ के एक एक बिल्डिंग को फुटप्रिंट बनाते जाते हैं। मतलब शहर की सेटेलाइट इमेजरी इसरो से आएगी, एक एक सड़क को डिजिटाइज करेंगे, एक एक बिल्डिंग फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे, एक एक फीचर, नदी, नाले, पेड़, 5-6 लोगों की टीम 1-2 दिन लेती थी किसी भी बड़े शहर के लिए। AI की मदद से ये जो मैनुअल काम था डिजिटाइजेशन का, वो इसरो स्वयं ही करके दे देता था। मतलब वो अपने आप इमेज में, इसको कंप्यूटर विजन तकनीक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर, अपने आप ही फीचर डेलिनेट हो गया। तो आप सोचिए, 4-5 लोगों के 2-3 दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई, इस तरीके से ये सिर्फ दो मशीनों के बीच में संवाद का जरिया नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक, उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय पे नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने AI के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा, और फिर मेरी PhD जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है उस पे भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
1: तो AI क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
2: सर, ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नजरों के सामने एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज़ था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में, पावर प्लांट्स में रहता था, आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। AI वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य यह है कि वो टेंजेबल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कंप्यूटर था, जैसे टीवी था, वो एक प्रोडक्ट था। लेकिन जैसे इंटरनेट है, दो कंप्यूटर्स के बीच में, चलिए इंटरनेट में मैं कहता हूं कि कुछ हार्डवेयर रहता है, वायर्स या वायरल है, लेकिन AI जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे, वो AI कुछ क्षणों में, कुछ सेकंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है एक शहर का, लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे, तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजेबल माध्यम, मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉन टेंजेबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैकएंड पे हो रहा है, जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। ChatGPT आपने बोला, अब ChatGPT आने से पहले लेखकों के, कॉपी राइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपीराइट दे दे, तो ये बैकएंड में ही संचालित हो रहा है, वही AI है।
1: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहे, एक हाँ। बात दूसरी चीज, उतना समय भी नहीं लग रहा।
2: बिल्कुल।
1: तो क्या माने AI आने से लोगों के काम छिन गए?
2: देखिए, कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद, जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर, जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। DTP का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे DTP की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है, जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा। क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क के, तो ChatGPT उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहे तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज ChatGPT में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए या उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ, ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना है, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज़्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रीडेवलप करना पड़ेगा, ये AI एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकेडमी है वहाँ पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में AI के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे ज़रूरी रहेगा 3 चीज़ों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा, IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक हैं और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
1: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं?
2: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे, वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं। और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमें जो इसरो से शीट्स आई, सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी, वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी। हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करनी थी, मतलब वो नक्शे ले जाके साइट में चेक करना था कि कौन से फीचर सही है कौन से गलत है। तो जो प्रक्रिया 6 महीने लेती थी, वो अब मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन में पूरी हो गई। हम लोग नक्शे लेके जाते थे, पेंसिल से मार्क करते थे और वही भेज के इसरो में अपडेट कर लेते थे। इस बचे हुए समय को हमने उस नगर का, इम्फाल की, अच्छे नगरीय नियोजन, शहरी नियोजन कैसे किया जाए, कैसे हरियाली के बारे में क्वांटिफाइड स्टडी की जाए, उसमें लगाया। तो जहां समय बचता है वहां पे उसे दूसरे तरीके से उपयोग करने की सुविधा बढ़ जाती है। कई लोग जो AI विषय विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि वर्क डेज लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब जो 6 दिन या 7 दिन या 5 दिन काम होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे है, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीजों या तकनीक के प्रति उनकी पहुंच जो है वो और सुविधा युक्त हो जाएगी, तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
1: अनुग्रह जी, एक बात और कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
2: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है ये 1960 से चल रहा था। 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में ChatGPT हो गया है, Gemini हो गया है, Airtel के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में, इतने ज्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और भी मेरे साथी लोग थे। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे चर्चा हो रही थी, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के ही जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश डाली, तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता
1: जी।
2: तो जब उनसे पूछा गया, चूंकि उसमें मेंटरशिप होता है IIT में, डिप्रेशन में नहीं चले जाए, सुसाइड नहीं हो, तो संवाद अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट का, तो उसको बुला के पूछा भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन क्लास नहीं आ रहे हो, कुछ सब कुछ कुशल मंगल है, क्या समस्या? तो बच्चे ने बोला सर जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं AI की मदद से इंटरैक्टिव तरीके से, 1 घंटे का मान लीजिए क्लास है तो 15 मिनट में वो टॉपिक समझ जाता हूँ। और ऐसे टूल्स हैं, मैं भी अपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ाने के लिए कई ऐसे टूल्स यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कैसे इसको सरल भाषा में समझाया जा सके। तो बोले सर 1 घंटे की क्लास का मटेरियल मैं 15 मिनट में कंज्यूम कर लेता हूँ और वो मेरे रिजल्ट में प्रोजेक्ट में दिख रहा है। बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए, तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है। तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई AI तो हमको भी रिप्लेस कर देगा। अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि 1-on-1 बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी AI घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है। आपके आजू बाजू कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स है। आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया हो, उसके पास AI इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पे AI पेनिट्रेट नहीं करेगा,
1: वो डीपी में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
2: हाँ,
1: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अपन ने बात ही शुरू करी थी विषय भी अपना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है।
2: हाँ।
1: उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी अभी, 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट है वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है, तो ये अंतर कैसा है? क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज़ को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
2: देखिए, आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI बाल लीजिए, आप ChatGPT खोल के उसमें लिखिएगा, इमेजिन यू आर अ टीचर
1: जी,
2: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट
1: जी,
2: क्लास 5th स्टूडेंट करके देखिएगा, उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई हैव अ स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से BA इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कोई भी ChatGPT हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है। मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया। मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट, उन लाइनों का, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है, और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द, अगले वाक्य, अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा। आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है, वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है, जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे एक पर टीचर, उतना बढ़िया टीचिंग पेडागोजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
1: जी।
2: तो ये AI का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा AI के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहाँ पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि AI समझता नहीं है शब्दों को, वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड, अगला लाइन, अगला पैराग्राफ प्रिडिक्ट कर रहा है, तो AI कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो AI बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो AI सही प्रिडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है। जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि ChatGPT से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से, तो वो क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ा इसको हल्के पे लिया कि यार बताइए प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सही था, ChatGPT से अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि भैया एक ऐसे फोटो जनरेट करो जिसमें व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा, वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की फोटो बना ही नहीं सकता था। ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया था, शायद अब वो बता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जिन इमेजेस पे वो ट्रेन हुआ होगा या जिन कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रेन हुआ होगा उसमें उसके पास कोई लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हुए व्यक्ति की इमेज उसने देखी या समझी नहीं होगी। तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में चूंकि सब राइट हैंड से लिख रहे थे इसलिए वो भी राइट हैंड से क्रिएट कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है। अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज AI पर जो हमने बातचीत की उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर AI है क्या, AI कहाँ कहाँ अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी, तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु, जिसमें आज हमने बात की एआई पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया, इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेक गुरु। बने रहिए हमारे साथ 90.8 MHz पर, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आइए सुने देश प्रेम में डूबा ये गीत।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। नमस्कार, 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
2: और मैं हूं मनीषा।
1: और आज हम अपने कार्यक्रम भारत विभूति में बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता के अग्रदूत, हिंदी कहानी के जनक माधवराव सप्रे की।
2: किसी भी महापुरुष को समझने के लिए उस युग को समझना आवश्यक है जिसमें उसने जन्म लिया और अपना जीवन जिया। माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में हुआ। वो काल जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य की कठोर पकड़ में जकड़ा हुआ था। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद ब्रिटिश शासन और भी निरंकुश हो गया था। भारतीय समाज में एक और रूढ़िवाद, जाति भेद और अशिक्षा का अंधेरा था। दूसरी ओर पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से एक नई जागृति की लहर धीरे धीरे उठ रही थी।
1: हिंदी साहित्य उस काल में अपनी शैशवावस्था में था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य साहित्य को एक दिशा दी थी, किंतु हिंदी पत्रकारिता और कथा साहित्य अभी भी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मराठी, बंगाली और गुजराती में साहित्य और पत्रकारिता अपेक्षाकृत अधिक विकसित थी। हिंदी को एक ऐसे रचनाकार की आवश्यकता थी जो उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाए, और माधव राव सप्रे को उसी भूमिका के लिए नियति ने चुना था।
2: छत्तीसगढ़ का क्षेत्र उस काल में और भी पिछड़ा था। मध्य प्रांत के अंतर्गत ये क्षेत्र शिक्षा, उद्योग और राजनीतिक चेतना सभी दृष्टियों से अत्यंत पिछड़ा हुआ था। ऐसे में वहां से हिंदी की एक साहित्यिक पत्रिका निकालना और हिंदी कहानी की नींव रखना ये एक असाधारण साहस और दूरदर्शिता का प्रमाण था।
1: श्रोताओं, माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के पथरिया ग्राम में हुआ। उनका मूल परिवार महाराष्ट्र से आया हुआ मराठी ब्राह्मण परिवार था जो पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ की धरती पर बस गया था। पिता श्री दुर्गा प्रसाद सप्रे एक सात्विक और संस्कारी व्यक्ति थे। परिवार में संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन नियमित रूप से होता था।
2: दोस्तों, बालक माधव अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। गांव की छोटी सी पाठशाला में उन्होंने संस्कृत और हिंदी के साथ प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार पढ़ा हुआ पाठ उन्हें कंठस्थ हो जाता था। बचपन से ही उनमें पढ़ने की असाधारण लालसा थी। जो भी पुस्तक मिलती उसे वो अवश्य पढ़ते थे।
1: छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोकगीत, नदियाँ, जंगल और सामान्य जनजीवन ने उनके बाल मन पर गहरी छाप छोड़ी। इसलिए उनके लेखन में छत्तीसगढ़ की धरती और वहां के लोगों के प्रति एक गहरी ममता और आत्मीयता दिखाई देती है। पथरिया के उस छोटे से गांव की माटी ने एक ऐसे रत्न को जन्म दिया जो आगे चलकर हिंदी साहित्य का गौरव बना।
2: रायपुर से नागपुर तक प्रारंभिक शिक्षा के बाद माधव राव उच्च शिक्षा के लिए रायपुर आए। रायपुर उस काल में छत्तीसगढ़ का प्रमुख शैक्षिक और प्रशासनिक केंद्र था। यहाँ के राजकीय हाई स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। रायपुर में रहते हुए उनका संपर्क ऐसे शिक्षकों और विद्यार्थियों से हुआ जिनमें राष्ट्रीय चेतना का अंकुरण हो रहा था।
1: और इसके पश्चात वे नागपुर चले गए जो मध्य प्रांत की राजधानी थी और बौद्धिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र थी। नागपुर में उन्होंने उच्च शिक्षा जारी रखी। यहाँ उनकी भाषाई दक्षता और विस्तृत हुई। वे संस्कृत, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी चारों भाषाओं में पारंगत हो गए।
2: नागपुर में उनका परिचय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों और उनकी केसरी पत्रिका से हुआ। तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका उद्घोष उनके हृदय की गहराइयों में उतर गया। इसी दौरान उनकी रुचि पत्रकारिता की ओर भी जाने लगी। उन्होंने देखा कि मराठी में केसरी जैसी पत्रिका जनता को कितना जागृत कर सकती है और उनके मन में विचार आया कि हिंदी में भी एक ऐसी ही पत्रिका होनी चाहिए।
1: श्रोताओं, नागपुर में ही उन्होंने हिंदी और मराठी के साहित्यिक मंडलियों में भाग लेना शुरू किया। उस काल के अनेक विचारक और समाज सुधारक नागपुर में सक्रिय थे। इन सभी संपर्कों ने सप्रे जी की वैचारिक परिपक्वता को और गहरा किया। शिक्षा पूरी करने के बाद उनके सामने दो रास्ते थे, एक सरकारी नौकरी का सुरक्षित मार्ग, दूसरा साहित्य और पत्रकारिता का कंटकाकीर्ण किंतु सार्थक मार्ग। उन्होंने बिना किसी संकोच के दूसरा मार्ग चुना, यही उनकी महानता की असली पहचान थी।
2: माधवराव सप्रे को समझने के लिए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, एक ऐसी भूमि है जहां प्रकृति, लोक संस्कृति और आदिवासी परंपराओं का अद्भुत समन्वय मिलता है।
1: यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही रस है। यहाँ के लोगों में एक सहज सरलता और आत्मीयता है। सप्रे जी इसी माटी की संतान थे। उनके लेखन में छत्तीसगढ़ की ये सरलता और आत्मीयता झलकती है। उनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में जो विधवा स्त्री है, वो छत्तीसगढ़ के उसी सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करती है जो निर्धन है, निरीह है, किंतु अपने मातृभूमि से अपने बच्चों की तरह जुड़ा है।
2: छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं, लोक गीतों और लोक परंपराओं ने सप्रे जी को एक ऐसी भाषाई संवेदना दी जो पोथियों में नहीं मिलती। उन्होंने जब हिंदी में लिखा तो उनकी भाषा में एक लोक लय थी, एक धरती की मिट्टी की गंध थी जो उन्हें अन्य लेखकों से अलग और विशेष बनाती थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में उस काल में जो सामाजिक विषमताएं थीं, भूस्वामियों और किसानों के बीच की खाई, जमींदारी प्रथा का अत्याचार, स्त्रियों की दुर्दशा, इन सब ने सप्रे जी के सामाजिक सरोकारों को जन्म दिया। वो केवल साहित्यिक लेखक नहीं थे, वो एक सामाजिक चेतना के वाहक भी थे।
1: दोस्तों, सन 1900 में माधवराव सप्रे ने अपने घनिष्ठ मित्र रामराव चिंचोलकर के सहयोग से बिलासपुर जिले के पेंड्रा नामक स्थान से छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन आरंभ किया। ये हिंदी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली उन प्रारंभिक पत्रिकाओं में से एक थी जिसका स्वरूप पूर्णतः साहित्यिक और वैचारिक था। पेंड्रा उस काल में एक अत्यंत छोटा और दुर्गम स्थान था। वहां ना तो उन्नत मुद्रण सुविधाएं थी, ना ही पर्याप्त संख्या में पाठक। डाक व्यवस्था भी अनियमित थी, कागज और स्याही की आपूर्ति अनिश्चित थी। इन सब बाधाओं के बावजूद सप्रे जी ने हार नहीं मानी।
2: छत्तीसगढ़ मित्र, ये एक मासिक पत्रिका थी। इसमें साहित्य, इतिहास, दर्शन, समाज सुधार, राजनीति और विज्ञान विविध विषयों पर उच्च स्तर के लेख प्रकाशित होते थे। पत्रिका की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण थी ताकि सामान्य पाठक भी उसे समझ सके। इस पत्रिका ने पहली बार छत्तीसगढ़ के हिंदी पाठकों को एक ऐसा मंच दिया जहां वो अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और देश दुनिया की बातें जान सकते थे। ये केवल एक पत्रिका नहीं थी, ये एक आंदोलन था, हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान का आंदोलन।
1: छत्तीसगढ़ मित्र में केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं थी, इसमें समाज सुधार के लेख, भारत के इतिहास पर निबंध, किसानों और मजदूरों की दुर्दशा पर आलेख और राष्ट्रीय आंदोलन की खबरें भी प्रकाशित होती थीं। सप्रे जी चाहते थे कि पत्रिका केवल बुद्धिजीवियों तक सीमित ना रहे, वो आम पाठक तक भी पहुंचे। इसलिए उन्होंने भाषा को सरल रखा और विषयों को जीवन से जोड़ा।
2: पत्रिका में महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों पर भी लेख प्रकाशित होते थे, जो उस काल में अत्यंत साहसिक और प्रगतिशील कदम था। इसके साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के पुनरुद्धार पर भी सामग्री प्रकाशित होती थी।
1: श्रोताओं, आर्थिक कठिनाइयों और ग्राहकों की अपर्याप्त संख्या के कारण छत्तीसगढ़ मित्र केवल 3 वर्षों यानी 1900 से लेकर 1902 तक ही प्रकाशित हो सकी। ये सप्रे जी के जीवन का सबसे कठिन क्षण था। वो पत्रिका जिसे उन्होंने अपने सपनों के बीज से उगाया था, संसाधनों के अभाव में मुरझा गई, किंतु जो बीज उन्होंने बोया था वो कभी नष्ट नहीं हुआ। उससे प्रेरणा लेकर आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा और कर्मवीर जैसी पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता की परंपरा को आगे बढ़ाया।
2: पत्रिका के बंद होने का एक और कारण था पेंड्रा जैसा दूर दराज स्थान। यहाँ से पत्रिका वितरित करना बहुत कठिन काम था। उस काल में रेल मार्ग और डाक सेवाएं सीमित थी, पत्रिका पाठकों तक समय पर नहीं पहुंच पाती थी। इन सब व्यावहारिक कठिनाइयों के बावजूद जो 3 वर्ष छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुई, वो हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। छत्तीसगढ़ मित्र के 1901 के अंक में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकार और विद्वान इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में स्वीकार करते हैं।
1: ये कहानी एक राजा और एक निर्धन विधवा की है। एक राजा के राज्य में एक निर्धन विधवा रहती है जिसकी छोटी सी झोपड़ी है। राजा उस भूमि को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। विधवा झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। बातचीत के दौरान विधवा राजा से कहती है कि वो जाने के लिए तैयार है, किंतु पहले उसे अपनी झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी दे दे, अपनी मातृभूमि की एक मुट्ठी माटी। राजा टोकरी भरवाता है, किंतु विधवा उस भरी हुई टोकरी को उठाने में असमर्थ हो जाती है। तब वो राजा से कहती है, यदि एक टोकरी भर मिट्टी का भार उठाना मेरे लिए इतना कठिन है, तो जिस राजा के ऊपर पूरी पृथ्वी का भार है, वो उसे कैसे उठा पाएगा?
2: बस ये कथन राजा को आत्मचिंतन पर विवश कर देता है और वो अपनी भूमि हत्याने का विचार छोड़ देता है। इस कहानी में मातृभूमि के प्रति प्रेम, सत्ता की निरंकुशता का विरोध, एक साधारण स्त्री की बुद्धिमता और नैतिक साहस जैसे गहरे विषय बड़े कौशल से उठाए गए हैं। भाषा सरल किंतु भावपूर्ण है, कथानक संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली है। शिल्प की दृष्टि से ये आधुनिक कहानी के सभी तत्वों को धारण करती है, एक केंद्रीय द्वंद, एक क्लाइमेक्स और एक अर्थपूर्ण अंत।
1: एक टोकरी भर मिट्टी एक स्वतंत्र मौलिक समकालीन यथार्थ से जुड़ी कहानी थी और इसलिए ये हिंदी कहानी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यदि हम एक टोकरी भर मिट्टी का साहित्यिक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इसमें आधुनिक कहानी के सभी आवश्यक तत्व उपस्थित हैं। ये कहानी उस काल की राजनीतिक परिस्थिति का भी रूपक है। जिस प्रकार राजा एक निर्धन विधवा की भूमि छीनना चाहता है, उसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य भारत की भूमि, संसाधन और स्वाभिमान छीन रहा था। ये समानांतर पाठकों को स्पष्ट था और इसलिए कहानी का प्रभाव केवल साहित्यिक नहीं राजनीतिक भी था।
2: एक टोकरी भर मिट्टी के अतिरिक्त माधवराव सप्रे ने हिंदी साहित्य को अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं दी। उनका संपूर्ण साहित्यिक योगदान कई आयामों में फैला हुआ है। सप्रे जी के निबंध हिंदी गद्य साहित्य की अनमोल धरोहर है। उन्होंने शिक्षा, समाज, धर्म, राजनीति, संस्कृति सभी विषयों पर गहन और विचारोत्तेजक निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों की विशेषता यह थी कि वो केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं थे, उनमें एक व्यवहारिक संदेश होता था, एक आह्वान होता था जो पाठक को निष्क्रियता से जगाकर सक्रियता की ओर प्रेरित करता था।
1: उन्होंने भारतीय इतिहास पर भी महत्वपूर्ण लेख लिखे। मराठा इतिहास और शिवाजी महाराज पर उनके लेख अत्यंत शोधपरक और प्रेरणादायक थे। शिवाजी की वीरता और राष्ट्र निर्माण की भावना उन्हें विशेष प्रिय थी। सप्रे जी ने अनुवाद को एक गंभीर साहित्यिक कार्य के रूप में अपनाया। उस काल में अनुवाद को प्रायः द्वितीय श्रेणी का कार्य माना जाता था, किंतु सप्रे जी जानते थे कि एक अच्छा अनुवाद मूल की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए नई भाषा में नई जान फूंकता है। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद किए, वे सभी इस कसौटी पर खरे उतरे।
2: उनके संपादकीय और समाचार टिप्पणियां हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उन्होंने पत्रकारिता में एक मानदंड स्थापित किया, तथ्यात्मक निष्पक्षता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण का समन्वय। छत्तीसगढ़ मित्र बंद होने के बाद माधव राव सप्रे स्थायी रूप से नागपुर आ गए। यहाँ उन्होंने साहित्यिक और पत्रकारिता की गतिविधियों को नए सिरे से संगठित किया।
1: नागपुर में उन्होंने हिंदी ग्रंथमाला नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी में उच्च कोटि के साहित्यिक, वैचारिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का प्रकाशन किया। उस काल में हिंदी में अच्छी पुस्तकों का घोर अभाव था। अंग्रेजी, मराठी और बंगाली में ज्ञान विज्ञान के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध थे, किंतु हिंदी पाठक उनसे वंचित थे। सप्रे जी ने हिंदी ग्रंथमाला के अंतर्गत न केवल मौलिक रचनाएं प्रकाशित की बल्कि अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथों के हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किए। इस प्रकार उन्होंने हिंदी पाठकों को भारतीय और विश्व विचार की मुख्य धारा से जोड़ा।
2: हिंदी ग्रंथमाला के अंतर्गत उन्होंने इतिहास, दर्शन, विज्ञान और राजनीति सभी विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की। इसके माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया कि हिंदी केवल काव्य और कथा की भाषा नहीं है, ये ज्ञान विज्ञान की भी भाषा हो सकती है और होनी चाहिए। ये उनकी एक दूरदर्शी सोच थी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। नागपुर में रहते हुए सप्रे जी ने हिंदी केसरी का संपादन किया। ये पत्रिका लोकमान्य तिलक की मराठी केसरी से भी प्रेरित थी और उसी राष्ट्रवादी चेतना की संवाहक थी। हिंदी केसरी में सप्रे जी ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया और जनता को स्वतंत्रता के लिए जागृत किया।
1: दोस्तों, इस पत्रिका के संपादकीय लेख अत्यंत तर्कपूर्ण, ओजस्वी और प्रभावशाली होते थे। वो पाठकों को न केवल सूचित करते थे बल्कि उनके भीतर एक आंदोलन की भावना जगाते थे। गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद एक महाकार्य माना जाता है। माधव राव सप्रे के अनुवाद कार्य में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भी यही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की अमर कृति श्रीमद् भगवत गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद।
2: गीता रहस्य तिलक ने मांडले जेल में लिखी थी जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कारावास की सजा दी थी। ये ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की एक क्रांतिकारी व्याख्या है जिसमें तिलक जी ने यह सिद्ध किया कि गीता केवल वैराग्य और संन्यास का उपदेश नहीं देती बल्कि कर्मयोग, सक्रिय और निर्भीक कर्म का संदेश देती है। ये व्याख्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक वैचारिक आधार प्रदान करती थी।
1: ये ग्रंथ मराठी में था। सप्रे जी ने इसका अनुवाद हिंदी में किया ताकि हिंदी क्षेत्र के पाठक भी इस महान विचार से लाभान्वित हो सकें। यह अनुवाद कार्य अत्यंत श्रमसाध्य था क्योंकि ग्रंथ में दार्शनिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों स्तरों पर गहन विचार विमर्श था, किंतु सप्रे जी की भाषाई दक्षता और वैचारिक गहराई ने इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस अनुवाद ने उत्तर भारत के हिंदी भाषी पाठकों तक तिलक जी के विचारों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: लोकमान्य तिलक और माधवराव सप्रे के बीच का संबंध केवल एक लेखक और उसके प्रेरणा स्रोत का संबंध नहीं था। ये दो समान विचार मनुष्यों के बीच का एक गहरा वैचारिक और भावनात्मक रिश्ता था। तिलक जी मराठी के माध्यम से जो काम कर रहे थे, सप्रे जी हिंदी के माध्यम से वही करना चाहते थे। जब तिलक जी जेल में थे तब भी सप्रे जी की कलम उनके विचारों की संवाहक बनी रही। गीता रहस्य का अनुवाद करना सप्रे जी के लिए केवल एक साहित्यिक कार्य नहीं था, ये उनकी श्रद्धा का, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का और उनके विचारों को हिंदी भाषी जनता तक पहुंचाने के संकल्प का भी प्रतीक था।
1: श्रोताओं, 1920 में तिलक जी की मृत्यु ने सप्रे जी को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने हिंदी केसरी में तिलक जी पर एक अत्यंत मार्मिक श्रद्धांजलि लेख लिखा जिसमें उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति दोनों की अभिव्यक्ति थी। माधवराव सप्रे केवल कलम के योद्धा नहीं थे, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में व्यावहारिक रूप से भी सक्रिय थे।
2: लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित होकर सप्रे जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के समर्थक बन गए। वे नरम दल की नीतियों से असंतुष्ट थे और मानते थे कि ब्रिटिश शासन से केवल विनम्र याचना से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसके लिए जनजागृति, असहयोग और दृढ़ संघर्ष आवश्यक है।
1: 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का सप्रे जी ने खुलकर समर्थन किया। उनकी पत्रिकाओं में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरक लेख प्रकाशित होते थे। वे स्वयं स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे और अपने परिचितों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते थे।
2: बंगाल विभाजन पर सप्रे जी का कहना था कि ये विभाजन केवल एक प्रांत का विभाजन नहीं है, ये भारत की एकता को तोड़ने का षड्यंत्र है। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो इसका विरोध करे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के पाठकों को उस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जो मुख्यतः बंगाल और महाराष्ट्र में केंद्रित था।
1: सप्रे जी की राष्ट्रवादी लेखनी ने ब्रिटिश प्रशासन को बार बार नाराज किया। उनकी पत्रिकाओं पर निगरानी रखी जाती थी और उन पर दबाव डाला जाता था, किंतु वो कभी झुके नहीं। वे कहते थे कि अन्याय के सामने मौन रहना सबसे बड़ा कायरपन है। उन्होंने एक बार कहा था, हम कलम उठाते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि लिखना हमारा काम है, हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि चुप रहना गुनाह होगा। ये वाक्य उनके पत्रकारिता दर्शन का सार है।
2: माधवराव सप्रे और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बीच का संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास का एक अत्यंत प्रेरणादायक अध्याय है। माखनलाल चतुर्वेदी, जो एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध थे, सप्रे जी को अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानते थे। सप्रे जी ने माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिभा को बहुत प्रारंभ में ही पहचान लिया था। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया, उनकी रचनाएं अपनी पत्रिकाओं में प्रकाशित की और उन्हें हिंदी साहित्य की मुख्य धारा से जोड़ा। माखनलाल जी की पुष्प की अभिलाषा जैसी कालजयी कविताओं के पीछे सप्रे जी जैसे गुरु का आशीर्वाद था।
1: दोस्तों, इस संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं था, दोनों एक ही स्वप्न के सहयात्री थे। दोनों हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना चाहते थे और दोनों साहित्य को स्वतंत्रता संग्राम का अस्त्र मानते थे। सप्रे जी हिंदी को केवल एक भाषा नहीं, राष्ट्रीय एकता का सूत्र मानते थे। उनका तर्क था कि भारत की विविधता में एकता लाने के लिए एक ऐसी भाषा आवश्यक है जो सर्वाधिक लोगों द्वारा समझी और बोली जाए, और वो भाषा हिंदी ही है। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलनों में और विभिन्न मंचों पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की।
2: सप्रे जी चाहते थे कि हिंदी की भाषा सरल, सहज और जन उपयोगी हो। वे संस्कृत की क्लिष्ट शब्दावली से लदी भाषा के विरोधी थे। उनका मानना था जो भाषा आम आदमी की समझ में ना आए वो राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। इसलिए उनके अपने लेखन में एक अद्भुत सरलता और स्पष्टता मिलती है। वे हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं का प्रतिद्वंदी नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल सभी भाषाएं एक ही सांस्कृतिक परिवार की अलग अलग शाखाएं हैं। इसलिए उन्होंने मराठी से हिंदी में अनुवाद किए और मराठी साहित्यकारों से प्रेरणा भी ली।
1: सप्रे जी ने पत्रकारिता की भाषा को एक नया आयाम दिया। उन्होंने दिखाया कि पत्रकारिता की भाषा साहित्यिक भाषा से कम प्रभावशाली नहीं हो सकती, बशर्ते उसमें स्पष्टता हो, तर्क हो और जनता के प्रति प्रतिबद्धता हो। उनके संपादकीय लेख आज भी हिंदी पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन योग्य हैं। माधवराव सप्रे की पत्रकारिता केवल एक व्यवसाय नहीं थी, ये एक मिशन था, एक धर्म था। उनके पत्रकारिता दर्शन के कुछ मूल सिद्धांत थे जो उनके समस्त लेखन और संपादन में परिलक्षित होते हैं।
2: श्रोताओं, सप्रे जी हमेशा मानते थे कि पत्रकार का पहला धर्म सत्य है। किसी भी दबाव में, किसी भी प्रलोभन में सत्य से समझौता नहीं होना चाहिए। उनकी दृष्टि में समाचार वो है जो सत्य हो, न कि वो जो किसी को प्रसन्न करे। उनके लिए पत्रिका एक सामाजिक दायित्व था। पाठक केवल ग्राहक नहीं थे, वो उनके बंधु थे, उनके देशवासी थे। उनके प्रति उनकी एक जवाबदेही थी। पाठक को सूचित करना, शिक्षित करना और प्रेरित करना, ये तीनों संपादक के दायित्व थे।
1: प्रत्येक समाचार और लेख को वे राष्ट्रीय हित की कसौटी पर परखते थे। क्या ये देश की सेवा करेगा, क्या ये जनता को जागृत करेगा, यही उनका मापदंड था। स्वतंत्र और निर्भीक अभिव्यक्ति, वे किसी के दबाव में नहीं आते थे, न सरकार का, न धनिक वर्ग का, न रियासतों का। उनकी कलम स्वतंत्र थी और वे इसे सदैव स्वतंत्र रखना चाहते थे।
2: माधवराव सप्रे एक जागरूक सामाजिक चिंतक भी थे। वो जाति प्रथा और अस्पृश्यता को भारतीय समाज का सबसे बड़ा कलंक मानते थे। उन्होंने अपने लेखों में इस विषय पर और अधिक स्पष्ट और निर्भीक रूप से लिखा। उनका कहना था कि जब तक समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता रहेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता संभव नहीं है और स्वतंत्रता का स्वप्न अधूरा रहेगा।
1: दोस्तों, सप्रे जी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि स्त्री की शिक्षा का सीधा संबंध राष्ट्र के भविष्य से है। एक शिक्षित माँ अपने बच्चों को संस्कारवान और देशभक्त बना सकती है। उन्होंने अपने लेखन में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बार बार आग्रह किया।
2: साहित्यिक दृष्टि से माधव राव सप्रे का योगदान केवल विषय वस्तु तक सीमित नहीं था, उनका गद्य शिल्प भी अत्यंत परिष्कृत था। उनकी भाषा में एक विशेष ओज और तेजस्विता थी। वाक्य विन्यास सुगठित और अर्थपूर्ण होते थे। वो अनावश्यक शब्दों के उपयोग से बचते थे। प्रत्येक शब्द अपना भार उठाता था और उनकी भाषा में मराठी और संस्कृत का सुंदर समन्वय भी मिलता था।
1: उनके निबंधों में तर्क, भाव और उदाहरण का अद्भुत संयोग मिलता है। वे किसी भी विषय को केवल सैद्धांतिक स्तर पर नहीं छोड़ते थे, उसे व्यवहारिक उदाहरणों और तर्कों से जीवंत बना देते थे। उनके संपादकीय लेख अत्यंत प्रभावशाली होते थे। वे पाठक की बुद्धि और भावना दोनों को एक साथ छूते थे। उनके संपादकीयों में एक सुनिश्चित राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण था जो पाठक को सोचने और कुछ करने के लिए प्रेरित करता था।
2: माधवराव सप्रे का निजी जीवन अत्यंत सादा और संघर्षपूर्ण था। साहित्य और पत्रकारिता के लिए समर्पण का अर्थ था आर्थिक सुरक्षा का त्याग। पत्रिकाओं के प्रकाशन में निरंतर आर्थिक घाटा होता था। ग्राहकों की संख्या अपेक्षित नहीं बढ़ती थी। विज्ञापन की संभावनाएं नगण्य थी। मुद्रण व्यय बढ़ता जा रहा था। ऐसे में घर का खर्च चलाना भी कठिन हो जाता था।
1: किंतु सप्रे जी ने कभी अपनी कलम को बेचा नहीं। उन्होंने कभी किसी रियासत या धनिक वर्ग का पक्ष लेने के बदले आर्थिक सहायता नहीं ली। वे कहते थे, जो कलम बिक जाए वो कलम नहीं व्यापार है। ये उनके चरित्र की महानता थी। उनके परिवार ने भी उनकी साधना में निरंतर साथ दिया। उनकी पत्नी ने परिवार को कठिन परिस्थितियों में भी संभाला और सप्रे जी को अपने कार्य में लगे रहने का अवसर दिया।
2: माधवराव सप्रे का प्रभाव अपने समकालीन और परवर्ती साहित्यकारों पर बहुत गहरा था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी उनके सबसे प्रमुख शिष्य और अनुयायी।

0: लगातार बिगड़ता रहा। वर्षों की अथक मेहनत, अनिद्रा, आर्थिक तनाव और राष्ट्रीय चिंताओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, किंतु उनकी जिजीविषा और कर्मनिष्ठा अंत तक बनी रही। अस्वस्थ होने पर भी वे लिखते रहे, सोचते रहे और हिंदी के भविष्य की चिंता करते रहे। उनके अंतिम दिनों में उनके निकट जो लोग थे, उन्होंने बताया है कि वे अंत तक हिंदी और भारत की स्वतंत्रता की चर्चा करते रहते थे।
1: अट्ठाईस अप्रैल 1926 को नागपुर में उनका निधन हो गया। वो मात्र 54 वर्ष की आयु में संसार से चले गए। उनके जाने से हिंदी साहित्य और पत्रकारिता को ऐसी अपूर्णीय क्षति हुई जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जब वो गए तो उनके पास भौतिक संपत्ति नाम मात्र को भी नहीं थी, किंतु उन्होंने हिंदी साहित्य को जो अमूल्य विरासत दी वो अनंत काल तक अक्षुण्य रहेगी।
0: सप्रे जी के निधन की सूचना मिलते ही हिंदी साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने उनके निधन पर जो शब्द लिखे, वे आज भी पढ़ने वालों की आंखें नम कर देते हैं। उन्होंने कहा था, सप्रे जी चले गए, हिंदी की एक मशाल बुझ गई, किंतु जो प्रकाश उन्होंने फैलाया वो कभी नहीं बुझेगा।
1: अनेक हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने उनके निधन पर विशेष अंक निकाले और उनके जीवन कार्य को श्रद्धांजलि दी। ये इस बात का प्रमाण था कि जिस हिंदी साहित्य की सेवा में सप्रे जी ने अपना जीवन अर्पित किया था, वो साहित्य जगत उनके महत्व को भली भांति जानता और मानता था। सप्रे जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान की स्थापना की गई। ये संग्रहालय हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का एक अनमोल संरक्षण केंद्र है।
0: दोस्तों, प्रतिवर्ष 19 जून को सप्रे जी की जन्म जयंती पर यहाँ विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को माधवराव सप्रे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में माधवराव सप्रे का स्थान कई दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट है।
1: हिंदी साहित्य के इतिहासकार प्रायः भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच के संक्रमण काल में माधवराव सप्रे को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद ने जो नींव रखी थी उसे आगे बढ़ाने में सप्रे जी जैसे लेखकों की अहम भूमिका थी।
0: महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को जो मानक स्वरूप दिया था, उस दिशा में सप्रे जी छत्तीसगढ़ मित्र से पहले ही काम कर रहे थे। इस अर्थ में सप्रे जी एक अग्रदूत थे जिन्होंने द्विवेदी युग की जमीन तैयार करने में योगदान दिया।
1: जब हम हिंदी कहानी का इतिहास लिखते हैं तो प्रायः प्रेमचंद से शुरुआत की जाती है, किंतु प्रेमचंद से पहले सप्रे जी ने जो बीज बोया था उसकी अनदेखी नहीं होना चाहिए। एक टोकरी भर मिट्टी और प्रेमचंद की पहली कहानी सौथ के बीच 6 वर्षों का अंतर है। यह अंतर बताता है कि सप्रे जी प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानी की जमीन तैयार कर रहे थे।
0: और दोनों में एक समानता भी है, दोनों ने अपनी कहानियों में सामान्य जन की पीड़ा और संघर्ष को केंद्र में रखा। दोनों ने साहित्य को समाज परिवर्तन का माध्यम माना। इस दृष्टि से सप्रे जी को प्रेमचंद के पूर्वज और पथ प्रदर्शक के रूप में देखा जाना चाहिए।
1: माधवराव सप्रे ने न केवल हिंदी साहित्य को बल्कि छत्तीसगढ़ को भी एक साहित्यिक पहचान दी। उनसे पहले छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य के मानचित्र पर लगभग अदृश्य था। छत्तीसगढ़ मित्र ने इस क्षेत्र को हिंदी साहित्य का एक सक्रिय केंद्र बनाया। आज छत्तीसगढ़ में जो समृद्ध हिंदी साहित्य परंपरा है उसके मूल में सप्रे जी का ही योगदान है। माधवराव सप्रे जी की जयंती को आज के डिजिटल और व्यावसायिक पत्रकारिता के युग में और भी प्रासंगिक रूप में देखा जाना चाहिए।
0: सप्रे जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि पत्रकारिता एक मिशन है, एक व्यापार नहीं। उन्होंने पत्रकारिता को सत्य, न्याय और जनसेवा के साधन के रूप में देखा और इस दृष्टि से कभी विचलित नहीं हुए। हिंदी के संदर्भ में भी उनकी दृष्टि आज प्रासंगिक है। जब हिंदी पर अंग्रेजी के वर्चस्व का खतरा बना हुआ है और हिंदी का व्यवसायीकरण हो रहा है, तब सप्रे जी की वो दृष्टि याद आती है जो हिंदी को एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय दायित्व मानती थी।
1: माधवराव सप्रे जी का जीवन हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के एक तपोवन की कथा है। वो एक ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने सुख, सुविधा, यश की परिवाह किए बिना अपना संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य और राष्ट्र सेवा को अर्पित कर दिया। उन्होंने पत्रकारिता को सत्य की खोज का माध्यम बनाया। एक छोटे से गांव पथरिया से निकलकर उन्होंने हिंदी साहित्य के आकाश में जो नक्षत्र स्थापित किया, वो आज भी आने वाली शताब्दियों में भी अपनी आभा बिखेरता रहेगा।
0: दोस्तों, माधवराव सप्रे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक युग थे, एक चेतना थे, एक आंदोलन थे। हिंदी की प्रथम कहानी का जो बीज उन्होंने 1901 में बोया था, वो आज वट वृक्ष बन चुका है और उसकी छाया में हिंदी साहित्य की अनंत शाखाएं फल फूल रही हैं।
1: हिंदी भाषा और साहित्य के प्रत्येक अनुरागी को इस महान विभूति के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हिंदी का आज का रूप संभव नहीं था। पथरिया की उस माटी को प्रणाम जिसने ऐसा रत्न दिया, उस कलम को प्रणाम जो जीवन भर अडिग रही, उस दृष्टि को प्रणाम जो एक खंडित और पराधीन भारत में भी स्वतंत्र और विकसित हिंदी का भी स्वप्न देखती रही। माधवराव सप्रे अमर हैं, उनकी कलम अमर है, उनकी दृष्टि अमर है और उनका स्वप्न अमर है।
0: तो श्रोताओं, आज हमने बात की है माधवराव सप्रे की। कार्यक्रम भारत विभूति में आज अपना सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर किसी भारत विभूति के बारे में आपको बताएंगे, उनके जीवन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपसे इजाजत लेने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा का, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा
1: और मनीषा।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: भारत विभूति। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

श्रोताओं, विहान ड्रामा वर्क्स की ओर से थिएटर आधारित विशेष कार्यशाला और चर्चित नाटक दोपहर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों के व्यक्तित्व विकास, प्रभावी संवाद, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता और मानवीय संवेदना को अनुभव के रूप में विकसित करना था। कार्यशाला का संचालन रंग निर्देशक सौरभ अनंत ने किया। उनके साथ रंगकर्मी श्वेता केतकर, हेमंत देवलेकर और अंकित परोचे ने अलग अलग थिएटर अभ्यासों, संवाद आधारित गतिविधियों, समूह खेलों और अभिव्यक्ति के प्रयोगों के माध्यम से प्रतिभागियों को संचार कौशल, सक्रिय श्रवण, आत्मविश्वास, सहयोग और व्यावहारिक नेतृत्व के पहलुओं से परिचित करवाया। कार्यशाला के बाद अधिकारियों के लिए श्रीकांत वर्मा की कहानी पर आधारित नाटक दोपहर प्रस्तुत किया गया। दो बच्चों, कप्तान और बिगुल की यात्रा पर आधारित इस प्रस्तुति ने बचपन, मित्रता, कल्पनाशीलता और जीवन की संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से मंच पर जीवंत किया।

श्रोताओं, आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव 2026 मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय अनघ मंच की ओर से शौर्य स्मारक में मनाया गया। महोत्सव में सुभद्रा कुमारी चौहान कविता अवार्ड के लिए 2 कवियों को सम्मानित किया गया। संस्था की ओर से वनवासी स्वतंत्रता सेनानियों के देशभक्ति के जज्बे को फिर से याद कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए एक काव्य पाठ भी आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 61 कवियों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर कांति श्रीवास्तव ने कविता सुनाई। हृदय भारत का मध्य प्रदेश गाथा अमर सुनाए रे, भारत के हृदय स्थल का गौरव जग को भाए रे। सांची के स्तूपों में अब भी बुद्ध वचन मुस्काते हैं, शांति सुधा के स्वर्णिम मोती जन जन तक पहुंचाते हैं। भीम बैठका की शैली गुफाएं इतिहास जगाए रे, भारत का हृदय प्रदेश गाथा अमर सुनाए रे। इसी कार्यक्रम में लक्ष्मी कुशवाहा ने सुनाया, कृतज्ञ बनो कृतघ्न नहीं वीरों का सम्मान करो, जिनके कारण सुरक्षित हैं हम उनका गुणगान करो। एक युवा जब घर से निकले माँ का आंचल छोड़ चला, सपनों से भी ऊपर रखकर देशभक्ति का दीप जला। मोह बंधन सब त्याग हृदय से कर्तव्य पथ पर बढ़ जाया, मातृभूमि का ऋण चुकाने जीवन अपना अर्पित करता। सर्द हवाएं तपता मरुस्थल या हम शिखरों का अभियान, हर मौसम में डटा हुआ रचता साहस का इतिहास महान। इसी तरह उमानाथ त्रिपाठी ने भी कविता सुनाई। वन वन गूंजी वीरता पर्वत बोला आज, आदिवासी शौर्य का लिखता भारत काज। जल जंगल अगरु भूमि की रक्षा जिनका धर्म, हंसते हंसते दे गए मातृ भीम को कर्म। शंकर शाह गरज उठे बनकर रण का गान, रघुनाथ ने संग दिया रखा देश का मान। भीमा नायक वज्र थे अन्यायों पर प्रहार, तात्या मामा बन गए जन जन के उद्धार। खाज्या नायक गर्जना गूंजी दसों दिशाए, सीता राम केवर बढ़े रिपुदल रहा थर्राए। इतिहास में खो गए कितने वीर महान, त्याग तपस्या याद कर दें उनको सम्मान, दें उनको सम्मान। श्रोताओं, नीलबड़ स्थित चेतना थिएटर में मंगलवार को युवा रंगकर्मी संदीप पाटिल लिखित एवं निर्देशित नाटक बातों बातों में का मंचन हुआ। नाटक का मार्गदर्शन प्रीति झा तिवारी ने किया था। इसमें आधुनिक वैवाहिक रिश्तों में बढ़ती संवादहीनता, गलतफहमियां और ओवरथिंकिंग को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया था। कहानी समय नामक व्यक्ति की है जो पत्नी से तलाक लेने का निर्णय कर चुका है। रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक अनजान महिला से होती है, जिससे वो वैवाहिक परेशानियां साझा करता है। महिला उसे समझाती है कि उसने कभी पत्नी के नज़रिए और भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की है। कुछ देर बाद महिला चली जाती है और समय की पत्नी स्टेशन पहुंचती है। तभी चाय वाला बताता है कि समय काफ़ी देर से अकेले बातें कर रहा था। यही खुलासा होता है कि वो महिला उसकी पत्नी ही थी।

श्रोताओ, 16 जुलाई को निकलेंगी भगवान जगन्नाथ की 4 रथ यात्राएं, लोगों को न्योता दे रही हैं प्रभात फेरियां। भगवान जगन्नाथ इन दिनों ज्वर लीला के कारण विश्राम काल में हैं। स्वस्थ होने के बाद 16 जुलाई को भोपाल में उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 5 स्थानों से रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। खास बात यह है कि इनमें से सिर्फ 2 रथ यात्राओं में ही भगवान प्रतीकात्मक रूप से अपनी मौसी के घर जाएंगे। इनमें भी एक स्थान पर भगवान केवल एक रात विश्राम करेंगे, जबकि दूसरे स्थान पर पूरे 9 दिन ठहरने की परंपरा निभाई जाएगी। दूसरी ओर पटेल नगर स्थित इस्कॉन मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। यहां 300 किलो खाजा तैयार किया जा रहा है और भगवान के लिए वृंदावन से करीब 1 लाख रुपए की विशेष पोशाक मंगाई गई है।

मानस भवन श्यामला हिल्स शांतिनगर स्थित श्री गौरा राधा वल्लभ मंदिर और कोलार के कान्हा कुंज से भी 16 जुलाई को रथ यात्राएं निकलेंगी। इन यात्राओं में भगवान नगर भ्रमण के बाद उसी मंदिर में लौट आएंगे जहां से उनका प्रस्थान होगा।

पावस की फुहारों के साथ मनुष्य का जीवन बदल जाता है, नई उमंग नई रंगत जीवन में दिखाई देने लगती है और इसी का प्रभाव मंदिरों में भी दिखाई देता है, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिरों में। वर्षा ऋतु के आगमन पर मंदिरों में भगवान का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। इतवारा स्थित श्रीहित रसिक मंडली मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल को पुष्प कुंज में विराजित किया गया है। चंपा, अपराजिता, मोगरा और कनेल के पुष्पों से बनी मालाएं धारण कराकर उनका मनोहारी श्रृंगार किया गया है। इस अवसर पर पावस के पदों का गायन हुआ, जिससे मंदिर परिसर भक्ति रस से भर गया। मंदिर सेवक ने बताया है कि आषाढ़ शुक्ल तृतीया से पावस ऋतु का शुभारंभ माना जाता है। इसी परंपरा के तहत आषाढ़ मास में प्रतिदिन ऋतु अनुरूप विशेष सेवाएं और श्रृंगार भगवान को समर्पित किए जाते हैं। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। अब परिक्रमा के आज के अंक से अनुमति चाहती हूँ। मैं आपकी दोस्त सुनीता सिंह, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। आइए अब सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

0: यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का ऐसा गुच्छा जिसकी हर पंखुड़ी में इतिहास की धड़कन बसती है, जहां शब्द दीपक बनकर जलते हैं और भावनाएं गंगा जल सी मन को पवित्र करती चली जाती हैं। यहां कविताएं केवल सुनाई नहीं जाती, वे समय के बंद कपाट खोलकर मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देती हैं।
1: श्रोताओं, पिछले अंक में आपने रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 8, 9 और 10 का काव्य पाठ सुना, जहां कर्ण की साधना उस दीपक की तरह दिखाई दी जो आंधियों के बीच भी अपनी लौ बचाए रखता है। महेंद्र पर्वत की नीरवता में बैठा वह सूर्य पुत्र अपने भाग्य से नहीं, स्वयं से युद्ध कर रहा था। गुरु परशुराम के चरणों में बैठकर वह केवल अस्त्रों का ज्ञान नहीं पा रहा था, वह अपने जीवन की टूटी हुई तकदीर को नए पुरुषार्थ से गढ़ने में लगा था। किंतु श्रोताओं, कहा भी तो गया है कि सत्य की डोरी चाहे जितनी लंबी हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। नियति ने भी वहीं अपना दांव चला। विषधर का दंश सहकर भी कर्ण की पलकों का न हिलना उस अग्नि का प्रमाण बन गया जो साधारण मनुष्य में नहीं जलती, और उसी क्षण गुरु परशुराम के सामने वह रहस्य खुल पड़ा जिसे कर्ण अपने प्राणों की तरह छिपाए फिर रहा था।
0: श्रोताओं, विश्वास जब टूटता है तो उसकी प्रतिध्वनि पत्थरों में नहीं, हृदय में सुनाई देती है। परशुराम के भीतर भी यही तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर उनका अटल व्रत, दूसरी ओर पुत्र व्रत प्रिय शिष्य के प्रति उमड़ता वात्सल्य। मानो धर्म और करुणा आमने सामने खड़े हों और दोनों ही पीछे हटने को तैयार ना हो। और कर्ण वो अपराधी की तरह नहीं, तपस्वी की भांति खड़ा है। उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल ये पीड़ा है कि जिसने उसे अपने हृदय का स्थान दिया, उसी के विश्वास को वो अनजाने में छल बैठा। यही कारण है कि ये प्रसंग केवल शाप की कथा नहीं बनता, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले उस महासंग्राम का स्वरूप ले लेता है, जहां प्रेम और प्रतिज्ञा दोनों अपनी अपनी कीमत मांगते हैं।
1: श्रोताओं, समय का रथ अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां शब्द अंगार बनेंगे, आंखें अश्रु से भरेंगी और नियति अपना कठोर निर्णय सुनाएगी। गुरु का क्रोध वज्र की तरह गिरेगा, किंतु उसके भीतर स्नेह की धधकती राख भी दिखाई देगी। और कर्ण, वह टूटकर भी झुकेगा नहीं, क्योंकि उसके भीतर का स्वाभिमान हिमालय की चोटी की तरह अडिग है। तो आइए अब बढ़ते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 11, 12 और 13 की ओर, जहां करुणा महाकाव्य बनती है, वियोग इतिहास रचता है और गुरु शिष्य का ये संबंध मानवता की सबसे उज्जवल गाथाओं में परिवर्तित हो जाता है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं दूसरे सर्ग के भाग 11 का काव्य पाठ और चर्चा।
0: तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या पता था लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं, लेकिन कहां उतारूं मैं।
1: इस पद पर बोला कर्ण,
2: दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को, अनल आज है गुरु ज्ञानी। परसाई अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग कर जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। दंड भोग कर जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा।
1: परशुराम ने कहा,
0: कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा। है ये मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा, उसे भूल तू जाएगा, उसे भूल तू जाएगा।
1: परशुराम आहत हैं। उन्हें छल से अधिक उस विश्वास के टूटने की पीड़ा है जिसे उन्होंने पुत्रवत संजोया था। और कर्ण, कर्ण अपराधी सा नहीं तपस्वी सा खड़ा है, दंड को दया समझकर स्वीकारने को तत्पर। श्रोताओं, वे बड़े खरे लोग थे जो अपने धर्म से तनिक भी डिगते नहीं थे, प्रेम को अपने स्वार्थ सिद्धि की ढाल नहीं बनाते थे। आज हम सभी इन मानव मूल्यों और नैतिक बल से कितनी दूर निकल चुके हैं। यही श्राप की त्रासदी है जब स्नेह को भी धर्म के आगे झुकना पड़ता है।
0: श्रोताओं, कर्ण पर श्राप का वज्र गिरा, पर उसके साथ आशीर्वाद की धूप भी झर पड़ी। कर्ण व्याकुल है, उसे जीवन नहीं साधना के निष्फल हो जाने का दुख साल रहा है। और परशुराम, वे भी पत्थर नहीं है, व्रत की मर्यादा उन्हें कठोर बनाती है, पर भीतर का स्नेह बार बार आंखों तक आ जाता है। वे शस्त्र का तेज हरते हैं, पर कर्ण के पौरुष पर विश्वास भी जताते हैं, दंड देते हैं, पर भविष्य की कीर्ति का वरदान भी। यहीं भाग 12 की भूमि तैयार होती है जहां शाप केवल क्षति नहीं चरित्र की अग्नि परीक्षा बन जाता है। गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने धर्म के प्रति अडिग हैं, पर दोनों के हृदय भीग रहे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 12 का काव्य पाठ।
1: कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे,
3: हाय हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारूढ़, लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं।
1: परशुराम ने कहा,
0: कर्ण ये शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से नवीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहां पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो, व्रत मेरा मत भंग करो, व्रत मेरा मत भंग करो।
1: यह आत्मसंयम की चरम स्थिति है। गुरु स्वयं को कठोर बना रहे हैं ताकि उनका व्रत न टूटे। यह विछोह करुण और उदात्त दोनों है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूल गुरुह कृपा। अर्थात गुरु मूर्ति का ध्यान करना ही सभी ध्यानों का मूल है। गुरु चरणों की पूजा करना ही सभी पूजाओं का मूल है। गुरु का वाक्य ही सभी मंत्रों का मूल है और गुरु की कृपा ही मोक्ष के समान है। श्रोताओं, अब यदि हम इस श्लोक की भावना को परशुराम और कर्ण के प्रसंग से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि परशुराम के भीतर केवल क्रोध नहीं था, वहां गुरु का वही विराट स्वरूप उपस्थित था। उन्होंने श्राप दिया क्योंकि व्रत और धर्म उनके लिए सर्वोपरि थे, किंतु कर्ण के प्रति उनका स्नेह कम नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तेज हर लिया पर उसकी कीर्ति का वरदान भी दिया। यह द्वंद नहीं गुरु हृदय की व्यापकता है। कर्ण एकलव्य से कम नहीं था गुरु भक्ति में। श्रोताओं, कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उसका कवच कुंडल नहीं, उसकी गुरु भक्ति है। जब सत्य उजागर हुआ, जब श्राप मिला, तब भी उसने दृष्टि उठाकर प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि वह गुरु चरणों में झुक गया। जिसने उसे दंड दिया उसी के प्रति उसका सम्मान तनिक भी कम नहीं हुआ। यही तो शिष्यत्व की पराकाष्ठा है, जहां अहम नहीं केवल समर्पण बोलता है। यही गुरु भक्ति कर्ण को महान बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने गुरु का मान रखे वही सच्चा शिष्य कहलाने योग्य होता है।
0: आज के समय में हम देखते हैं कि कई स्थानों पर शिक्षक पात्र और कुपात्र का विवेक खो बैठते हैं। कहीं स्वार्थ, कहीं पक्षपात, कहीं निजी लाभ शिक्षा के पवित्र संबंध को कलुषित कर देते हैं। गुरु का स्थान तभी ऊंचा है जब वो निष्पक्ष हो, न्यायप्रिय हो और शिष्य के उत्थान को अपने अहम से ऊपर रखे। परशुराम का यह प्रसंग हमें स्मरण कराता है कि गुरु का धर्म कठोर हो सकता है पर उसका हृदय करुणामय होना चाहिए। जहां व्रत और प्रेम साथ चलें, वहीं सच्चा शिक्षण जन्म लेता है।
1: श्रोताओं, यहीं से द्वितीय सर्ग के अंतिम चरण की महाकाव्यात्मक भूमिका प्रकट होती है। श्राप और आशीष, त्याग और करुणा दोनों मिलकर इस क्षण को दिव्य वियोग में रूपांतरित कर देते हैं। गुरु शिष्य को दूर भेजते हैं क्योंकि कभी कभी प्रेम का परम रूप विरह ही होता है। आइए अब बढ़ें उस अंतिम प्रसंग की ओर, जहां काल का रथ अविराम है और चलना ही नियति। आइए अब हम बढ़ते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के अंतिम भाग की ओर, भाग 13, जहां करुणा महाकाव्य बनती है और वियोग इतिहास रचता है। परशुराम कहते हैं,
0: हाँ, बुद्धि कहती थी कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा। जाने क्यों जय, अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा ना लूं अभिशाप, पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए, पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए।
1: इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वही कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान दिया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरि श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, जैसे चांद चलता हो गगन में। यह गुरु का आंतरिक द्वंद है, धर्म और स्नेह का संघर्ष। बाहर कठोरता, भीतर करुणा की गंगा प्रवाहित हो रही है। यह मौन विदाई है, शब्द समाप्त हो गए हैं, केवल अश्रु संवाद कर रहे हैं। यह केवल गुरु शिष्य का वियोग नहीं, यह धर्म और प्रेम के बीच की मौन अग्नि परीक्षा है। परशुराम की बुद्धि अडिग है, पर हृदय भीग चुका है। कर्ण की साधना टूट गई, किंतु उसकी श्रद्धा नहीं टूटी। वह चरण धूल लेकर चला है, मानो अपने जीवन की शेष ज्योति उसी भक्ति से प्रज्वलित करने लगा हो।
0: श्रोताओं, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रसंग को केवल करुण घटना नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे मनुष्य के भीतर चलने वाले सनातन संघर्ष, कर्तव्य और करुणा, व्रत और वात्सल्य, न्याय और प्रेम का महाभाव बना दिया। यही कारण है कि यह प्रसंग काल की सीमाओं से परे आज भी उतना ही स्पंदित है जितना तब था, क्योंकि मनुष्य का हृदय आज भी उसी द्वंद्व से गुजरता है। श्रोताओं, इसी करुण दीप्त क्षण के साथ द्वितीय सर्ग को प्रणाम। काव्य गुंजन के आगामी अंक में हम इस महाकाव्य यात्रा के अगले चरण की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां नियति का रथ और भी वेग से आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
0: और मैं संदीप शर्मा,
4: और मैं दीपक नेमा।
1: श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
0: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
5: काव्य गुंजन, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। अगला कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। श्रोताओं, इसके पिछले भाग में हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की थी पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर पी के आयंगर जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। आइए आगे हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं।
3: विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर आयंगर ने कई सुधार किए। उन्होंने प्रयोगशाला में नए उपकरण मंगवाए, पुस्तकालय का विस्तार किया और छात्रों के लिए अधिक शोध अवसर बनाए। उनका मानना था कि छात्रों को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुभव भी मिलना चाहिए। एक बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने वनस्पति विज्ञान विभाग के बजट में कटौती करने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर आयंगर ने कुलपति से मुलाकात की और दृढ़ता से अपनी बात रखी। सर, विज्ञान में निवेश देश का भविष्य है। अगर हम आज अपने छात्रों को अच्छी सुविधाएं नहीं देंगे तो कल भारत वैज्ञानिक प्रगति में पिछड़ जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बजट कटौती पर पुनर्विचार करें।
2: कुलपति डॉक्टर आयंगर के तर्क और समर्पण से प्रभावित हुए। ना केवल बजट कटौती रद्द की गई, बल्कि अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित की गई। डॉक्टर आयंगर के मार्गदर्शन में कई छात्रों ने पीएचडी की। उनकी मार्गदर्शन शैली बहुत व्यक्तिगत थी। हर शोधार्थी के साथ वे सप्ताह में कम से कम एक बार बैठते और उनकी प्रगति पर चर्चा करते।
3: एक शोधार्थी सुब्बा लक्ष्मी, जो दक्षिण भारत की पहली महिला वनस्पति

0: पति विज्ञानी बनी। उन्होंने बाद में लिखा, प्रोफेसर आयंगर मेरे जीवन के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। उस समय महिलाओं के लिए विज्ञान में करियर बनाना बहुत कठिन था। समाज का दबाव था कि विवाह करो और घर संभालो, लेकिन प्रोफेसर आयंगर ने मुझे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, सुबलक्ष्मी, विज्ञान में लड़का लड़की नहीं देखा जाता, केवल प्रतिभा देखी जाती है। तुम में वो प्रतिभा है। उनके समर्थन के बिना मैं कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाती।
1: एक अन्य शिष्य नटराजन, जो बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक बने, उन्होंने याद किया, प्रोफेसर आयंगर केवल शिक्षक नहीं थे, वे पिता समान थे। एक बार मैं अपने शोध में बहुत निराश था, परिणाम नहीं मिल रहे थे और मैं सोच रहा था कि शोध छोड़ दूं। प्रोफेसर को पता चला, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। श्रीमती आयंगर ने चाय और स्नैक्स परोसे। प्रोफेसर ने मेरे साथ घंटों बैठकर मेरे शोध पर चर्चा की। उन्होंने कहा, नटराजन, विफलता सफलता का हिस्सा है। हर महान खोज असफलताओं के ढेर पर बनी है। तुम हार मत मानो। उस शाम ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने शोध जारी रखा और अंततः सफल हुआ।
0: डॉक्टर आयंगर को अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाता था। 1939 में उन्हें लंदन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया। ये यात्रा कठिन समय में थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। लक्ष्मी चिंतित थी, क्या आपको वास्तव में जाना चाहिए? यूरोप में युद्ध हो रहा है। डॉक्टर आयंगर ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। भारत का प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात है।
1: सम्मेलन में डॉक्टर आयंगर ने अपनी एक प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति को काफी सराहना मिली। यूरोपीय वैज्ञानिक भारतीय समुद्री वनस्पतियों की विविधता से प्रभावित हुए। सम्मेलन के बाद कई वैज्ञानिकों ने डॉक्टर आयंगर से संपर्क किया और सहयोग की पेशकश की। ये भारतीय विज्ञान के लिए गर्व का क्षण था।
0: डॉक्टर आयंगर भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। 1942 में उन्हें वनस्पति विज्ञान खंड का अध्यक्ष चुना गया। उनका अध्यक्षीय भाषण बहुत प्रभावशाली था। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। भारत स्वतंत्रता के करीब है। एक स्वतंत्र भारत को मजबूत वैज्ञानिक आधार की जरूरत होगी। वनस्पति विज्ञान केवल पौधों का अध्ययन नहीं है, ये कृषि, औषधि, पर्यावरण सभी से जुड़ा है। हमें युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करना होगा, शोध को बढ़ावा देना होगा और देश की समृद्धि के लिए विज्ञान का उपयोग करना होगा।
1: भाषण के बाद कई युवा छात्र डॉक्टर आयंगर से मिलने आए। उनमें से एक ने कहा, सर, आपने हमें प्रेरित किया है, हम भारत के लिए काम करना चाहते हैं। डॉक्टर आयंगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही मेरा उद्देश्य था। विज्ञान देश की सेवा का एक माध्यम है। 1940 के दशक में जब डॉक्टर आयंगर अपने करियर के शिखर पर थे, घर पर चुनौतियां भी बहुत थीं। बड़े बेटे रामकृष्णन किशोरावस्था में थे और विद्रोही हो रहे थे। उन्हें विज्ञान में कोई रुचि नहीं थी, वे संगीत और कला में रुचि रखते थे। एक दिन रामकृष्णन ने घोषणा की, पिताजी, मैं वैज्ञानिक नहीं बनना चाहता, मैं संगीतकार बनना चाहता हूं।
0: ये डॉक्टर आयंगर के लिए निराशा का क्षण हो सकता था। कई पिता अपने बच्चों को अपने पेशे में ही देखना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर आयंगर अलग थे। उन्होंने गहरी सांस ली और शांति से कहा, रामकृष्णन, मैं चाहता हूं कि तुम वो बनो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर संगीत तुम्हारा जुनून है तो उसका पीछा करो, लेकिन याद रखो, जो भी करो पूरी ईमानदारी और समर्पण से करो।
1: लक्ष्मी, जो पास में बैठी थी, उन्होंने अपने पति का हाथ दबाया। वे जानती थी कि ये निर्णय डॉक्टर आयंगर के लिए आसान नहीं था, लेकिन ये सही था। रामकृष्णन बाद में एक प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीत कलाकार बने। हर कॉन्सर्ट के बाद वे अपने पिता को धन्यवाद देते, पिताजी आपने मुझे मेरे सपने पूरे करने दिए। बेटी सरस्वती बहुत बुद्धिमान थी और विज्ञान में रुचि रखती थी, लेकिन 1940 के दशक में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा असामान्य थी। रिश्तेदार दबाव डालते, सरस्वती अब 18 की हो गई है, उसकी शादी करा दो।
0: लेकिन डॉक्टर आयंगर और लक्ष्मी दृढ़ थे। उन्होंने सरस्वती को कॉलेज भेजा। सरस्वती ने वनस्पति विज्ञान में स्नातक किया और अपने पिता की तरह शोध में रुचि विकसित की। एक दिन सरस्वती ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपकी तरह वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। डॉक्टर आयंगर की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। बेटी तुम मुझसे भी बेहतर वैज्ञानिक बनोगी, मैं तुम्हारी हर कदम पर मदद करूंगा। सरस्वती ने अपने पिता के मार्गदर्शन में PhD की और भारत की शुरुआती महिला वनस्पति विज्ञानियों में एक बनी।
1: 1945 में लक्ष्मी गंभीर रूप से बीमार पड़ी। तेज बुखार और कमजोरी थी। डॉक्टर ने कहा कि ये टाइफाइड हो सकता है। डॉक्टर अयंगर बहुत चिंतित थे। उन्होंने कॉलेज से छुट्टी ली और लक्ष्मी की देखभाल में दिन रात लगे रहे। वे खुद उनके लिए खाना बनाते, दवा देते और रात में उनके पास बैठे रहते। बच्चों ने भी मदद की। सरस्वती ने घर का काम संभाला, रामकृष्णन छोटे वेंकटेश का ख्याल रखते। कई सप्ताहों की देखभाल के बाद लक्ष्मी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। जब वे पूरी तरह ठीक हुई, उन्होंने डॉक्टर आयंगर से कहा, आपने मेरी जान बचाई।
0: डॉक्टर आयंगर ने भावुक होकर कहा, लक्ष्मी तुम मेरी जीवन साथी हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य और प्रेम दोनों है। इस घटना ने पूरे परिवार को और करीब ला दिया। बच्चों ने देखा कि उनके माता पिता के बीच कितना गहरा प्रेम और सम्मान है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर आयंगर और उनका परिवार मद्रास की सड़कों पर उत्सव में शामिल हुआ। तिरंगा फहराया गया और लोग नाचे और गाए। डॉक्टर आयंगर ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों ये ऐतिहासिक दिन है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक मजबूत भारत बनाने में योगदान दें। विज्ञान, शिक्षा, सेवा, हर क्षेत्र में हमें काम करना होगा।
1: स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विज्ञान और शिक्षा पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। डॉक्टर आयंगर को कई सरकारी समितियों में शामिल किया गया जो वैज्ञानिक नीतियां बनाती थीं। 1950 के दशक में डॉक्टर आयंगर अब 60 के दशक में थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। उन्होंने 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए थे और कई पुस्तकें लिखी थीं। 1954 में भारत सरकार ने घोषणा की, प्रोफेसर PK आयंगर को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये खबर जब मिली, पूरे मद्रास विश्वविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई।
0: छात्रों ने विशेष समारोह आयोजित किया, विभाग को फूलों से सजाया गया, सहकर्मियों ने बधाई दी। प्रोफेसर आयंगर विनम्रता से सबका आभार व्यक्त करते रहे। घर पर लक्ष्मी ने विशेष पूजा की और गरीबों को भोजन कराया। बच्चों ने मिठाई वितरित की। रामकृष्णन ने एक विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित किया अपने पिता के सम्मान में। पुरस्कार समारोह के लिए पूरा परिवार दिल्ली गया। ये छोटे वेंकटेश की पहली दिल्ली यात्रा थी। राष्ट्रपति भवन की भव्यता देखकर वे चकित थे।
1: समारोह का दिन आया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में भव्य व्यवस्था थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना था, कलाकार, वैज्ञानिक, समाज सेवक। जब प्रोफेसर आयंगर का नाम पुकारा गया, वे मंच की ओर बढ़े। सफेद धोती, सफेद शर्ट और काले कोट में वे बहुत गरिमामय दिख रहे थे। तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण का पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा, प्रोफेसर आयंगर, आपने भारतीय वनस्पति विज्ञान को समृद्ध किया है और कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया है। देश आपका आभारी है।
0: प्रोफेसर आयंगर ने विनम्रता से कहा, महामहिम, ये सम्मान मेरे गुरुओं, सहकर्मियों, छात्रों और परिवार का है। विज्ञान एक सामूहिक यात्रा है, मैं केवल एक छोटा योगदान करता हूँ। दर्शकों में बैठी लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोचा कि वो गरीब केरल गांव का लड़का कितनी दूर आ गया है। पद्म भूषण के बाद प्रोफेसर आयंगर और भी विनम्र हो गए। उन्होंने कहा, सम्मान जिम्मेदारी बढ़ाते हैं, अब मुझे और अधिक काम करना होगा।
1: वे अपने शोध में और भी सक्रिय हो गए। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की जो भारतीय समुद्री वनस्पतियों का संपूर्ण दस्तावेजीकरण है। उन्होंने कई युवा शोधकर्ताओं को इस परियोजना में शामिल किया। प्रत्येक शोधकर्ता एक विशेष समुद्री क्षेत्र का अध्ययन करता। ये एक बहुवर्षीय परियोजना थी जो भारतीय वनस्पति विज्ञान के लिए मील का पत्थर साबित हुई। पद्म भूषण के बाद प्रोफेसर आयंगर को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें फेलोशिप प्रदान की। ये किसी भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ा सम्मान था।
0: जर्मनी की एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें मानद सदस्यता दी। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। 1958 में प्रोफेसर आयंगर ने अमेरिका की 3 महीने की यात्रा की। उन्होंने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT में व्याख्यान दिए। अमेरिकी वैज्ञानिक भारतीय विज्ञान की प्रगति से प्रभावित हुए। एक अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा, प्रोफेसर आयंगर, आप साबित करते हैं कि विश्व स्तरीय विज्ञान केवल पश्चिम में ही नहीं होता, भारत भी महान वैज्ञानिक पैदा करता है।
1: 1960 के दशक में प्रोफेसर आयंगर अब 60 के दशक के अंत में थे। शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। लंबे घंटे प्रयोगशाला में खड़े रहना मुश्किल हो गया था। आंखों की रोशनी कम हो रही थी जिससे सूक्ष्मदर्शी से काम करना कठिन था, लेकिन उनका मन अभी भी जवान था। वे हर सुबह कॉलेज जाते, हालांकि अब बेटा वेंकटेश उन्हें कार में छोड़ने लगा था। लक्ष्मी चिंतित रहती थी, अब आराम करने का समय आ गया है, आपने पर्याप्त काम किया है। लेकिन प्रोफेसर आयंगर मुस्कुराते, लक्ष्मी जब तक शरीर साथ दे मैं काम करूंगा, विज्ञान मेरा जीवन है।
0: 1962 में जब प्रोफेसर आयंगर 66 वर्ष के हुए, उन्हें विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार रिटायर होना पड़ा। रिटायरमेंट समारोह भव्य था, पूरा विश्वविद्यालय इकट्ठा हुआ। कुलपति ने कहा, प्रोफेसर आयंगर ने इस विश्वविद्यालय को 35 वर्ष दिए। उन्होंने सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया जो अब देश विदेश में प्रतिष्ठित पदों पर हैं। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। छात्रों ने एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया। पुराने छात्र जो अब मध्यम आयु के प्रोफेसर थे, देश के विभिन्न हिस्सों से आए। एक एक करके उन्होंने अपने अनुभव साझा किए।
1: नटराजन जो अब IARI के निदेशक थे, उन्होंने कहा, सर आपने मुझे न केवल विज्ञान सिखाया बल्कि जीवन जीना सिखाया, आप हमेशा मेरे आदर्श रहेंगे। सुब्बा लक्ष्मी जो अब दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थीं, उन्होंने कहा, सर एक महिला के रूप में विज्ञान में मेरी यात्रा कठिन थी, लेकिन आपने मुझे साहस दिया, आपने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं सफल हो सकती हूँ।
0: प्रोफेसर आयंगर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय छात्रों, आप सब मेरे गर्व हो। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार ये देखना है कि उसके छात्र सफल हो रहे हैं। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर आयंगर घर पर रहने लगे। शुरुआत में ये मुश्किल था, 35 वर्षों तक कॉलेज जाना एक आदत सी बन गई थी। अचानक घर पर पूरा दिन बिताना अजीब लगता था।
1: लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नई दिनचर्या बनाई। सुबह बगीचे में समय बिताते, उन्होंने घर में एक छोटा सा वनस्पति उद्यान बनाया जहां विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। पोते पोतियों के साथ वहीं पर समय बिताते, दोपहर में अपनी पुस्तकों पर काम करते। उन्होंने अपने जीवन भर के शोध को संकलित करना शुरू किया। वे अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में लगे रहते।
0: रिटायरमेंट के बाद भी प्रोफेसर आयंगर ने लिखना बंद नहीं किया। उन्होंने कई लेख लिखे जो वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उनकी कई लेख प्रकाशित हुए और पुस्तक तुरंत वनस्पति विज्ञान के छात्रों के लिए मानक बन गई। पुस्तक के लोकार्पण समारोह में कुलपति ने कहा, प्रोफेसर आयंगर रिटायर हो गए हैं, लेकिन विज्ञान में उनका योगदान जारी है। ये पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य संसाधन होगी।
1: उन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम किया, अपनी आत्मकथा लिखना शुरू की। हालांकि ये पुस्तक उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी, बाद में उनकी बेटी सरस्वती ने इसे पूरा किया और प्रकाशित करवाया। 1965 के आसपास प्रोफेसर आयंगर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें मधुमेह की समस्या थी जो नियंत्रित नहीं हो रही थी। हृदय भी कमजोर हो रहा था।
0: डॉक्टरों ने सलाह दी कि वे पूरा आराम करें और तनाव से बचें। लक्ष्मी ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने विशेष आहार तैयार किया, कम शक्कर, कम नमक, नियमित दवाइयां देती, लेकिन प्रोफेसर आयंगर के लिए निष्क्रिय रहना मुश्किल था। लक्ष्मी, मैं बिस्तर में नहीं रह सकता, मुझे कुछ काम करना होगा, वे यही कहते। लक्ष्मी समझाती, उन्होंने प्रोफेसर आयंगर के लिए बिस्तर के पास एक छोटी मेज लगाई जहां वे लेट कर भी पढ़ लिख सकते थे।
1: प्रोफेसर आयंगर के पुराने छात्र और सहकर्मी उनसे मिलने आते रहे। हर मुलाकात भावुक होती थी। नटराजन दिल्ली से आए, सुब्बा लक्ष्मी भी आई। कॉलेज के सहकर्मी, पुराने मित्र, सभी अपने प्रिय प्रोफेसर से मिलना चाहते थे। एक दिन भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मिलने का अनुरोध किया। हालांकि प्रोफेसर आयंगर बहुत कमजोर थे, उन्होंने मिलने की अनुमति दी।
0: प्रतिनिधि मंडल के जो नेता थे उन्होंने कहा, सर, आप भारतीय विज्ञान के स्तंभ हैं, आपका योगदान अमूल्य है, हम आपको सम्मान देने आए हैं। प्रोफेसर आयंगर ने धीमी आवाज में कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। भारतीय विज्ञान का भविष्य युवा वैज्ञानिकों के हाथों में है, उन्हें प्रोत्साहित करो, संसाधन दो और देखो कैसे भारत विश्व में विज्ञान का नेतृत्व करेगा।
1: 1966 के पतझड़ में या उसके आसपास प्रोफेसर आयंगर की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने परिवार को तैयार रहने की सलाह दी। पूरा परिवार घर पर इकट्ठा था। एक शांत रात जब चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, प्रोफेसर आयंगर ने अपनी आंखें खोली। लक्ष्मी उनके पास बैठी थी, उनका हाथ पकड़े हुए। बच्चे और पोते पोतियां भी पास में थे। प्रोफेसर आयंगर ने सबको देखा, उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने धीमे से कहा, मैं भाग्यशाली हूं, इतना प्यार मिला, सुंदर जीवन मिला। अब थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। 70 वर्ष की आयु में प्रोफेसर पी के आयंगर ने अपनी अंतिम सांस ली।
0: अगली सुबह खबर फैल गई। मद्रास विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक समुदाय, छात्र सभी शोक में डूब गए। विश्वविद्यालय ने एक दिन की छुट्टी घोषित की। प्रोफेसर आयंगर के पार्थिव शरीर को फूलों से सजाया गया। पारंपरिक दक्षिण भारतीय रीति के अनुसार उन्हें सफेद कपड़ों में लपेटा गया, चंदन का लेप लगाया गया। घर पर सैकड़ों लोग आए, छात्र, सहकर्मी, मित्र, रिश्तेदार, सभी ने श्रद्धांजलि दी। कई लोग रो रहे थे। नटराजन, सुब्बलक्ष्मी और अन्य पुराने छात्र विशेष रूप से दुखी थे।
1: दोपहर में अंतिम संस्कार के लिए जुलूस निकला। शव को एक सजे हुए ट्रक पर रखा गया। हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए। विश्वविद्यालय से लेकर शमशान घाट तक सड़कें लोगों से भरी हुई थी। कुलपति, विभाग के प्रोफेसर, छात्र सभी पैदल चल रहे थे। कुछ लोग प्रोफेसर आयंगर अमर रहे के नारे लगा रहे थे।
0: कुछ दिनों बाद मद्रास विश्वविद्यालय ने एक विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। हॉल खचाखच भरा था। मंच पर प्रोफेसर आयंगर का बड़ा चित्र लगा था, फूलों की माला से सजा हुआ। कुलपति ने कहा, आज हमने एक महान वैज्ञानिक एक प्रेरक शिक्षक और एक उत्कृष्ट इंसान को खो दिया। प्रोफेसर आयंगर ने अपना जीवन ज्ञान की खोज और उसके प्रसार में समर्पित किया। उन्होंने सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया जो आज देश विदेश में विज्ञान की सेवा कर रहे हैं। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।
1: नटराजन जो उनके शिष्य थे, उन्होंने भावुक होकर कहा, सर केवल शिक्षक नहीं थे, वे पिता, मित्र और मार्गदर्शक थे। उन्होंने हमें विज्ञान के साथ साथ जीवन के मूल्य भी सिखाए। उनकी विनम्रता, समर्पण और मानवता हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखा गया। पूरा हॉल शांत था, केवल सिसकियों की आवाजें आ रही थी।
0: प्रोफेसर आयंगर की मृत्यु के बाद मद्रास विश्वविद्यालय ने उनके सम्मान में कई पहल की। प्रोफेसर पीके आयंगर मेमोरियल लेक्चरर हर वर्ष एक प्रतिष्ठित वनस्पति वैज्ञानिक को ये व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आयंगर फेलोशिप युवा शोधार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जो वनस्पति विज्ञान में PhD कर रहे हैं। आयंगर हर्बेरियम विश्वविद्यालय में एक विशेष अनुभाग जहां प्रोफेसर आयंगर द्वारा एकत्रित नमूने संरक्षित हैं।
1: प्रोफेसर आयंगर के शोध पत्र और पुस्तकें आज भी वनस्पति विज्ञान के छात्रों द्वारा पढ़ी जाती है। कई शैवाल और कवक प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम में आयंगरी जुड़ा है, जिसका नामकरण उनके सम्मान में किया गया है।
0: आज 21वीं सदी में प्रोफेसर पीके आयंगर की कहानी युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। एक छोटे से केरल गांव से निकलकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक बनना, ये यात्रा दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। उनका जीवन ये सिखाता है कि ज्ञान की खोज एक आजीवन यात्रा है। शिक्षक का प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। विनम्रता और सरलता सच्ची महानता की निशानी है। परिवार और करियर में संतुलन संभव है। विज्ञान देश और मानवता की सेवा का माध्यम है।
1: प्रोफेसर पीके आयंगर का नाम भारतीय विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनकी विरासत, उनके शोध, उनके छात्र, उनके मूल्य आज भी जीवित हैं और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। प्रोफेसर पी के आयंगर का शरीर भले ही 1966 में हमें छोड़ गया, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनके मूल्य आज भी जीवित हैं। हर बार जब कोई छात्र सूक्ष्मदर्शी में एक कोशिका देखकर आश्चर्यचकित होता है, हर बार जब कोई शिक्षक अपने छात्र को प्रोत्साहित करता है, हर बार जब कोई वैज्ञानिक विनम्रता से अपना ज्ञान साझा करता है, प्रोफेसर आयंगर वहां मौजूद हैं।
0: उनकी ये कहानी केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, ये भारतीय विज्ञान के विकास की कहानी है। ये समर्पण और सेवा की कहानी है। ये प्रेम और परिवार की कहानी है। ये मानवता की कहानी है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की प्रोफेसर पी के आयंगर जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक निमा
0: और मैं प्रमिला मुंशी दिवाकर।
1: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। ये प्रसारण आप तक पहुंचा रेडियो आजाद हिंद के माध्यम से। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद की एक विदेशी शिष्या भगिनी क्रिस्टीन के संस्मरण हम सुन रहे हैं, जिसमें स्वामी जी के व्यक्तित्व के अनेक अनजाने पहलुओं की जानकारी मिल रही है। विविध विषयों पर स्वामी जी के कुछ दुर्लभ विचारों को भी हमने जाना है।
1: प्राचीन इतिहास के तो वे प्रकांड पंडित थे। उनके बताए गए ऐतिहासिक चरित्र इतने सजीव होते थे कि श्रोता उन चरित्रों के साथ एकात्म हो जाते थे। भगिनी क्रिस्टीन के संस्मरणों में हमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक चरित्रों के बारे में पता चलता है, जिनका वर्णन स्वामी जी ने अपने ढंग से किया था।
2: लगता था कि मुगलों ने स्वामी जी पर जादू कर दिया हो। भारतीय इतिहास का ये काल वे ऐसी प्रभावशाली सजीवता के साथ प्रस्तुत करते कि बहुधा हमें लगता मानो कि वे अपने ही अतीत की कथा सुना रहे हों। कई बार हम लोग ये सोचने को मजबूर हो जाते कि कहीं हम महाप्रतापी अकबर के नए अवतार को तो नहीं देख रहे हैं। स्वामी जी ने हमारे समक्ष इन शासकों, महारानियों, प्रधानमंत्रियों, सेना नायकों आदि के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का इतना जीवंत वर्णन किया है कि वे हमें परिचित सजीव नर नारी प्रतीत होने लगे। हमने फरगना के 12 वर्षीय बादशाह बाबर को देखा, जो अपनी मंगोल दादी से प्रभावित हुआ था और अपनी माँ के साथ एक बड़ा कठोर कष्टपूर्ण जीवन बिता रहा था। बाद में हमने उसे 100 दिनों तक समरकंद के सुल्तान के रूप में देखा, तब भी वो एक बालक ही था और अपनी इस नई उपलब्धि पर वैसे ही प्रसन्न था मानो उसे कोई बड़ा खिलौना मिल गया हो। फिर उसके अपने इस सपनों के नगर के खो जाने पर हमने उसकी चिंता तथा हताशा को देखा, उसके संघर्षों, उसकी जय पराजय को देखा। उसके बाद हमने उसे अपने सैनिकों के साथ उत्तुंग पहाड़ी दर्रे को पार करके भारत के मैदानी क्षेत्रों में उतरते देखा। एक विदेशी तथा आक्रांत होकर भी भारत के सम्राट के रूप में उसने स्वयं को इस देश के साथ एकात्म कर लिया था और तत्काल सड़कें बनवाने, पेड़ लगवाने, कुएं खुदवाने और नगरों के निर्माण कार्य में लग गया था। परंतु उसका हृदय हमेशा ही अपने उन पहाड़ी अंचलों में लगा रहता जहां से वो आया था और जहां आखिर में उसे दफनाया गया। वो एक आकर्षक और साहसी व्यक्ति था, जिसने मानव इतिहास के महानतम राजवंशों में से एक की स्थापना की थी।
0: स्वामी जी अकबर के भी प्रशंसक थे। अकबर की बातें, उनकी धर्मनिरपेक्षता आदि के बारे में स्वामी जी अपने विदेशी शिष्यों को बताते रहते थे।
2: इतिहास में उसके समान अनेक गुणों से युक्त बहुत ही कम हुए हैं। उनकी महानता और उदारता के समक्ष उनके महान सेनापति बैरहम खां भी लज्जित हो जाते थे। उनके किशोरावस्था में ही जब बैरहम खां ने उनके शत्रु को हासिल किया तो बोले, मैं पराजित शत्रु को नहीं मारता। उनका साहस निर्विवाद और सर्वजन प्रशंसित था। खेलकूद, निशानेबाजी, पोलो और घुड़सवारी में भी शायद ही कोई बराबरी कर पाता था। परंतु इन सब के बावजूद उनकी आदतें बड़ी ही संयमित थी। वे मांस नहीं खाते थे। कहते, मैं अपने पेट को कब्रिस्तान क्यों बनाऊं? हर रात वे केवल कुछ घंटे ही सोते और बाकी समय दार्शनिक तथा आध्यात्मिक चर्चाओं में बिताते। एक मुसलमान होकर भी वे सभी धर्मों के आचार्यों के उपदेश सुनते और उनसे प्रश्न भी करते। फिर एक ब्राह्मण को अपने कबाखाना में बुलाकर वे रात रात भर उससे हिंदू योग के रहस्य भी सीखते। बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक नवीन धर्म स्थापित करने की योजना बनाई, जिसमें मुसलमानों के साथ हिंदू, ईसाई तथा पारसी भी योगदान करने वाले थे।
1: अकबर कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते थे। हिंदू मुस्लिम दोनों ही उनके मित्र थे। क्रिस्टीन को स्वामी जी के विचार याद आते हैं। वे कहती हैं,
2: शहंशाह होकर भी उनमें सच्चे मित्र बनाने का गुण था। उनमें से चार ऐसे थे जो इन देवात्मा के मित्र होने के योग्य थे। उनके प्रधानमंत्री अबुल फजल, महाकवि फैजी, ब्राह्मण प्रशंसक बीरबल और साले तथा सेनापति मान सिंह, दो हिंदू और दो मुसलमान, दोनों फजल भाई भाई थे। उनके मित्र न केवल उनके साथ हंसी खुशी के मौके पर साथ रहते थे, अपितु दरबार और युद्ध में उनका जीवन खतरे में पड़ा तो वे लोग अपनी तलवारें निकालकर उनकी रक्षा में जुट गए। वे मुसलमान हो या हिंदू, उनके नए धर्म के अनुयायी बन गए और उनके सभी कार्यों का निष्ठापूर्वक समर्थन किया। किसी व्यक्ति को शायद ही कभी इतने सच्चे मित्र मिले होंगे।
0: स्वामी जी को स्त्रियों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। इतिहास प्रसिद्ध महिलाओं में नूरजहां ने उनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था।
2: अब जहांगीर की साम्राज्ञी नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी का आकर्षक व्यक्तित्व प्रकट होता है, जो 20 वर्षों तक भारत की वास्तविक शासक रही। इस अद्भुत महिला का प्रभाव असीम था। काफी हद तक उसी की महान विवेक बुद्धि तथा व्यावहारिकता के कारण साम्राज्य की स्थिरता, समृद्धि तथा सत्ता कायम रही। नूरजहां के शासन के दिनों में ही एक नए प्रकार की स्थापत्य कला आरंभ हुई, एक कोमल पद्धति का स्थापत्य जिसमें अकबर द्वारा निर्मित भवनों के मर्दाने लाल बलुआ पत्थरों के साथ सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ और उसमें तरह तरह के कीमती तथा कम कीमती जवाहरात जड़े जाने लगे। साधारण दीवारों की जगह रत्न जड़े दीवारों ने ले ली। मध्य एशियाई पहाड़ियों की ऊर्जा और ताकत का स्थान फारस की बारीकी और मृदुता ने ले ली। ताजमहल और संगमरमर के बने आगरा, दिल्ली तथा लाहौर के महल इसी स्थापत्य कला की विरासत है।
0: स्वामी जी के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों ही भारतीय हैं, उनमें वे कोई भेद नहीं करते थे।
2: उनके लिए भारत केवल हिंदुओं का ही नहीं, सबका देश था। वे प्रायः ही कहा करते, मेरे मुसलमान भाई, क्योंकि इन मुसलमान भाइयों की संस्कृति, धर्म निष्ठा तथा पौरुष के बारे में उनकी जो समझ, प्रशंसा और एकात्मता का भाव था, उसकी बराबरी शायद ही कोई मुसलमान भी कर पाता। उनकी एक यात्रा की संगनी बताती है कि जब चलियान ने जिब्राल्टर में प्रवेश किया तो मुसलमान लश्करों का दीन दीन पुकारते हुए जमीन पर लेट जाना देखकर स्वामी जी बड़ी गहराई तक अभिभूत हो गए थे।
1: हजरत मोहम्मद के बारे में बताते बताते स्वामी जी विभोर हो जाते थे। लगता नहीं था कि वे और किसी धर्म के बारे में कह रहे हैं।
2: वे लगातार घंटों तक अरब के उन युवा ऊंट चालकों के बारे में बोलते रहते जिन्होंने ईसा की 6वीं शताब्दी में अपने देश को पतन के गर्त में ऊपर उठाने का प्रयास किया था। हमें बोध हुआ कि अरब, फिलिस्तीन या भारत में जब ईश्वर के पुत्र नया जन्म लेते हैं तो वे सर्वत्र एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। स्वामी जी पैगंबर के एकाकीपन को महसूस करते थे। वर्षों तक केवल मुट्ठी भर लोगों ने ही उन पर तथा उनके संदेशों पर विश्वास किया। अरब के पैगंबर ने इस कार्य को जिस धैर्य, करुणा तथा उत्तरदायित्व के साथ पूरा किया उसे हम धीरे धीरे ही समझ सके थे। विशुद्धतावादी मानसिकता रखने वाले किसी ने प्रतिवाद करते हुए कहा, पर उन्होंने तो बहुविवाह का प्रचार किया था। इस पर स्वामी जी ने बताया कि अरब देशों में पहले से ही बहुविवाह का एक और भी विकृत रूप प्रचलन में था। मोहम्मद ने उसे प्रति व्यक्ति 4 पत्नियों तक ही सीमित कर दिया।
0: मुस्लिम धर्म के बारे में पश्चिमी लोगों में अनेक गलत धारणाएं थीं। स्वामी जी उनका निराकरण करते थे।
2: एक अन्य ने उद्विग्न स्वर में कहा, उनका कहना था कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती, इससे इस्लाम में महिलाओं का स्थान विषय पर व्याख्या की जरूरत पड़ी। अमेरिकी श्रोताओं को ये जानकर थोड़ी खींच भी हुई कि मुस्लिम महिलाओं को कुछ ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो तथाकथित स्वतंत्र अमेरिकी महिलाओं को भी प्राप्त नहीं।
1: भगिनी क्रिस्टीन से हमें स्वामी जी और उनके शिष्यों के बीच कैसा रिश्ता था ये मालूम पड़ता है।
2: स्वामी जी अपने शिष्यों को जो प्रशिक्षण देते थे वो हर एक के लिए भिन्न तथा विशिष्ट हुआ करता था। जब तक कोई निश्चित रूप से शिष्यत्व ग्रहण की इच्छा प्रकट नहीं करता और जब तक उन्हें विश्वास नहीं हो जाता कि दीक्षार्थी इस कदम के लिए तैयार है, तब तक वे अपने पास रहने वालों के व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। कुछ लोगों को वे पूर्ण स्वाधीनता दे देते और वे उसी स्वाधीनता में आबद्ध हो जाते। हमसे अपरिचित कुछ लोगों के बारे में वे ये बता देते, वो शिष्य नहीं मित्र है, वो एक बिल्कुल भिन्न प्रकार का संबंध होता। मित्रों के जीवन में भूलें तथा पूर्वाग्रह रह सकता था। मित्रगण संकीर्ण मनोवृत्ति रख सकते थे, परंपरागामी रह सकते थे, परंतु स्वामी जी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि वे दूसरों के जीवन से संबंधित कोई मत व्यक्त करना भी दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप जैसा अक्षम्य अपराध समझते थे।
0: गुरु शिष्य परंपरा को निभाना, शिक्षा तथा सीख जो स्वामी जी अपने शिष्यों को सिखाते थे, वे विदेशी शिष्यों के लिए नया था।
2: परंतु एक बार उन्हें गुरु स्वीकार कर लेने के बाद सब कुछ बदल जाता था। तब वे अपनी जिम्मेदारी महसूस करते थे, तब वे जानबूझकर शिष्य की दुर्बलताओं, पूर्वाग्रहों तथा मापदंडों पर और यहाँ तक कि व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली हर असंगति पर प्रहार करते। यदि आप अपने अपरिपक्व उत्साह में संसार में विश्वास करते तो आपकी इन सारी मधुर भ्रांतियों को दूर करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। वे समझा लेते, यदि अच्छाई सत्य है तो बुराई भी सत्य है, दोनों एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न पहलू हैं। अच्छाई और बुराई दोनों माया के अंतर्गत आते हैं। शुतुरमुर्ग के समान बालू में अपना सिर छिपाकर ये न कहो, सब कुछ अच्छा है, कहीं कोई बुराई नहीं है। जैसे मधुर की पूजा करते हो वैसे ही भयंकर की भी पूजा करो और उसके बाद दोनों के परे चले जाओ। कहो एकमात्र ईश्वर ही सत्य है। जब हम पर संकट आ पड़े तब भी क्या हम में ऐसा कहने का साहस है? क्या अब भी असंख्य लोग आपदा के शिकार नहीं है? क्या संसार दुखों से परिपूर्ण नहीं है? क्या लाखों लोगों का जीवन त्रासदी द्वारा अछत्र नहीं है? क्या पृथ्वी पर रोगी बाधर्क और मृत्यु का साम्राज्य नहीं व्याप्त है? इन वास्तविकताओं के बावजूद यदि कोई हल्केपन से कहता कि संसार सुंदर है तो या तो वह मूढ़ है और नहीं तो वह दूसरों की पीड़ाओं के प्रति पूर्णतः उदासीन, स्वार्थ केंद्रित है।
1: सांसारिक बातों को स्वामी जी उदाहरण देकर समझाते थे, इसलिए उनके शिष्य उन बातों को आसानी से समझ जाते थे।
2: यह संसार एक कीचड़ का गड्ढा है। स्वामी जी की ये उक्ति सुनकर हम लोगों को झटका सा लगा और विरोध, शंका तथा हल्की सी नाराजगी के स्वर भी उठे थे। वर्षों बाद एक अविस्मरणीय रविवार की सुबह कोलकाता के उपनगरीय दमदम मार्ग से जाते हुए मैंने कुछ भैंसों को कीचड़ में लौटते देखा था। उसे देखते ही मेरा मन तत्काल वितृष्णा के भाव से परिपूर्ण हो उठा। मेरे मन में आया कि भैंसों को भी आनंद मनाने के लिए कीचड़ की अपेक्षा थोड़ी अच्छी चीज ढूंढना चाहिए, परंतु उन्हें उसी में शारीरिक सुख का बोध हो रहा था। तभी सहसा स्मरण हो आया, ये संसार एक कीचड़ का गड्ढा है। अमृत्व के उत्तराधिकारी और उच्चतर जीवनोद्देश्य रखने वाले हम लोगों की भी हालत इन भैंसों से बेहतर नहीं है। हम भी इस संसार रूपी कीचड़ के गड्ढे में लौटते हैं और हमें भी इसी में आनंद आता है।
0: स्वामी जी सबको स्वावलंबी बनाना चाहते थे ताकि वे गुरु पर निर्भर ना रहकर अपना रास्ता खुद ढूंढ सकें।
2: हमारी समस्याओं का वे स्वयं समाधान नहीं करते थे, वे आदर्श को हमारे समक्ष रख देते थे, परंतु उसका उपयोग हमें स्वयं ही करना पड़ता था। वे स्वयं पर किसी भी तरह की ढुलमुल निर्भरता या सहानुभूति की अपेक्षा को प्रोत्साहित नहीं करते थे। वे गरज उठते, अपने स्वयं के पांवों पर खड़े हो, तुम्हारे भीतर ही अनंत शक्ति निहित है। उनका एकमात्र उद्देश्य हमारे लिए मार्ग को सहज बनाना नहीं, अपितु हमें स्वयं में निहित शक्ति को विकसित करना सिखाना था। वे कहते, शक्ति शक्ति, मैं शक्ति के अलावा अन्य किसी तत्व का प्रचार नहीं करता और इसीलिए मैं उपनिषदों का ही प्रचार करता हूं।
0: स्त्रियों के उत्थान का प्रश्न उनके मन में सदा बना रहता था, वे उसी कार्य को प्राथमिकता देते थे।
2: महिलाओं की भूमिका के बारे में वे क्या सोचते थे? निश्चय ही वह बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने तक ही सीमित नहीं था, पहले से ही हजारों स्कूल विद्यमान थे। एक कम या अधिक होने से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला था और ना ही वह आवासीय विद्यालय चलाने जैसा कुछ था। भले ही उससे उन बालिकाओं को आश्रय देने की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती जिनके माता पिता उनका विवाह कराने में असमर्थ थे।
1: स्त्रियों के उद्धार के लिए उन्हें किसी उपयुक्त महिला की जरूरत थी। वे उस आदर्श नारी को खोज कर लाना चाहते थे।
2: जब वे भारत का भ्रमण कर रहे थे, उन दिनों में भी वे उस नारी की खोज कर रहे थे जो उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। एक एक कर कईयों का परीक्षण किया गया, पर उनमें से कोई भी योग्य साबित नहीं हुई। उनमें से एक से उन्हें बड़ी उम्मीद थी। उसके विषय में जब उनसे पूछा गया क्या वो भी नहीं, तो उन्होंने उत्तर दिया था, देखो उसमें अपना खुद का ही कार्य करने की प्रवृत्ति है, इसमें कोई आलोचना नहीं थी, अपितु वास्तविकता का निरूपण मात्र था। जिन्हें उनका कार्य करना हो उसमें पवित्रता, शिष्यत्व और श्रद्धा के गुण होना अनिवार्य था। वे बहुधा और सर्वदा बड़े मार्मिक भाव से कहते, मुझे पवित्रता से लगाव है। वे कहते, सारे प्रयास सीता के आदर्श पर आधारित होने चाहिए। सीता जो पवित्रता से भी बढ़कर पवित्र थी, सतीत्व की प्रतिमूर्ति थी, धैर्य और सहनशीलता से परिपूर्ण थी। वे ही भारतीय नारियों की आदर्श है। वे भारतीय नारी की ठीक वैसी ही प्रतिरूप है जैसा कि उन्हें होना चाहिए, क्योंकि पूर्णता प्राप्त नारी के सभी भारतीय आदर्श एकमात्र सीता के जीवन में केंद्रीभूत हैं और वे हजारों वर्षों से पूरे आर्यावर्त के हर नर नारी तथा बालक की पूजा ग्रहण करती हुई विराजमान है।
0: स्वामी जी के लिए आदर्श नारी केवल कोमल पवित्र गुणों का आधार ना होकर साथ साथ वीरांगना भी होनी चाहिए।
2: पवित्रता के बारे में वे निरंतर बोलते रहते, परंतु उसके साथ ही कभी कभी एक अन्य गुण का भी आभास देते जो सीधे सीधे नारीत्व से संबंधित नहीं है। तथापि वे जो कहानियां बताते उनसे हम समझ जाती थी कि उनके मतानुसार उसके बिना नारी का भी रूप परिपूर्ण नहीं होगा। वे बारंबार उस राजपूत पत्नी की कथा बताते जिसने अपने पति को कवच पहनाते हुए कहा था, या तो तुम इस कवच के साथ आना या फिर वीर गति को प्राप्त होकर लौटना। कितनी सजीवता के साथ वे राजपूत महारानी पद्मिनी की गाथा सुनाते। वो परम सुंदरी अपने समस्त रूप लावण्य कांति मृदुता के साथ हमारे सम्मुख जीवंत होती। उस वीर जाति की प्रत्येक नारी आक्रांता की कामुक दृष्टि का सामना करने के स्थान पर मृत्यु का आलिंगन करने को दौड़ पड़ती थी। अपने प्रियतम के प्राणों के लिए भय से कांपती हुई अबला के प्रति सहानुभूति जताने के स्थान पर वे कहते, एक राजपूत पत्नी के समान बनो।
1: स्वामी जी कभी किसी की कटु आलोचना नहीं करते थे। वे प्यार तथा समझाइश द्वारा सुधार करने में विश्वास करते थे।
2: काफी काल बाद हमें पता चला कि वे सभी भले बुरे पक्षों पर विचार करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। इसका ये तात्पर्य न था कि एक पक्ष पूरी तौर से सही है और दूसरा पक्ष पूरी तौर पर गलत, बल्कि ये कि पलड़ा एक के पक्ष में जरा सा झुका हुआ था, और वो भी शायद समय की जरूरत के कारण। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद वे उस विषय पर चर्चा करना बंद कर देते और इन निष्कर्षों को कार्य रूप में परिणत करने का कोई उपाय सोचने लगते। नेतावान को वे क्षतिकर मानते थे। उनका विचार था कि निंदा पर आधारित सुधार की चेष्टा से लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है, क्योंकि ऐसे सुधार कार्य सर्वदा छिद्रान्वेषण से ही आरंभ होते हैं, और विशेषकर भारत जैसी देश की एकता के लिए तो ये घातक होगा।
0: शिष्यों के साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते समय विवाह प्रथा पर भी वे अपना विचार व्यक्त करते थे।
2: इसके बाद अपरिहार्य रूप से निकट भविष्य में आने वाले सामाजिक परिवर्तनों के बारे में सोचते हुए वे पूछते, कौन सा विवाह अच्छा है? भारत जैसा नियोजित विवाह या फिर पश्चिम जैसा व्यक्तिगत चुनाव पर आधारित विवाह? पर हमारे देश के युवक अभी से अपने लिए पत्नियां चुनने का अधिकार मांग रहे हैं, फिर कहते क्या अंतर जातीय विवाह उचित है? अब तक दोनों प्रजातियों के निकृष्ट लोगों ने मिलकर एक अभागी प्रजाति की सृष्टि की है। यदि दोनों जातियों के श्रेष्ठ लोगों को जोड़ा जाए, इसका क्या परिणाम होगा? संभव है इससे अति मानवों की एक प्रजाति उत्पन्न हो, क्या ऐसा होगा?
1: स्वामी जी स्वप्न दृष्टा थे। अमेरिका में रहते समय ही वे भारत में बनने वाले आदर्श आश्रम की कल्पना करते थे।
2: सहस्त्र द्वीपोद्यान में निवास करते समय स्वामी जी भविष्य के लिए योजनाएं बनाए करते थे। ये योजनाएं न केवल उनके भारतीय शिष्यों तथा वहां के कार्य के विषय में होती, अपितु उनके उन अमेरिकी अनुयायियों के विषय में भी होती जो भविष्य में कभी भारत जाने की आशा रखते थे। उस समय हमने सोचा था कि उनकी ये योजनाएं दिवा स्वप्न मात्र है। एक दिन वे बोले, भारत में एक द्वीप पर तीन तरफ से समुद्र से घिरी हुई हमारी एक सुंदर जगह होगी। उसमें निर्मित छोटी छोटी गुफाओं में से प्रत्येक में दो लोगों के रहने का स्थान होगा, और गुफाओं के बीच स्नान के लिए एक कुंड होगा तथा हर गुफा में पेयजल लाने वाले नल की व्यवस्था होगी। सभागृह के लिए खुदाई द्वारा अलंकृत स्तंभों वाला एक हॉल होगा, और उपासना के लिए एक और भी विशाल चैत्य हॉल होगा। आहा, वो स्थान क्या ही सुखमय होगा। उस समय ऐसा लगा मानो वे हवाई किले बना रहे हों। हम में से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस कल्पना को कभी साकार किया जा सकेगा।
0: स्वामी जी साहसी बलशाली जनता का गठन करना चाहते थे। गुरु पर विश्वास और संपूर्ण समर्पण उनका ध्येय था।
2: वे बारंबार गोविंद सिंह की कथा बताते, जिन्होंने अपने शिष्यों की कठिन परीक्षा लेते हुए पूछा था कि उनमें से कौन मृत्यु पर्यंत उनमें विश्वास रख सकेगा। एक उठकर सामने आया, वे महान नेता उसे अपने तंबू में ले गए और कुछ मिनटों बाद हाथों में लहू टपकती हुई तलवार लिए बाहर आए। पुनः उन्होंने उनके विश्वास को चुनौती दी और पुनः एक उठकर उनके साथ तंबू में गया और वापस नहीं लौटा। यही घटना कई बार दोहराई गई और पांच लोग तंबू में जाकर नहीं लौटे। इसके बाद उन्होंने तंबू का पर्दा हटा दिया और सबने देखा कि उनके साथी सुरक्षित तंबू में बैठे हैं, और वही गुरु द्वारा मारा हुआ एक बकरा पड़ा था। मृत्यु पर्यंत श्रद्धा रखने वाले ऐसे शिष्यों के साथ गुरु गोविंद सिंह ने जो महान कार्य संपन्न किए, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। क्योंकि स्वामी जी प्रायः ही कहा करते थे, गुरु अद्भुत हो और शिष्य भी अद्भुत हो।
1: स्वामी जी विदेश भ्रमण समाप्त कर भारत लौट आए और बेलूड़ मठ की स्थापना की और भी कई संस्थानों को रूप दिया। अंतिम समय आने तक उनका कार्य लगभग पूरा हो चुका था।
2: उनका बहुत सा कार्य समाप्त हो चुका था। वे अमेरिका तथा इंग्लैंड में और जर्मनी तथा फ्रांस तक में अपने संदेश प्रचार कर चुके थे। वे गंगा तट पर भूमि खरीद कर एक मठ की स्थापना कर चुके थे। वे प्रचार केंद्रों, शिक्षण संस्थानों, अनाथालयों, अकाल तथा बाढ़ राहत कार्यों का गठन कर चुके थे। वे केवल 39 वर्ष के थे और जानते थे कि उनकी महासमाधि मुक्ति आसन्न है। 4 जुलाई 1902 को वो दिन आ पहुंचा।
0: स्वामी जी केवल भारत के लिए ही नहीं, वे तो संपूर्ण विश्व के लिए थे। एक नया विश्व गढ़ने का प्रयास किया था। वर्तमान युग को जिस संदेश की परम आवश्यकता है वो किसने दिया है? इस संदेश को किसी राष्ट्र विशेष के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए होना चाहिए। वो कौन सा संदेश है जिसने नवीन आध्यात्मिक युग का श्री गणेश किया हो, जिसने एक ऐसी ज्योति का प्रादुर्भाव किया हो जो कभी बुझाई ना जा सकेगी, जिसने एक ऐसी शक्ति को उन्मुक्त कर दिया हो जो एक नए स्वर्ग तथा एक नई पृथ्वी का निर्माण करेगी? केवल भविष्य ही इसका निर्णय कर सकेगा।
1: भगिनी क्रिस्टीन के लेखों से हमें विवेकानंद का एक

0: युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम। चलते चलते आपको हम बताना चाहेंगे कि आज शाम क्या कुछ खास लेकर हम आपके लिए उपस्थित होंगे। आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा 5:10 पर। वतन का राग कार्यक्रम में शाम 6 बजे हम बात करेंगे बरकतुल्ला भोपाली की, इतिहास के पन्नों से। ये कार्यक्रम शाम 6:30 प्रसारित होगा। इसमें आज की चर्चा का विषय गोंड राज्य चंद्रपुर का इतिहास। टेक गुरु कार्यक्रम में AI पर चर्चा होगी शाम 7 बजे। 7:30 भारत विभूति कार्यक्रम में हम बात करेंगे माधवराव सप्रे की। काव्य गुंजन कार्यक्रम रात 8:30 प्रसारित होगा। इसमें आज आप सुन सकते हैं रश्मि रथी का 6वां भाग, हमारे वैज्ञानिक। ये कार्यक्रम रात 9 बजे प्रसारित होगा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा PK अयंगार पर। और रात 9:30 सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा से अब मैं अनुमति चाहती हूँ। इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद दोपहर के जो कार्यक्रम हैं वो आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। सबसे पहले आप सुनेंगे तराने आजादी के।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति रचना।

तराने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

तीन ताल में ट्रेडिशनल बंदिश बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों ने गाया बहुत पुराने समय से। अब कैसे बने मोरी बात सजनी।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आज आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है,
2: देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र मोनिका तिवारी।
2: और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह।
1: हम उपस्थित हैं लेकर कार्यक्रम एक चर्चा पेड़ों के नाम।
2: और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे देवदार के पेड़ पर।
3: मैं यही हूँ सदा, कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। किसी के लिए बस्ती हूँ मैं, तो किसी के लिए सराय। किसी का घर हूँ तो किसी की छांव। किसी का मंदिर हूँ किसी का माली। मेरे फूल कहीं चढ़ते हैं तो कहीं के फूल मुझ पर भी चढ़ते हैं। कोई मुझे पूछता है तो कोई मुझ पर पत्थर फेंकता है, लेकिन देता मैं सभी को हूँ, जिंदा रहते हुए भी और मरने के बाद भी। यहाँ तक कि मेरी देह भी लोगों के काम आती है। मैं वृक्ष हूँ।

0: सुनीता जी, क्या आपने भी ये आवाज़ सुनी?
1: हाँ मोनिका, मैंने भी सुनी और हमारे श्रोताओं ने भी सुनी।
0: क्या पेड़ सच में बोलते हैं?
1: अब ये तो बड़ा ही मुश्किल सा सवाल है, लेकिन सच कहूँ?
0: क्या?
1: सच ये है कि अपनी ही भाषा में, अपने ही संकेत में बहुत कुछ कहते हैं पेड़, जिन्हें हम अनसुना कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। पेड़ों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उसे अनसुना कर देते हैं। हम हमारी हर जिम्मेदारी भूल जाते हैं।
1: उनके महत्व को हम समझते हैं, अपनी जिंदगी में जाने कहां कहां उनके उपयोग को हम देखते भी हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने से कतरा जाते हैं, या कहें एक बेख्याली है हमारे मन में। तो अपने श्रोताओं को इसी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं।
0: बिल्कुल सुनीता जी, आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी।
1: कौन सी?
0: कि नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती।
1: बिल्कुल ठीक।
0: और वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते। ये तो परमार्थ के लिए ही इस धरती पर आए हैं, मगर हम क्या करते हैं इनके साथ? इनका विनाश। जी हाँ, आज की सभ्यता का यही सच है। धरती के फेफड़े कहलाने वाले जंगल कितने कटे हैं, ये हमसे छुपा नहीं है।
1: बिल्कुल ठीक कहा मोनिका तुमने। आकलन किया जाए तो एक पेड़ को काटने से जितनी आय होती है, उससे कहीं अधिक योगदान वो जीवित रहते हुए देता है। वो जीवन भर हमें शुद्ध हवा देता है, फल फूल देता है ना?
0: बिल्कुल सही।
1: भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने में जो भूमिका निभाता है वो, या बाढ़ को रोकने में सहायता करता है, उन सब सेवाओं का मूल्य अगर आज के अर्थशास्त्र के हिसाब से हम निकालें, तो उसे काटने से हुए लाभ की तुलना में ये लाभ कई गुना ज्यादा ठहरता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम इन्हें काटते क्यों हैं?
0: इसका सीधा जवाब है ना, तत्काल और निजी लाभ के लिए।
1: बिल्कुल।
0: एक हरा वृक्ष जो सेवाएं देता है, वे वर्षों तक मिलती हैं और पूरे समाज को मिलती हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन उसे काटकर हम तुरंत और अपना फायदा करते हैं। एक कहानी याद आती है इस वक्त मुझे, शायद आपने सुनी भी होगी।
1: कौन सी?
0: बहुत समय पहले की बात है कि एक नहायत ही बूढ़ा और जर्जर व्यक्ति एक आम का पेड़ रोप रहा था। किसी ने उससे पूछा कि बाबा, इस पेड़ से फल कितने दिन में आएंगे? बूढ़े ने कहा, यही कोई 15-20 साल में। तो क्या तुम तब तक जीवित रहोगे? उस व्यक्ति ने बूढ़े से अगला सवाल किया।
1: अच्छा।
0: तो फिर उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, मैं जानता हूँ कि अब साल तो साल से ज्यादा मैं नहीं चलने वाला, लेकिन ये पेड़ कोई मैं अपने लिए थोड़ी लगा रहा हूँ, ये तो मैं आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहा हूँ। ये था उस बूढ़े वृद्ध व्यक्ति का उत्तर।
1: क्या बात है मोनिका, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली कहानी तुमने सुनाई। वैसे मैंने सुनी थी, और सच है कि एक पेड़ जो हम लगाते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं लगाते। जैसे कि इस वृद्ध ने कहा कि भाई, मैं 2-4 साल ही जीवित रहूंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये वृक्ष मैं लगा रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे हम हैं, कुछ पेड़ हमने नहीं लगाए, हमारी पिछली पीढ़ी ने लगाए, लेकिन उनका लाभ हम लेते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: लेकिन आज ये आदर्शवाद कहीं बचा ही नहीं है मोनिका। ये परमार्थ का भाव बहुत कम दिखाई देता है। लोग अपने से बाहर कुछ देखना ही नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि पेड़ कितने महत्वपूर्ण है उनके लिए।
1: बिल्कुल मोनिका। और एक सोचने की बात ये भी है कि जैसी सोच आज के लोगों की है, अगर ऐसी ही सोच हमारी पिछली पीढ़ी की होती, तो इतने जो बड़े बड़े वृक्ष हम देखते हैं, उनका हम लाभ उठाते हैं, शुद्ध हवा हमें मिलती है, बारिश आती है, इन सब चीजों के लिए तो हम तरस जाते ना।
0: बिल्कुल।
1: सांस लेते तो दम घुटता। तो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें दिया है, वो हमें अपने बच्चों को लौटाना ही है। ये तो पितृ ऋण है ना हम पर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब बातें बोल के आपने एक बहुत ही गहरी सोच में डाल दिया हमें।
1: मोनिका मोनिका मोनिका, अब तुम कहीं खो मत जाना सोच में, तुम्हारी ये आदत में देखती हूँ। तो तुम्हें मैं खींच लाती हूँ बाहर। भाई श्रोता हमारे इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल। तो आप और हम, साथ ही हमारे श्रोताओं से भी हम ये आग्रह करेंगे, निश्चय करें कि आज से हरे पेड़ नहीं काटेंगे और हर साल कम से कम एक वृक्ष तो रोपेंगे ही।
1: ये बात बिल्कुल पते की तुमने की है मोनिका।
0: न केवल रोपेंगे, हाँ, बल्कि उसकी देखभाल भी करेंगे, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं।
1: ये और भी जरूरी। है ना?
0: बिल्कुल। और ये भी याद रखिएगा कि आपके पाले बच्चे तो आपका बुरा कर सकते हैं, लेकिन ये वृक्ष संतानें कभी नहीं करेंगे। जी हाँ, जैसे पहले 100 पुत्र होने का आशीर्वाद मांगा जाता था, आज हमें वैसे ही 100 वृक्ष संतानों के आशीर्वाद की आवश्यकता है।
1: क्या बात है मोनिका, क्या बात कही है तुमने। बिल्कुल, हम सभी को 100 वृक्ष संतानों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, और ये आशीर्वाद कोई और नहीं देगा, हमें ही 100 वृक्ष लगाने हैं और ये आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं
1: तो
0: आप।
1: चलिए श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आए हैं वृक्षों पर आधारित ये श्रृंखला। इसमें हम नियमित रूप से आपको विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बारे में जानकारी देंगे, उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश है कि आप हमारे वृक्ष देवताओं से परिचय प्राप्त करें। उनसे प्रेम तभी कर सकेंगे ना, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है मोनिका,
0: क्या
1: कि परिचय के बिना प्रेम नहीं होता, है ना सच?
0: बिल्कुल सही।
1: तो लीजिए, आज की कड़ी में अपने श्रोताओं का परिचय हम करवा रहे हैं एक महान वृक्ष से।
0: और वो वृक्ष कौन सा है?
1: वो वृक्ष है देवदार का वृक्ष।
0: सुनीता जी, मैं जानती हूँ इस पेड़ के बारे में। ये पेड़ पहाड़ों का वृक्ष है जहाँ ठंडक खूब पड़ती है।
1: कितने खूबसूरत होते हैं ना?
0: हाँ।
1: मैंने तो देखा भी है।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: वहाँ के पर्यावरण तंत्र और संस्कृति का यह अभिन्न अंग है। भारत का पश्चिमी हिमालय क्षेत्र इसका मूल स्थान माना गया है। यहीं से ये वृक्ष बाकी क्षेत्रों में फैला है। हिमालय में भी अधिकतर ये 1500 से 3200 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है।
1: अच्छा मोनिका,
0: क्या
1: तुम ये जानती हो कि देवदार का वैज्ञानिक नाम क्या है?
0: नहीं, क्या आपको पता है?
1: भाई मुझे मालूम है, तभी तो मैंने पूछा। तो चलो तुम्हें भी और अपने श्रोताओं को भी बता दूं कि देवदार का वैज्ञानिक नाम है सेड्रस देवडारा। ये जो पेड़ है ना, ये सीधे तने वाला एक शंकुधारी पेड़ है, यानी नीचे ये चौड़ा होता है और ऊपर की ओर सिकुड़ते हुए अंतिम बिंदु पर बिल्कुल नुकीला सा हो जाता है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना।
0: माने कि ये देवदार सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है, उसका आकार भी उतना ही इंटरेस्टिंग होता है।
1: हाँ, आइसक्रीम के कोन की तरह ये आकार में फर से मिलता जुलता है, और इसकी जो लकड़ी है वो हल्की, मजबूत और तीखी सुगंध वाली होती है।
0: कवियों और साहित्यकारों को देवदार सदा से लुभाता आ रहा है।
1: मोनिका बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और पता है बहुत से गीतों में भी इसका जिक्र आता है।
0: अच्छा।
1: वो गीत तुमने सुना है, ये कौन चित्रकार है?
0: बिल्कुल सुना है, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है।
1: हाँ, उसमें भी एक पंक्ति आती है, ये वृक्ष देवदार के, है ना, मुकेश ने गाया है।
0: हिमालय क्षेत्र में एक शांत तपस्वी की तरह ये मानो अपनी साधना में लीन रहता है। आधुनिक हिंदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद ने इसका स्मरण अपनी कालजयी रचना कामायनी में किया है। प्रसंग प्रलय का है, जब आदि पुरुष मनु महामत्स्य द्वारा बचाए जाने उपरांत हिमालय में भटक रहे थे। वे लंबे शरीर वाले थे और देवदार भी लंबा वृक्ष होता है। वे भी इस समय हिमालय में ही थे और देवदार भी हिमालय में ही मिलता है। अतः स्थान साम्य और आकार साम्य के आधार पर कवि ने उनकी तुलना देवदार से करते हुए कुछ इस तरह लिखा है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े।
1: हाँ मोनिका, कामायनी की ये पंक्ति मुझे भी याद आ गई। अगर रचनाकार पहाड़ी क्षेत्र का हो तो वो देवदार के वृक्ष का जिक्र करना कभी नहीं भूलता है। बात कोई भी हो, घुमा फिरा कर वो देवदार तक पहुंच ही जाता है। उसके व्यक्तित्व में जन्म से ही इतना समाया है ये वृक्ष कि किसी न किसी रूप में उसकी चर्चा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, जैसा कि हमारा सांस लेना।
0: उत्तराखंड के कवि हैं सुवीर रावत, शायद आपने उनका नाम सुना होगा।
1: हाँ मोनिका।
0: अपनी प्रियसी की याद में वे कविता लिखते हैं, शीर्षक है आना फुर्सत में कभी मेरे पहाड़ में। उनकी प्रियसी उनके कल्पना संसार में एक फागुनी शाम को पहाड़ की हरी भरी वादियों में आती हैं, वहाँ जहाँ ढेर सारे देवदार के वृक्ष हैं। तब जब शर्माकर वो दुपट्टे से अपना मुख ढांकती हैं, तो ऐसा लगता है कि पूनम का चांद चीड़ और देवदार के घने वृक्षों की आड़ में छुप गया हो।
1: कितनी सुंदर कल्पना ना।
0: इसी कल्पना को ध्यान में रखते हुए ये कविता सुनिए। मंद मंद मुस्कान उस फागुनी शाम की, खिल उठे हूँ बसंत हजारों जैसे, रंग बिरंगे फूलों से मेरी लकदक पहाड़ में ढक देना शर्मा कर, कभी यूं ही मुंह दुपट्टे से छिप गया हो चांद पूनों का जैसे, घनघोर मेरे चीड़ देवदारू के पहाड़ में, देवदारू के देवदारू के
1: कितनी सुंदर कविता ना मोनिका। मैं तो खो गई बिल्कुल, मुझे सारा दृश्य नजर आने लग गया। लेकिन मनुष्य की निर्मम लोभ वृत्ति ने बाकी वृक्षों के समान देवदार को भी बख्शा नहीं, हालांकि इसका परिणाम भी मिला है उसे। पहाड़ों का इकोसिस्टम हिल गया है, कितनी आपदाएं आ रही हैं, पहाड़ों के सरकने की खबर हम सुनते हैं, उनके ढहने की खबर हम सुनते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: खैर, देवदारों की कटाई एक कवित्री कविता वाचक नवि को विह्वल कर देती है। उनकी कुछ पंक्तियां सुनो।
0: सुनाइए।
1: वो कहती हैं, रहस्य के सारे देवदार काट डाले हैं बटोही ने, बाहें पसारे जो हिम झेलते थे पी लेते थे कोहरा।
0: सुनीता जी, हम बहुत देर से देवदार के पेड़ की बात कर रहे हैं।
1: हाँ?
0: लेकिन क्या आपको पता है कि ये नाम देवदार पड़ा कैसे?
1: बिल्कुल पता है मोनिका, और मैं चाहती हूँ कि ये जो जानकारी हमें है वो अपने श्रोताओं को भी हम दे दें कि आखिर इस पेड़ का नाम देवदार क्यों पड़ा।
0: बिल्कुल, शुरुआत मैं करती हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा।
1: बिल्कुल।
0: आज हिंदी में हम जिसे देवदार कहते हैं उसका मूल शब्द है देवद्रुम, यानी देवताओं का वृक्ष। पौराणिक उल्लेख मिलता है कि सत्यभामा के हट करने पर भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर उठा लाए थे। इससे कल्प तरु से हीन देवलोक श्री विहीन हो गया।
1: हाँ।
0: तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कल्प तरु के बिना देवलोक श्रीहीन हो गया है। जैसा कि कृष्ण का स्वभाव था, वे हौले से मुस्कुराए और बोले, जहाँ श्री अर्थात लक्ष्मी नहीं रहेंगी वो स्थान तो श्रीविहीन होगा ही। जब तीनों श्री लक्ष्मी सरस्वती और काली साक्षात विग्रह रूप में सत्यभामा रुक्मणी और जामवंती के रूप में धरती पर है तो स्वर्ग में श्री कैसे रह सकती हैं?
1: बिल्कुल। तब निर्णय हुआ कि कल्प वृक्ष स्वर्ग को तभी वापस किया जा सकता है जब उसके जैसे ही प्रभाव वाला एक वृक्ष तैयार करके देवता लोग पृथ्वी लोक को प्रदान करें। इस पर समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर जो वृक्ष बनाया उसका नाम देवद्रुम पड़ा। बाद में यवन प्रभाव में ये नाम बिगड़कर देवदारू हो गया। इस देवदारू से ही आज का देवदार बना है।
0: यानी देवद्रुम ही देवदारू है
1: और देवदारू ही देवदार है। याद करो, कुछ देर पहले जयशंकर प्रसाद की कामायनी से एक पंक्ति तुमने पढ़ी ना?
0: हाँ।
1: उसमें देवदारू शब्द आया। इसमें इस वृक्ष के लिए देवदारू शब्द का प्रयोग किया था जयशंकर प्रसाद ने, न कि देवदार का। जयशंकर प्रसाद जैसे भाषाई शुद्धता के प्रति विशेष सजग कवि से यही अपेक्षा थी।
0: सुनीता जी, प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी देवदारू की चर्चा मिलती है। देवदारू देवताओं का वृक्ष है, ये हिमालय का वृक्ष है, शिव का प्रेम है इस पर।
1: बिल्कुल।
0: इन कारणों से भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही इसकी महिमा मिलती है। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में इसका वर्णन मिलता है।
1: हाँ।
0: प्राचीन काल में शिव भक्त आश्रम बनाकर हिमालय के जंगलों में रहते थे। उनकी पहली प्राथमिकता वे स्थान होते थे जहाँ देवदारों के घने वन होते थे।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने मोनिका।
0: शिव को प्रसन्न करने के लिए ये तपस्वीगण देवदारों के नीचे बैठकर ही तपस्या करते थे। उनका विश्वास था कि इससे शिव जल्दी प्रसन्न होंगे। इतना ही नहीं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में एक विशेष शब्दावली भी मिलती है, दारू कावन, जिसका अर्थ है देवदारू के वृक्षों का जंगल।
1: मोनिका।
0: हाँ?
1: तुमने बात की प्राचीन भारतीय संस्कृति में देवदारू के जिक्र की, है ना? रूसी संस्कृति में भी देवदार का जो वृक्ष है उसका खास स्थान है। श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना ही है कि देवदारू ठंडे स्थानों पर उगने वाला वृक्ष है। यही कारण है कि भारत और दुनिया के उन तमाम जगहों पर ये मिलता है जहाँ अच्छी खासी ठंड पड़ती है। भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में तो पाया ही जाता है, साथ में नेपाल, तिब्बत, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों और रूस तक में ये वृक्ष मिलता है।
0: रूस चूंकि एक ठंडा देश है, इसलिए ज्यादातर वृक्ष शंकुधारी होते हैं, जैसे कि सनोबर, लार्च और देवदार। यहाँ के लोग अपने घरेलू चिकित्सा पद्धति में भी इन वृक्षों का कई तरह से इस्तेमाल करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साइबेरिया के इलाके में देवदारू खूब मिलते हैं। इसकी गोंद का इस्तेमाल इस देश में घरेलू चिकित्सा के लिए किया जाता है। रूसी भाषा में इसे जीवित्सा कहते हैं, यानी जीवन देने वाली। यहाँ रूसी भाषा और संस्कृत भाषा का साम्य देखा गया है। सुनीता जी, जीवित्सा का शब्द देखकर ऐसा लगता नहीं कि इसमें हमारी संस्कृत भाषा भी मिली हुई है?
1: बिल्कुल, मुझे बिल्कुल यही लगा कि ये संस्कृत का शब्द है।
0: वही अर्थ और वही ध्वनि। इससे उस थ्योरी को बल मिलता है कि यूरोपीय आर्य और भारतीय आर्य मूलतः एक ही है, जो बाद में चलकर दो शाखाओं में विभक्त हो गए। ये एकता न केवल भाषा में बल्कि संस्कृति में भी मिलती है। देवदारू का जो महत्व भारत में है, वही रूस में भी है।
1: बिल्कुल मोनिका। खैर, थोड़ा सा हम भटक गए, विषयांतर हो गया। तो चलो अपने मूल प्रसंग पर लौटते हैं।
0: बिल्कुल,
1: देवदारू के गोंद की बात हो रही थी, है ना? देवदारू के गोंद को जीवित्सा इसलिए कहा जाता है मोनिका, क्योंकि ज्यों ही किसी घाव पर तेल मिलाकर ये गोंद लगाया जाता है, घाव तुरंत भर जाता है।
0: अरे वाह।
1: घाव चाहे कैसा भी हो, चीरा लग गया हो, कट गया हो, जल गया हो, या घाव में पस पड़ चुकी हो या सड़ गया हो, कोई बात नहीं, जीवित्सा को वनस्पति तेल में घोलकर उस पर लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
0: यानी कि बहुत ही लाभकारी है ये।
1: बहुत ही लाभकारी। यहाँ तक कि रूस के जो पुराने लोग थे ना, वो टूटी हड्डी पर भी ये गोंद लगाते थे और इससे हड्डी जुड़ जाती थी।
0: अरे वाह, ये तो चमत्कार जैसा है।
1: प्रकृति तो अपने आप में एक चमत्कार है ही।
0: इस गोंद की खासियत ये है कि पानी डालने पर भी ये नहीं घुलती, जबकि वनस्पति तेल डालने से घुल जाती है। यहाँ तक कि शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो, वनस्पति तेल मिलाकर इस गोंद को लगाइए, दर्द फौरन ही उड़नछू हो जाता है। गले में दर्द हो या फिर टॉन्सिल्स बढ़ गए हो, रूसी लोग जीवित सा चूस कर इसको ठीक कर लेते हैं।
1: क्या बात है, देखो प्रकृति के रहस्य कितने निराले हैं ना।
0: बिल्कुल,
1: वही गोंद पानी में नहीं घुलता और वही गोंद तेल में डालने पर घुल जाता है।
0: ये तो अचंभे में डालने वाली बात है।
1: बिल्कुल, ऐसे बहुत से अचंभे प्रकृति में छुपे हुए हैं मोनिका। और पता है
0: क्या,
1: साइबेरिया के लोग देवदारू की गोंद को अपने दांत दर्द और मसूड़े के दर्द को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पेट में फोड़ा हो जाने पर भी इससे बहुत लाभ होता है। देवदारू की गोंद को जलाकर पैदा की गई आग को भी रूस में बहुत पवित्र माना जाता है।
0: अच्छा।
1: फिर वही सांस्कृतिक साम्य जिसकी तुमने बात की, कि भाई भाषा जीवित्सा एक शब्द सुनकर लगता है कि संस्कृत और रूसी भाषा बिल्कुल एक है। उसी तरह से ऐसा नहीं लगता कि इसकी लकड़ी की अग्नि को वो इतना पवित्र मानते हैं, और हमारे यहाँ यही बात तो हवन के साथ है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। हमने जाना रूस में इस पेड़ के महत्व को, आइए अब जानते हैं कि लद्दाख संस्कृति में देवदार का कितना महत्व है।
1: मतलब देवदार के वृक्ष के साथ हम अलग अलग देशों की यात्रा पर हैं क्या?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। लद्दाख क्षेत्र में स्थानीय वन्य चिकित्सकों को आमची कहा जाता है।
1: अच्छा।
0: ये आमची देवदार के फूलों एवं पत्तियों के एक खास कॉम्बिनेशन के एक यंत्र का निर्माण करते हैं, जिससे अनेक प्रकार के कठिन रोग का सफल एवं स्थायी इलाज हो जाता है। पश्तो भाषा की एक किताब है विल्लाख चासू, इसमें लद्दाख क्षेत्र की एक पौराणिक मान्यता का उल्लेख मिलता है कि आईसी, मनचूक, खंच, डायला और खिचास्तो नक्षत्र में जन्म लेने वालों पर इस वृक्ष के पत्तों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पांचों नक्षत्र संस्कृत के हिसाब से रेवती, अश्विनी, मघा और अश्लेषा हैं, जिन पर देवदार यंत्र का असर नहीं होता।
1: ये भी दूसरा रहस्य। देखो मोनिका, ये तो बात हो गई लद्दाखी संस्कृति में देवदार की।
0: हाँ?
1: अब मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हें लिए चलूँ स्विट्जरलैंड।
0: स्विट्जरलैंड, वाओ।
1: कैसी बांछे खिल गई ना तुम्हारी। भाई स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही आंखों के सामने कितने सुंदर प्राकृतिक दृश्य आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, प्राकृतिक छटा छा जाती है आंखों के सामने।
1: दरअसल स्विट्जरलैंड के पर्यटन को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा है देवदारू ने। स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिहाज से पूरी दुनिया में क्या स्थान रखता है ये हम सब जानते हैं। तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है है ना। यहाँ के पर्यटन के आकर्षण के पीछे यहाँ की प्राकृतिक छटा है जिसे यहाँ के लोगों ने बड़े जतन से सहेजा हुआ है, हमारी तरह तहस नहस नहीं किया है। खूबसूरत लैंडस्केप, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और हरी भरी वादियाँ किसी का भी मन मोह लेती हैं।
2: सुनीता जी हा? आपने ये सब बातें बोल के तो मुझे सच में स्विट्जरलैंड पहुंचा दिया। वैसे कहते हैं कि यहाँ केवल सूरज नहीं उगता बल्कि पहाड़ भी उगते हैं। स्विस आल्प्स का संसार जंगलों के सौंदर्य का खजाना समेटे हुए है। पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं, जो आसमान में धस्ती सी नजर आती हैं।
1: फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं ना।
2: पर्वत से झर झर झरते झरनों का संगीत कानों को झंकृत कर देता है। और इस पृष्ठभूमि में जब हवा में झूमते पाइन व देवदारू के वृक्ष नजर आते हैं तो सौंदर्य का मानो रहस्य लोग रच जाता है।
1: और इस रहस्य लोग में हमारा जो मन है वो बिल्कुल खो जाता है। वैसे मोनिका, क्या तुम्हें पता है कि क्यों इस देवदार का आकार कोन की तरह होता है?
2: नहीं,
1: मैं बताती हूँ।
2: बताइए।
1: दरअसल प्रकृति से बढ़कर कोई वैज्ञानिक नहीं है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तभी तो अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर उसने वहाँ के जीव जंतुओं वनस्पतियों की डिजाइनिंग की है। है ना। देवदारू के जो शंकु यानी कोण के आकार की मैं बात कर रही थी ना,
2: हाँ?
1: उसका कारण भी यही है।
2: अच्छा।
1: चूंकि ये ठंडे स्थानों का वृक्ष है इसलिए पूरे वृक्ष का एक शंकु की तरह विकास और इसकी पत्तियों का नुकीलापन इस वृक्ष को और इसकी पत्तियों को ठंडक से बचाता है।
2: ठंडक की बात हो रही है और जैसा कि आपने मुझे पहले बताया था कि इसका जो आकार रहता है वो आइसक्रीम के कोन की तरह होता है, तो कहीं आइसक्रीम के कोन का आकार देने से पहले उन्होंने इस वृक्ष को तो नहीं देख लिया था?
1: ये एक दूसरा ही प्रश्न है और एक अलग चर्चा का विषय है।
2: चलिए, हमने बात की कि देवदारू के वृक्ष का आकार कोन की तरह क्यों होता है। आइए अब बात करते हैं इसके उपयोगों के बारे में। टिम्बर इंडस्ट्री में देवदारू एक बहुउपयोगी वृक्ष है क्योंकि इसकी लकड़ियाँ टिकाऊ होती हैं और पानी में सड़ती नहीं है। हालांकि ये उतनी मजबूत नहीं होती। न सड़ने वाले गुणों के कारण श्रीनगर के हाउस बोट्स प्रायः इसी के बने होते हैं। टिकाऊपन और न सड़ने वाले गुणों के कारण ब्रिटिश काल में तो हर तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है।
1: बिल्कुल, देवदार की लकड़ी में क्लोज ग्रेन्स होते हैं, इसकी वजह से इसमें फाइन क्लास की पॉलिश हो जाती है। यही कारण है कि इसे गोल्ड कोन भी कहा जाता है। मंदिरों को बनाने में बहुत पहले से इसका इस्तेमाल होता रहा है।
2: देवदार के फूल बड़े ही दुर्लभ होते हैं, यही कारण है कि ऐसे इने गिने देवदार वृक्ष जिन पर फूल खिलते हैं उन्हें सरकार ने अति सुरक्षित श्रेणी में घोषित कर रखा है। यहाँ तक कि इन फूलों की कालाबाजारी भी होती है।
1: मतलब फूलने वाले देवदार के वृक्ष बहुत कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं। यानी ये जो आइसक्रीम का कोन है वो देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत तरसा कर फूलता है। इस संबंध में मोनिका, हाँ? एक पौराणिक उल्लेख भी मिलता है।
2: और वो क्या है भला?
1: भगवान शिव ने ये कह रखा था कि लोग यदि इस देव वृक्ष का आदर नहीं करेंगे और इस पर अत्याचार करेंगे तो इस पर फूल लगने बंद हो जाएंगे।
2: यानी इससे ये पता लगता है कि इंसान ने इस वृक्ष पर कितना अत्याचार किया है, तभी तो इस पर फूल खिलने कम हो गए हैं।
1: इसे हमने कम सहेजा, ये तो जाहिर है।
2: सुनीता जी, क्या आपको पता है कि वृक्षों से हमारा करियर भी बन सकता है?
1: बड़ी गहरी बात तुमने की है।
2: आज करियर की चुनौती बड़ी है लेकिन चिंता की बात नहीं, वृक्ष प्रेम को अगर आप चाहें तो अपना करियर भी बना सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी विशेषज्ञता स्थापित हो। यदि आपने 12वीं तक साइंस पढ़ा है तो आप BSc इन फॉरेस्ट्री का कोर्स भी कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद अवसरों की भरमार हो जाती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर लोगों का भी ज्यादा ध्यान नहीं है, अतः काम अभी आसानी से मिल जाता है।
1: अगर और अधिक ऊंचाई पर जाना चाहते हैं आप तो इसी स्ट्रीम में मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मास्टर इन फॉरेस्ट इकोनॉमी, मास्टर इन फॉरेस्ट वुड साइंस टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज इसमें उपलब्ध हैं। अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं श्रोताओं, तो वृक्षारोपण के क्षेत्र में सक्रिय बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स में बतौर प्रबंधक आपको जॉब ऑफर कर सकती हैं। वन्य जीव और वन संरक्षण से जुड़े एनजीओज में भी फॉरेस्ट्री विशेषज्ञों की मांग है।
2: अगर पर्यावरण के प्रति आपकी रुचि है, तब तो ये कोर्स आपके लिए एक पंथ और दो काज का काम करेगा। हरियाली के बीच करियर चलेगा, और फिर क्या चाहिए? आपकी उम्र में कम से कम 10 साल का इजाफा तो हो ही जाएगा।
1: मतलब फायदे ही फायदे, है ना?
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो सुनीता जी, चलिए हम भी चलते हैं ये कोर्स करने के लिए, और फिर रहेंगे बड़े ही आराम से हरियाली के बीच में।
1: बिल्कुल, और सिर्फ कोर्स ही नहीं करना है मोनिका, कोर्स तो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मैं, वो जरूर करूंगी, लेकिन साथ में हमें वृक्षारोपण भी करना है, ताकि हमारा पर्यावरण बिल्कुल संरक्षित रहे, सुंदर रहे। और जो हमने शुरू में बात की थी ना, कि आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी है, तो हम पेड़ों को गले लगाएं, अपने हाथों का बहुत ही केयरिंग स्पर्श उसको हम दें, तभी बात बनेगी।
2: बिल्कुल, और साथ ही ये वादा करें कि हर साल कम से कम एक वृक्ष जरूर बोएंगे।
1: तो इसी वादे इसी इरादे के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह
2: और मोनिका तिवारी को।
1: लेकिन चलने से पहले श्रोताओं को बता दें कि आज का कार्यक्रम था एक चर्चा पेड़ों के नाम, जिसमें हमने चर्चा की वृक्ष देवदार की। तो श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद,
2: देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।

0: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
1: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
0: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
1: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
0: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सकें।
2: अंजू, तुम आज फिर मोबाइल लेकर आई हो? देखा शौरी, मोबाइल लेकर आई है।
3: लगा लिया हेडफोन कान में। पता है मेरे पापा कहते हैं जो कान में 24 घंटे ईयरफोन रखता है उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और बहरा हो जाता है। तो
2: अरे मैं रोज रोज कान सुनती हूँ। वो तो आज नया गाना निकला है ना, इस वजह से उसकी म्यूजिक और लिरिक्स इतनी अच्छी है कि तुम लोग भी सुनोगे।
3: हमें नहीं सुनना।
2: अरे
4: अरे अरे गुरुजी मोबाइल छुपा ले,
2: छुपा ले, बैग कहाँ है? अरे बैग, अरे हाँ चलो।
5: प्रणाम गुरुजी।
6: हाँ प्रणाम भाई, वो क्या कहते हैं आयुष्मान भाव। हाँ क्या क्या कह रहे थे तुम, बोलो बोलो।
7: कुछ नहीं गुरुजी।
6: अच्छा अच्छा हाँ, अरे आज तो ये सामने वाली सीट ही खाली पड़ी है, ये गौरव को क्या हुआ आज?
7: गुरुजी
6: हाँ,
7: गौरव को कुछ नहीं हुआ है।
6: तो फिर
7: वो इंटर कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है।
6: अच्छा, वेरी गुड। तो वो फिर कहाँ गया है अभी?
7: गुरुजी वो रिहर्सल के लिए गया है।
6: अच्छा अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, वो एक अच्छा कलाकार है, ये हमें पता ही नहीं था। अच्छा बच्चों, क्या तुम्हें पता है कलाएं प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती हैं? बताओ। नहीं ना, 64 प्रकार की बताई गई हैं कलाएं। इनमें से बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जिनका अपना विज्ञान है। महर्षि शुक्राचार्य नाम के अपने यहाँ महर्षि हुए हैं, वो इन कलाओं के भाष्यकार माने जाते हैं
7: जी,
6: और उन्होंने इन पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है नीतिसार, समझे?
2: हाँ जी, गुरुजी। गुरुजी आज हमें महर्षि शुक्राचार्य के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताइए ना।
4: बताइए गुरुजी।
6: ठीक है ठीक है, हम तुम्हें महर्षि शुक्राचार्य के आश्रम में लिए चलते हैं।
4: चलिए गुरुजी।

0: प्रिय शिष्यों, हमारे यहां शिक्षा क्रम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। कला की शिक्षा भी शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कला को परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है, शक्तो मूकोपि यत कर्तुम कला संज्ञम तु तत स्मृतम, अर्थात वो विद्या जिसे वर्णोच्चारण न कर सकने वाला भी कर सके वो कला है। यूं तो कलाएं अनंत हैं, पर विभिन्न ग्रंथाकार आचार्यों ने प्रमुख कलाएं 64 बताई हैं। वे चाहे केलदी वसव राजेंद्र हों या वात्सायन अथवा जयमंगल, इन सभी आचार्यों द्वारा वर्णित कलाओं में कुछ कलाएं समान हैं और कुछ भिन्न भी हैं।
1: आचार्य श्री, इन कलाओं में प्रत्येक कला के अपने शास्त्र तो होंगे ही।
0: हाँ, क्यों नहीं। सृष्टि में घटित और उपस्थित हर घटना, हर वस्तु का शास्त्र होता है। शास्त्र चिंतन का प्रतिफल जो है, इसमें कुछ ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात। वैसे हमारे वैदिक साहित्य में सब कुछ उपलब्ध है, वो बहुत समृद्ध है।
1: जी गुरुजी।
0: वत्स, ये शास्त्र ही है जो किसी भी घटना, किसी भी क्रिया के कार्य कारण की व्याख्या करता है, यही विज्ञान कहलाता है।
2: इसका अर्थ तो ये हुआ आचार्य श्री कि कलाओं का भी विज्ञान होता है।
0: हाँ वत्स, सच तो ये है कि विज्ञान का जन्म कला से ही हुआ है। जैसे कि दर्शन अथवा सिद्धांत का जन्म चिंतन से हुआ है। और यदि हम आदि मानव तक जाएं तो आदि मानव भी घटनाओं तथा तथ्यों के कार्य कारण संबंध से सर्वथा अनभिज्ञ नहीं था। आदि मानव में भी जानने की भूख थी। आदि मानव जो सबसे पहले सृष्टि में जन्मा, उसके सामने बहुत कुछ सीखने और जानने को था। पता नहीं उस मानव के पास इन चीजों को नाम देने के लिए शब्द थे या नहीं, किंतु ये सत्य है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही उसके ज्ञान का कोष भी बढ़ता गया।
1: तो क्या यही विज्ञान का जन्म हुआ गुरुजी?
0: नहीं वत्स, ये मनुष्य का व्यवहारिक ज्ञान था। विज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में अंतर है, पर अंतर के बाद भी दोनों में एक समानता है। वो ये कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। व्यवहारिक ज्ञान से भी मनुष्य तैरने वाली नौका बना लेता है, उसे समुद्र के वक्ष पर दौड़ाता है, डूबने से बचाता है और किनारे पर ले आता है। वैज्ञानिक ज्ञान के सहारे भी वो यही सब कुछ करता है। व्यवहारिक ज्ञान क्रियात्मक होता है, कला के रूप में होता है, पर विज्ञान नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। फिर भी विज्ञान का जन्म व्यवहारिक ज्ञान से ही, कला से ही होता है। विज्ञान के पहले व्यवहारिक ज्ञान, कला ही जन्मती है।
2: फिर तो आचार्य श्री, आदि मानव मूल वैज्ञानिक हुए।
0: निश्चय ही वत्स, वे आदि मानव ही थे जिन्होंने पत्थरों के हथियार तथा औजारों का निर्माण किया, डंडे के सहारे भारी पेड़ों के तने ढकेलना, चप्पू से नाव खेना, नाव बनाना, गन्ने को बटकर मरोड़कर रस निकालना, कुएं से पानी खींचने के लिए चरखी का उपयोग करना, फेंकन अथवा बरही बनाना, धनुष बाण बनाना, धौकनी बनाना, सुई सिल पत्थर का उपयोग करना, कृषि भोजन, पशुपालन, वस्त्र अलंकार, टोकरी भांड आदि बनाना, अग्नि उत्पन्न करना, धातु बनाना आदि कलाएं सीखी। हाँ, ये सत्य है, आदि मानव को इन कलाओं के अंदर छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक तैराक तैरना जानता है पर तैरने वाली वस्तुओं के सिद्धांत और जल के उछाल का संबंध नहीं जानता।
1: आचार्य श्री, ये सभी कलाएं भी 64 कलाओं में सम्मिलित होंगी?
0: हाँ, ये सभी कलाएं भी और अन्य कलाएं भी 64 कलाओं में सम्मिलित है।
1: जी गुरुजी।
0: वत्स, कलाओं के नाम भिन्न भिन्न नहीं, उनके लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि क्रिया के पार्थक्य से ही कलाओं में भेद हो जाता है। जो व्यक्ति जिस कला का अवलंबन करता है उसकी जाति भी उस कला के नाम से जानी जाती है।
1: जी,
0: हमारे हिसाब से पहली कला नृत्य है। हाव भाव के साथ गति नृत्य कहलाती है। नृत्य में करण, अंगहार, विभाव, भाव, अनुभाव और रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक नाट्य, दूसरा अनाट्य। नटराज शिव को नृत्य का आदि गुरु माना जाता है। भरत मुनि ने नृत्य की कुल 108 मुद्राएं बताई हैं। नृत्य एक स्वाभाविक वस्तु है जो हृदय में प्रसन्नता का उद्रेक होते ही बाहर व्यक्त हो जाता है।
2: जैसे वर्षा ऋतु में घन गर्जना से आनंदित होकर मोर झूम झूम कर नाच उठता है।
0: हाँ वत्स, दूसरी प्रमुख कला है विविध प्रकार के वाद्यों का निर्माण और उन्हें बजाने की कला। वाद्यों के मुख्य चार प्रकार होते हैं।
2: कौन से गुरुजी?
0: तंत, सुपिर, अवनद्ध और घन। तार अथवा तांत का जिसमें उपयोग हो वे तंत वाद्य हैं, जैसे वीणा, तानपुरा, सारंगी, बेला, सरोद आदि, जिनका भीतरी भाग पोला और जो सच्छिद्र होते हैं तथा जिनमें वायु का प्रयोग होता है वे सुपिर वाद्य कहलाते हैं, जैसे बांसुरी, अलगोजा, शहनाई आदि। ऐसे ही चमड़े से मढ़े हुए वाद्य अवनद्ध कहलाते हैं, जैसे ढोल, नगाड़ा, तबला, मृदंग आदि, जबकि परस्पर आघात से बजने वाले वाद्य घन कहलाते हैं, जैसे झांझ, मंजीरा, करताल आदि। ये गायन कला से संबंध रखती है। प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती और नारद को वीणा वादन में, श्री कृष्ण भगवान को बंसी बजाने में और महादेव शिव को डमरू वादन में निपुण बताया गया है।
1: आचार्य श्री, आपने बताया वादन कला गायन कला से संबंध रखती है।
0: हाँ, वादन के बिना गायन अधूरा लगता है, ऐसे ही गायन वादन के बिना नृत्य, गायन वादन और नृत्य की त्रयी वैसे ही तीर्थ बन जाती है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम। गायन तीसरी प्रमुख कला है जिसे गांधर्व विद्या भी कहा गया है। संगीत का प्रमुख उपादान नाद होता है। नाद के माध्यम से ही संगीत कला की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति एवं प्रस्तुति संभव होती है। शारंग देव ने संगीत की परिभाषा देते हुए गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते कहा है, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य तीनों को सम्मिलित करने से संगीत कहा गया है। ऐसे ही शारंग देव ने नाद को ब्रह्म स्वरूप निरूपित किया है। अस्ति ब्रह्म चिदानंदम स्वयं ज्योति निरंजनम ईश्वरम लिंग मित्युक्तम द्वितीयमजम विभु निर्विकारम निराकारम सर्वेश्वर मनश्वरम सर्वशक्ति च सर्वज्ञम तदंशा जीव संगकाह। संगीत और व्याकरण दोनों के तत्व माहेश्वर सूत्र हैं। व्याकरण में 5 शुद्ध स्वर और 2 मिश्रित स्वर होते हैं। ऐसे ही संगीत में भी 5 स्वर प्रधान और 2 गौण हैं। गांधर्व गान में ये 5 स्वर मध्यम, गांधार, ऋषभ, षडज तथा धैवत हैं। मध्यम मतलब म, गांधार मतलब ग, ऋषभ मतलब री, षडज मतलब सा और धैवत मतलब ध।
1: जी गुरु जी।
0: हाँ, ये सरल स्वरों में समझाया। गौण स्वर पंचम यानी प और निषाद है नी। संगीत और व्याकरण दोनों में नाद के 66 भिन्न रूप होते हैं जिन्हें श्रुति कहते हैं। आओ हम संगीत कक्ष की ओर चलें।
1: जी गुरु जी, गुरु जी।
0: देख रहे हैं आप लोग?
1: जी गुरु जी।
0: गायन वादन और नृत्य की त्रयी, क्योंकि संगीत और व्याकरण में साम्य है अतः इस त्रयी में भी साम्य है। इन तीनों रूपों में एक लय है, ताल है, सम्मिति है। तीनों एक गणित में बंधे हैं, अतः इन कलाओं का भी एक विज्ञान है। ध्वनि तरंगों का विज्ञान, गति संचलन का विज्ञान। आइए यहाँ वृक्ष के नीचे बैठें। आइए बैठें।
2: जी गुरु जी।
1: जी गुरु जी।
2: आचार्य श्री।
0: हाँ।
2: आप 64 कलाओं की चर्चा कर रहे थे।
0: हाँ शिष्यों, आगे की 5 कलाएं हैं, यानी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, क्रमशः स्त्री और पुरुषों को वस्त्र और अलंकार सुरुचि रूप से पहनाने की कला, अनेक प्रकार के रूपों का आविर्भाव करने की कला, शैया और अस्तरण सुंदर रीति से बिछाने और पुष्पों को विभिन्न तरह से गूंथने की कला, दूत क्रीड़ा की कला और अनेक प्रकार के आसनों द्वारा सुरत क्रीड़ा की कला। इन 8 कलाओं का उल्लेख गांधर्व वेद में किया गया है।
1: आचार्य श्री, इनमें गायन, वादन और नृत्य भी सम्मिलित है।
0: हाँ वत्स, आगे की 10 कलाओं का संबंध आयुर्वेद से है। नवी कला से लेकर 18 कला तक की ये कलाएं हैं। विविध मकरंदों से आसव, मध्य आदि बनाने की कला, शल्य की पीड़ा को कम कर देना, शिरा और फोड़े आदि की चीर फाड़ करने की कला, इसमें हकीमों और आयुर्वेदाचार्यों की चीर फाड़ भी सम्मिलित है। वृक्षों से प्राप्त रस आदि से अन्न पकाने की कला, वृक्ष गुल्म लता आदि को लगाने, फल फूलों को उत्पन्न करने और वृक्षों के संरक्षण की कला, पत्थर सोने चांदी आदि धातुओं का खनन, उनकी भस्म बनाने की कला, इक्षु से राव गुड़ खांड मिश्री कंद आदि बनाने की कला, स्वर्ण आदि अनेक धातु और उनसे औषधि निर्माण की कला, मिश्रित धातुओं को उनके मिश्रण से पृथक करने की कला, धातुओं का अपूर्व मिश्रण बनाने की कला, समुद्री जल और मृदा से नमक आदि पदार्थों को निकालने की कला। इन कलाओं में वनस्पति शास्त्र, वानिकी, धातुकर्म, रसायन शास्त्र आदि विज्ञान आ जाते।
1: जी गुरुजी।
2: आचार्य श्री, इनमें से अनेक क्षेत्रों में आचार्य नागार्जुन और महर्षि चरक आदि ऋषियों ने भी काम किया है।
0: हाँ वत्स, तुम ठीक कह रहे हो। प्रिय शिष्यों, आगे की 5 कलाएं युद्ध कला से संबंधित हैं।
2: जी गुरुजी।
0: ये धनुर्वेद का अंग है। यथा 19वीं कला पैंतरा बदलते हुए शस्त्रों के संचालन की कला है, 20वीं कला मल्ल युद्ध और बाहु युद्ध की कला, 21वीं कृत और प्रतिकृत मुष्ट युद्ध की कला, 22वीं अस्त्रों से अभिलक्षित देश को निशाना बनाने की कला और 23वीं हाथी घोड़ों और रथों की विशिष्ट गतियों के द्वारा युद्ध के आयोजन की कला। ये तो तुम लोग जानते ही हो कि युद्ध कला का अपना शास्त्र होता है, अपना पूरा पूरा विज्ञान होता है।
2: जी गुरुजी।
1: महर्षि, महाभारत ग्रंथ में भी तो इसका विशद वर्णन है। आचार्य द्रोणाचार्य इन कलाओं के विशेषज्ञ माने जाते हैं ना?
0: हाँ वत्स, अपने आश्रम में भी तो इन कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। तुम लोग भी तो ये प्रशिक्षण ले रहे हो ना? अब तक तो तुम लोग इन कलाओं के अंतर्निहित सिद्धांतों को समझ ही गए होगे।
1: जी गुरुजी।
0: शिष्यों, आगे की कलाएं विविध कलाओं से और क्षेत्रों से संबंधित हैं। यथा 24वीं कला विविध प्रकार के आसनों में बैठकर दोनों हाथों की उंगलियों से विविध आकृतियां बनाकर ईश्वराधन करना, 25वीं कला रथ हाँकने की कला, 26वीं मिट्टी पत्थर लकड़ी तथा धातुओं के बर्तन बनाने की कला और 27वीं चित्रांकन की कला।
2: अद्भुत, इस कला में तो भारत ने बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर रखी हैं। प्राचीन मंदिरों, महलों, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों की वानगी देखते ही बनती है। इनके रंग शताब्दियों बाद भी धुंधलाए नहीं हैं।
0: तुम्हारा कथन सत्य है वत्स, पर हमें तो तुम लोगों के भांड और उन पर की गई चित्रकारी देखनी है। वसंतोत्सव के अवसर पर होने वाले वार्षिकोत्सव में हम इनकी प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार रहे?
1: जी गुरुजी।
0: हाँ तो शिष्यों, 28वीं कला तालाब, कूप, बावड़ी, महल, मंदिर, घर बनाने और भूमि समतल करने से संबंधित है, जबकि 29वीं कला समय बताने वाली घड़ियों के निर्माण से संबंधित। इनमें जल घड़ी, बालू घड़ी और धूप घड़ी आदि बनाने की शिक्षा दी जाती है। ये तो तुम जानते ही हो कि ये कला ज्योतिर्विज्ञान से संबंधित है।
1: हाँ आचार्य श्री, हम जानते हैं ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि अनेक महर्षियों ने इस क्षेत्र में विशेष काम किया है।
0: शिष्यों, 30वीं कला विभिन्न अनुपात में रंगों के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को रंगना है। किस वस्त्र को कैसे रंगें ताकि उसकी चमक स्थायी रहे और रंग फीका ना पड़े, निश्चित ही विशिष्ट कला है। सूती कपड़ों की रंगाई की विधि निश्चित ही रेशमी कपड़ों की रंगाई से या ऊनी कपड़ों की रंगाई से भिन्न होगी। इसमें अंतर्निहित रंगों का अपना विज्ञान है। ऐसे ही 31वीं कला जल, वायु, भाप संचालित यंत्रों के निर्माण से संबंधित है, जबकि 32वीं कला नौका, रथ आदि जल थल के वाहन बनाने से संबंधित है। यंत्र सर्वस्व, यंत्र विधान ग्रंथों में इनका विशद वर्णन है। आवागमन के इन साधनों पर व्यापार भी निर्भर करता है।
2: वाह आचार्य श्री, महर्षि पाराशर ने तो नौका निर्माण के लिए वृक्षों की लकड़ी का भी वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया है।
0: हाँ वत्स, 33वीं कला सूत सन आदि तंतुओं से रस्सी बनाने और 34वीं कला विभिन्न तंतुओं से पटबंध अर्थात वस्त्र बनाने से संबंधित है। वैदिक काल में परिष्कृत कपड़ा बुनने की तकनीक चली आ रही है। अथर्ववेद के अनुसार बुनाई महिलाओं का विशेष अधिकार था। वैदिक काल में 3 वस्त्र, निवी यानी अंतःवस्त्र, वसा यानी पोशाक एवं आदिवसा यानी उत्तरे या ओढ़नी प्रचलित थे। साड़ी भी अपने प्रारंभिक रूप में प्रचलित थी। आइए हम अपने करघा कक्ष की ओर चलें।
2: जी गुरुजी।
0: देख रहे हैं ना, करघे पर धोती बुनी जा रही है और उधर दूसरे करघे पर साड़ी।
2: जी गुरुजी।
0: किनार या किनारी साड़ी और धोती का एक महत्वपूर्ण अनुषंग होता है। आप देख सकते हैं धोती की किनार एकदम सादा है जबकि साड़ी की किनारी आकर्षक बनाई जा रही है जो पूरी साड़ी को आकर्षक रूप प्रदान करती है।
2: आह कितना सुंदर है ये दृश्य।
0: जितना धोती या साड़ी का आकलपन एक विशिष्ट कला है उतना ही करघे को चलाना भी एक कला है। आओ अब हम उद्यान की ओर चलें।
1: आचार्य श्री, हमने चोल स्त्रियों को मत्स्य वल्का शैली में साड़ी पहने देखा है जिसमें साड़ी को पैरों के बीच से निकालकर पीछे खोसा जाता है।
0: हाँ वत्स, दूसरी से चौथी शताब्दी तक आते आते साड़ी पहनने की शैली में कई परिवर्तन आए। शिष्यों, आगे की चार कलाएं आभूषण निर्माण से संबंधित हैं।
1: जी गुरुजी।
0: 35वीं कला रत्नों की पहचान और उनके वेधन से संबंधित है, जबकि 36वीं कला स्वर्ण रजत की शुद्धता की जांच से संबंधित है। 37वीं नकली सोने चांदी हीरे मोती बनाने की कला है, जबकि 38वीं कला सोने चांदी का लेप चढ़ाने, आभूषण बनाने और मीनाकारी करने की कला है।
2: आचार्य श्री, रत्नों के धारण का उद्देश्य तो श्रृंगार से अधिक उनके धारण से होने वाले शुभाशुभ फल से होता है, फिर नकली रत्नों का निर्माण किस लिए?
0: वत्स, नकली आभूषण केवल शोभा बढ़ाने के लिए ही धारण किए जाते हैं। इनकी चमक आभा में कोई कमी नहीं होती। अब जैसे मिश्री से जो कृत्रिम हीरा बनाया जाता है उसे सामान्य जौहरी भी आसानी से नहीं पहचान पाते। आगे से दो कलाएं अर्थात 49वीं और 40वीं चर्म कलाएं हैं जो पशुओं के शरीर पर से चमड़ा निकालकर अलग करने और चमड़े को मुलायम करके उपयोगी सामान बनाने से संबंधित है।
1: आचार्य श्री, पहले तो चमड़े का उपयोग प्रमुखतः चर्म आसन और चर्म वस्त्र के रूप में होता था, अब तो यह आवरण थैला और डोलची बनाने के लिए भी उपयोग में आने लगा है।
0: हाँ वत्स, समय के साथ हर वस्तु के नए नए उपयोग विकसित होते जाते हैं। 41वीं कला गाय भैंस से दूध दोहकर मक्खन घी दही आदि बनाने की कलाओं से संबंधित है, जबकि 42वीं कला वस्त्रों की सिलाई है। 43वीं कला तैराकी है, जबकि 44वीं बर्तन मांजने, 45वीं वस्त्रों को धोने साफ करने और 46वीं शौर कर्म कला है। फिर 47वीं कला तिल रेंडी आदि बीजों से तेल निकालने की, 48वीं पेड़ों पर ऊंचे चढ़ने की और 49वीं हल जोतने की कलाएं हैं।
2: आचार्य श्री, पेड़ों पर चढ़ने को भी कला की श्रेणी में रखा गया है?
0: हाँ वत्स, खजूर ताड़ नारियल सुपारी आदि के पेड़ों पर चढ़ने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। ऐसे ही दूसरों की सेवा करना भी एक कला है, ये 50वीं कला है। जबकि 51वीं कला बांस खजूर ताड़ आदि के पंखे टोकरी आदि पात्र बनाना है।
1: आचार्य श्री, अपने आश्रम में भी तो छोटे बड़े अनेक प्रकार के बिजना बनाए जा रहे हैं और लगभग 2500 प्रकार की टोकरियां और सूपे बनाए जाते हैं।
0: हाँ, टोकरियां तो जैसे सामान रखने के लिए सर्वसाधारण उपकरण है। विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न प्रकार की टोकरियां बनाने का प्रचलन है।
1: जी।
0: फिर ठहरी हुई वायु को बिजना ही चलाता है, चाहे वो मोर पंख का बना हो, खजूर के पत्तों का हो या बांस का। बस तुमने अपने लिए कितने प्रकार के पंखे बनाए हैं?
2: जी गुरुजी, 3 प्रकार के।
0: अच्छा।
2: एक खजूर का सादा, दूसरा बांस का बुनाई वाला और तीसरा उरई की सीकों को रंगीन धागों में बुनकर।
0: इन्हें हम देखेंगे कितनी कलमकारी या कलाकारी की है तुमने।
2: जी जी अवश्य गुरु जी।
0: अब हम 52वीं कला पर आते हैं जो कांच के बर्तन आदि बनाने से संबंधित है।
1: जी गुरुजी।
0: रेत चूना और सोडे के मिश्रण से गलाकर कांच बनाना एक विशिष्ट कला है, ये कीमियागिरी विज्ञान से संबंधित है। आगे की कलाएं हैं 53वीं स्रोतों से सिंचाई, 54वीं संहरण यानी अधिक जल वाले स्थान से जल हटाना, 55वीं हाथी घोड़े ऊंटों आदि के सवारी के आसन बनाना, 56वीं लोहे के अस्त्र बनाना और 57वीं 58वीं और 59 बच्चों की कलाएं, बच्चों का पालन पोषण और खेलने के लिए खिलौने बनाने से संबंधित।
1: यानी आचार्य श्री, जीवन से संबंधित हर गतिविधि एक कला है?
0: हाँ बस, क्योंकि उसके सुचारू संपादन का आधार कुछ नियम और सिद्धांत हैं। अब जैसे कि अपराधियों को दंड देना 60वीं कला है, विभिन्न लिपियों को सुंदरता से लिखना 61वीं कला, और तो और पान का संरक्षण भी 62वीं कला है, और आदान 63वीं तथा प्रतिदान 64वीं कला है।
2: आचार्य श्री, इन 64 कलाओं का पाठ्यक्रम तो काफी व्यापक है, इसमें से तो प्रायः सभी विषयों का समावेश हो जाता है।
0: हाँ वत्स, शिक्षा का उद्देश्य भी तो यही है, सर्वांगीण विकास, ज्ञान की वृद्धि हो, सदाचार में प्रवृत्ति हो और जीविकोपार्जन में सहायता मिले। इस पाठ्यक्रम में इन सब का ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं, पारलौलिक कल्याण भी नहीं छोड़ा गया है। संक्षेप में कहें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का ये क्रम निश्चित किया गया है। श्री कृष्ण को इन सभी विषयों की पूरी शिक्षा दी गई थी और वे प्रायः सभी में प्रवीण भी थे।
1: आचार्य श्री, गुरुकुलों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी बालकों को प्रायः इन सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है, क्या वे सभी सभी कलाओं में दक्ष हो जाते हैं?
0: वत्स, हम यूं कह सकते हैं कि सभी को सभी विषयों का सामान्य ज्ञान हो जाता है। निपुण तो व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रकृति के आधार पर किसी का या किन्हीं विशिष्ट विषयों में ही हो पाता है।
1: जी।
0: जिसकी जिस ओर प्रवृत्ति है उसे उसी में अभ्यास करने से कुशलता प्राप्त होती है। इसीलिए हमने कहा है, याम याम कलाम समाश्रित्य निपुणो यो हि मानवः नैपुण्य करणे सम्यक ताम ताम कुर्यात् स एव हि। सच तो यह है वत्स, वंशागत कला के सीखने में पर्याप्त सुगमता होती है। एक बड़ई का लड़का बड़ई गिरी जितनी शीघ्रता और सुगमता के साथ सीखकर उसमें निपुण हो सकता है उतना दूसरा नहीं, क्योंकि वंश परंपरा और बालपन से ही उसे उस कला के योग्य संस्कार बन जाते हैं। ये शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है। अब सांध्य संध्या का समय हो चला है, आओ हम सब यज्ञशाला की ओर चलें।
1: जी गुरु जी।

0: तो बच्चों, ये थी महर्षि शुक्राचार्य के गुरुकुल की एक झलक।
1: तो घंटी बज गई, चलो चलो।
2: अरे चलो, चलो।

0: नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

तराने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज दिन की सभी प्रस्तुतियां आपको अच्छी लगी होंगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल समय हो रहा है कि इस प्रसारण सभा में मैं आपसे विदा लूं, तो इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। आगे बहुत कुछ खास है आपके लिए हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में। इंतजार कीजिएगा बस जरा सा।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। संध्या के 5 बजे हैं, अब से लेकर रात्रि 10 बजे तक आप रहेंगे सांध्यकालीन सभा में मेरे साथ, यानी आपकी अपनी पूर्वा के साथ। कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ हो आइए इसके पहले हम आपको बताए देते हैं कि आज शाम की सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ऋग्वेद के ऋचाओं का पाठ हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। अक्षय निधि के बाद आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का मेरे साथ, यानी आपके अपनी पूर्वा के साथ। शाम 6 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम वतन का राग का। श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम आधारित है बरकतुल्ला भोपाली पर। साढ़े 6 बजे सुनिएगा इतिहास के पन्नों से। आज इस कार्यक्रम में गोंड राज्य चंद्रपुर का इतिहास जानिएगा डॉक्टर पूजा सक्सेना से। बातचीत की है संदीप शर्मा ने। 7 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम टेक गुरु का। आज टेक गुरु में बातें होंगी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। अनुग्रह नगाइच से बातचीत की है रत्नेश सोनी ने। 7:30 बजे सुनिएगा भारत विभूति। आज ये कार्यक्रम केंद्रित होगा माधव राव सप्रे पर। 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम काव्य गुंजन। आज काव्य गुंजन में आप इन दिनों सुन रहे हैं रश्मि रथी। आज आप रश्मि रथी का भाग 6 सुनेंगे। सुबह क्षमा कीजिएगा, रात 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम विज्ञान चर्चा। आज इस कार्यक्रम में जिस वैज्ञानिक को हमने शामिल किया है वो है पीके अयंगार। 9:30 बजे सुनिएगा हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। 10:00 अभी आप सुन रहे थे आज शाम की सभा में रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए। आइए सुनते हैं अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: पंच पादम पितरम द्वादशाकृतिम दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम अथे मे अन्य उपरे विचक्षणम सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितम। आयन मास ऋतु पक्ष दिन और रात रूपी पांच पैरों वाला मास रूपी 12 आकृतियों से युक्त तथा जल को बरसाने वाले पिता रूप सूर्य देव दिव्य लोक के आधे हिस्से में रहते हैं, ऐसी मान्यता है। अन्य विद्वानों के मतानुसार ये सूर्य देव ऋतु रूप 6 अरों तथा अयन मास ऋतु पक्ष दिन रात एवं मुहूर्त रूपी 7 चक्रों वाले रथ पर आरूढ़ हैं। पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तस्थुर्भुवनानि विश्वा तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सनाभिः। अयन मासादि 5 अरों वाले इस कालचक्र रथ में समस्त लोक विद्यमान हैं। इतने लोकों का भार वहन करते हुए भी इस चक्र का अक्ष धुरा न गर्म होता है और न टूटता है। सनेमि चक्र मजरम विवावृत उत्तानायाम दशयुक्ता वहन्ति सूर्यस्य चक्षु रजसैत्यावृतम तस्मिन्नार्पिता भुवनानि विश्वा। नेमि से युक्त कभी क्षय न होने वाला सृष्टि चक्र सदैव चलता रहता है। अति व्यापक प्रकृति के उत्पन्न होने पर इसे 10 घोड़े 5 प्राण एवं 5 उपप्राण 5 प्राण एवं 5 अग्नियां आदि चलाते हैं। सूर्य रूपी नेत्र का प्रकाश जल से आच्छादित होकर गतिमान होता है, उसमें ही संपूर्ण लोक विद्यमान हैं। सप्त थमाहुरेकजम षडिद्यमा ऋषयो देवजा इति तेषा मिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः। एक साथ जन्मे जोड़े से रहने वाले 6 और 7वां यह सभी एक काल अथवा परमात्म चेतना से उत्पन्न हैं। यह देवत्व से उपजे ऋषि हैं। वे सभी अपने बदले हुए रूपों में अपने अपने इष्ट प्रयोजनों में रत अपने अपने धामों क्षेत्रों में स्थित रहकर गतिशील सक्रिय हैं। स्त्रियः सतीस्ताम् उमे पुंस आहुः पश्य दक्षिणवान्न विचेतदन्धः कविर्यः पुत्रः स इमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पिता सत। ये स्त्रियां हैं फिर भी पुरुष हैं, यह तथ्य दृष्टि संपन्न ही देख सकते हैं। दूरदर्शी पुत्र ही इसे अनुभव कर सकते हैं। जो यह जान लेता है वह पिता का भी पिता हो जाता है। अवह परेण पर एना वरेण पदावत्सम बिभ्रति गौरुदस्थात सा कद्रीची कम स्विदर्धम परागात क्व स्वित्सूते नहीं यूथे अंतः। गौवे पोषक किरण द्युलोक से नीचे की ओर तथा इस पृथ्वी से ऊपर की ओर सतत गतिमान है। यह बछड़े जीवन तत्व को धारण किए हुए किस लक्ष्य की ओर जाते हैं, यह किस आधे भाग से परे निकलकर जन्म देती हैं, यहां समूह के मध्य तो नहीं देती।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

90.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

जीवन में कभी उन चीजों के बारे में यदि हम ना सोचें जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिलती, बल्कि हम उन अनगिनत चीजों को देखकर खुश हो जाएं जो बिना प्रार्थना के बाद भी ईश्वर ने हमें प्रदान की है, तो फिर देखिए ये जीवन हमें कितना सुखद और खुशहाल लगेगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। श्रोताओं, जब हम इस अपने शरीर को देखते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच से लेकर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये ऐसी भावनाएं हैं जो हमें हमेशा ही उद्वेलित करती रहती हैं और परेशान करती रहती हैं। और इन्हें देखा जाए तो हमारे आध्यात्म में रिपु यानी हमारा दुश्मन माना गया है। और इनकी सफाई का यदि हम सोचते हैं तो इन दुश्मन की सफाई को केवल आत्मसंयम द्वारा ही किया जा सकता है। आत्मसंयम ही इसे जड़ से मिटाने का मूल है।

श्रोताओं, कभी आपने ध्यान से सोचा है कि हमारे दुखों की सबसे बड़ी वजह क्या है? जब हम शांति से बैठकर सोचते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारी मानसिकता की जो सीमितता है और हमारी ही मानसिकता में जो विकृति है, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। जैसे किसी की आंखों में ही यदि दोष हो तो सामने के सुंदर दृश्य भी उसे धुंधले ही दिखेंगे, वैसे ही यदि हमारी दृष्टि दूषित है तो जीवन में हमें कष्ट ही कष्ट दिखाई देगा। तो जरूरत है हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की, हमारी अपनी अंतर्दृष्टि को बदलने की।

श्रोताओं, हमेशा हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि ये जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, कोई व्यवधान ना आए। लेकिन ये हमें बहुत ही जरूरी है सोचना कि संसार में परिवर्तन तो अनिवार्य है। ये परिवर्तन कभी भौतिक रूप से भी हो सकता है, कभी मानसिक रूप से, तो कभी सामाजिक रूप से। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य और मूल्यों को बनाए रखता है, वही अंत में स्थिर और शांत जीवन जी पाता है। तो सबसे पहले हमें यह सोच बना के रखनी होगी कि परिवर्तन तो अनिवार्य है, स्थाई है तो मन की शांति।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आज भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले। श्रोताओं, संसार में अक्सर हमें दुखद और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय हमारा मन भी टूटता है, दुखी होता है, व्यथित होता है, और ऐसे में अक्सर हम अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। लेकिन यदि देखें तो सच्चाई यह है कि दुख हमें कोई शक्ति नहीं रखता, स्वयं में कोई शक्ति नहीं रखता। हमारी जो प्रतिक्रिया है दुख के प्रति, वो उसे बढ़ा सकती है या घटा सकती है। तो जब भी दुख आए, प्रतिक्रिया को अपनी सशक्त कर लें दुख से लड़ने के लिए।

बुद्धि इंसान का एक ऐसा गुण जिसके लिए विद्या का अर्जन करना आवश्यक नहीं है। बुद्धि तो उस अग्नि के समान होती है जो अकेले ही पूरी ही दुनिया में प्रकाश फैलाने का काम कर सकती है। तो जब भी प्रार्थना करें ईश्वर से सद्बुद्धि

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कोई कष्ट न देखें, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

से शक्तिशाली साम्राज्य की नींव हिलाकर अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी। सन 1857 के पूर्व का स्वतंत्रता संग्राम वो बुनियादी स्वतंत्रता संग्राम था जिस पर आगे चलकर स्वतंत्रता की मजबूत इमारत खड़ी हुई। बरकतुल्लाह भोपाली का जन्म भोपाल में ही हुआ और भोपाल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो कुछ समय बंबई में रहकर लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन में रहते हुए उन्होंने भारत और लंदन की आर्थिक स्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजों की खुशहाली और संपन्नता वास्तव में भारत से लूटी गई दौलत की बिना पर है। दिन ब दिन उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा और वतन को गुलामी से आजाद कराने की भावना जोर पकड़ती गई। बरकतुल्लाह भोपाली ने लंदन की सभाओं और सम्मेलनों में धार्मिक व्याख्यानों के साथ भारत की स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर तन मन धन से स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। उनके भाषण और लेख लंदन के लोकप्रिय और प्रतिष्ठित अखबारों में प्रकाशित होने लगे। बरकतुल्लाह भोपाली ने बहुत प्रभावी ढंग से अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण और दमनकारी नीतियों को खुलकर प्रचारित किया। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों में सन 1857 से लेकर उन सारे जुल्मों का क्रमवार उल्लेख किया जब से हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर बर्तानिया शासन के अधीन हुआ। उन्होंने बर्तानिया को दोषपूर्ण पॉलिसी और उनकी दासता के अंतर्गत आने वाले देशों में उनकी बर्बरता, उपेक्षा, हिंसात्मक गतिविधियां और उनकी स्वार्थ सिद्धि, साथ ही अन्यायपूर्ण नीतियों और अव्यवस्थाओं पर चोट की। बरकतुल्लाह भोपाली के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उन्हें लंदन से बाहर निकालने के फैसले किए जाने लगे। इससे पहले कि उन पर सीधे कोई कार्यवाही होती, बरकतुल्लाह अमेरिका प्रस्थान कर गए। अमेरिका में भी उन्होंने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए लोगों की मानसिकता तैयार करने का काम शुरू किया। अमेरिका और एशिया के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से वो क्रांति की लौ भड़काते रहे।

सन 1909 में वो फ्रांस होते हुए इस्तांबुल और फिर काहिर गए। यहाँ भी उन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं और जनसंपर्क के माध्यम से भारत की आजादी के लिए एकजुट होने का आह्वान किया और फिर जापान पहुंचकर अंग्रेजों के खिलाफ वातावरण तैयार करने के लिए बागियाना गतिविधियों में संलग्न हो गए। बरकतुल्ला भोपाली हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। वर्षों की मेहनत और कोशिशों से हजारों की तादाद में न केवल अमेरिका बल्कि कनाडा और मैक्सिको जैसे क्षेत्रों में भी बसे हिंदुस्तानियों को उन्होंने गदर पार्टी की विचारधारा और उसके उद्देश्य से जोड़ा। गदर पार्टी का उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत का तख्ता पलटकर मुल्क को आजाद करना था। गदर पार्टी के कामों में बरकतुल्ला के जिम्मे जगह जगह दौरे करना, सम्मेलन और सभाओं में भाषण देना, प्रचार प्रसार करना था। सन 1914 की नई इनकलाबी पार्टी बर्लिन कमेटी आजाद हिंदुस्तान लीग यूरोप एशिया का गठन हुआ। बरकतुल्ला भोपाली इसके लिए जिम्मेदार एवं महत्वपूर्ण सदस्य थे। उनके जादुई शब्दों से भरे भाषणों ने ऐसा प्रभाव डाला कि हजारों हिंदुस्तानी अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए तैयार हो गए। बरकतुल्ला भोपाली अनेकों इनकलाबी संगठनों से जुड़े और विश्व विख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा के गुप्त मिशन में भी उनके साथ रहे। वो इंडो जर्मन तुर्क गठबंधन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिसका उद्देश्य हिंदुस्तान पर काबिज अंग्रेजी हुकूमत पर सीधा आक्रमण करने का था। अफगानिस्तान में जो फौज हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए तैयार की गई थी उसमें लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर उन्हें नियुक्त किया गया। बरकतुल्ला भोपाली नस्ल रंग भेद की भावना के कट्टर विरोधी और भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता के जबरदस्त पक्षधर थे।

29 अक्टूबर सन 1915 को काबुल में इनकलाबी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिंदुस्तान की प्रथम निर्वाचित सरकार के गठन का निर्णय लिया गया था। 1 दिसंबर सन 1915 को भारत की निर्वाचित सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति और बरकतुल्ला भोपाली को भारत निर्वाचित सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। देश की स्वतंत्रता के लिए निर्वाचित सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वर्ष 1927 में ब्रुसेल बेल्जियम में साम्राज्य दुश्मन आलमी कॉन्फ्रेंस के प्रथम सम्मेलन में बरकतुल्ला भोपाली गदर पार्टी के प्रतिनिधि की हैसियत से सम्मिलित हुए। यहीं पर उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। पंडित नेहरू ने अपनी जीवनी मेरी कहानी में लिखा है कि हिंदुस्तान के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता प्रेमी और भारत की प्रथम निर्वाचित सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री से मेरी साम्राज्य दुश्मन आलमी कॉन्फ्रेंस के प्रथम सत्र में पहली और आखिरी मुलाकात हुई। मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली ने वतन की स्वतंत्रता के खातिर लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, हांगकांग, शंघाई, बैंकॉक, सिंगापुर, कोलंबो, पेरिस, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को और भी कई जगहों का भ्रमण किया। वो न केवल जहां गश्त इनकलाबी थे बल्कि जंगे आजादी के महानायक भी थे। अंत में वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, जहां उन्होंने गदर पार्टी के दफ्तर युगांतर आश्रम में ही ठहरना पसंद किया। अब वो बहुत बूढ़े और बीमार हो चुके थे, दिनों दिन उनका स्वास्थ्य गिरता गया। 27 सितंबर सन 1927 की रात उनकी जीवन की आखिरी रात थी। जीवन के आखिरी क्षणों में उन्होंने पूरे होशोहवास में कहा था, सारा जीवन मैं पूरी ईमानदारी से अपने वतन की आजादी के लिए संघर्ष करता रहा। यह मेरी जबरदस्त खुशकिस्मती थी कि मेरा ये तुच्छ जीवन मेरे प्यारे वतन के काम आया। आज इस जिंदगी से रुखसत होते हुए जहां मुझे ये अफसोस है कि मेरी जिंदगी में मेरी कोशिशें कामयाब ना हो सकीं, वहां मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे बाद मेरे मुल्क को आजाद कराने के लिए लाखों आदमी आज आगे बढ़ आए हैं, जो सच्चे बहादुर और जाबाज हैं। मैं शांति के साथ अपने प्यारे वतन की किस्मत इनके हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। बरकतुल्ला भोपाली नहीं रहे, परंतु उनकी आजादी का जज्बा अमर है। ऐसे महान वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।

0: इतिहास के पन्नों से की 16वीं कड़ी तक पहुंच गए हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित देवगढ़ किले के बारे में। हमने बताया कि किस तरह वो किला ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, जहां पर पानी की सप्लाई के लिए उस जमाने में टेराकोटा की पाइपलाइंस का इस्तेमाल किया गया था। किले में स्थित राजा की कचहरी, बादल महल, खजाना, हाथी खाना, बारूद खाना और अनेक इमारतों के बारे में हमने जाना। इसके साथ ही किले की सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षा दीवार और उसमें स्थित बुर्जों की महत्वपूर्ण लोकेशंस के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। किले के आसपास स्थित बावड़ियों, किस्बन महल और जाटवा की समाधि के साथ अनेक शिव मढ़ियाओं के बारे में हमने आपको बताया। हमने बताया कि किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक सुरक्षा चक्र, जैसे आसपास छोटे किले या गढ़ी और उसके बाद घना वन, नदियां और अनेक किलों से कैसे सुरक्षा जाल बिछाया जाता था, जो कि सूचना तंत्र की तरह भी काम आता था। ये सारी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई अपनी विषय विशेषज्ञ मशहूर पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना के जरिए। स्वागत है पूजा जी आपका आज भी हमारे इस एपिसोड में।
1: नमस्कार
0: पूजा जी। देवगढ़ के बारे में तो आपने हमें विस्तार से पिछले एपिसोड में बता दिया था, आज हम गोंड शासन के किस किले के बारे में, किस शहर के, किस नगर के बारे में चर्चा करेंगे?
1: पिछली कड़ियों में बात करते हुए हमने गढ़ा मंडला के गोंड राज्य के बारे में जाना
0: जी,
1: जो कि जबलपुर और उसके आसपास मध्य प्रदेश में स्थित था, और उसके बाद हमने छिंदवाड़ा और उसके आसपास स्थित देवगढ़ के किले के बारे में जाना
0: जी,
1: और अब बारी है अगले गोंड राजवंश की, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था।
0: अच्छा,
1: तो ये जो चंद्रपुर है ये बड़ा ही प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है
0: जी,
1: और वर्तमान में इसे चांदा के नाम से जाना जाता है, हालांकि फिर से इसका नाम बदल कर चंद्रपुर कर दिया गया है और अब ये महाराष्ट्र का एक जिला भी है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो गोंड इतिहास में अगर हम देखें तो कथा आती है कि कोल नाम का एक पराक्रमी गोंड था, जो कि जुन गांव मोवाड़ के आसपास किसी क्षेत्र में रहता था
0: जी।
1: तो उसने अपने पराक्रम से मानिकगढ़ के किले को जीत लिया और यहीं से गोंड राज्य की स्थापना हुई, ऐसे तथ्य हमको लोक कथाओं में मिलते हैं। उसने अपने पराक्रम से मानिकगढ़ के किले को जीत लिया और यहां से चंद्रपुर के गोंड राज्य की स्थापना हुई, ऐसा हमें कथाओं से पता चलता है।
0: अच्छा,
1: लेकिन ऐतिहासिक तथ्य जो है उसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है भीम बल्लाल सिंह का, जिनको राजा भीका भी कहते हैं
0: जी।
1: और इनका जो शासन काल है वो है 13वीं शताब्दी में, यानी 1247 से लेकर 1272 ईस्वी तक
0: जी।
1: तो जो भीम बल्लाल सिंह है इनको ऐतिहासिक रूप से चांदा राजवंश का संस्थापक माना जाता है, और कहीं कहीं ये भी आता है कि जो कोल था उन्होंने सिरपुर की जागीर भीम बल्लाल सिंह को सौंप दी थी, इसलिए उनको राज्य करने का अवसर मिला और उन्होंने चंद्रपुर के गोंड राज्य की शासन व्यवस्था संभाली।
0: अच्छा,
1: इसी राजवंश में एक राजा हुए खंडाक्या बल्लाला राजा। तो जब उन्होंने चंद्रपुर की शासन व्यवस्था संभाली तो कहा जाता है कि उन्हें सिरपुर राजधानी के रूप में जच नहीं रहा था।
0: अच्छा,
1: और उन्हें लगता था कि ये भौगोलिक, आर्थिक और वित्तीय कारणों से ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया
0: जी,
1: और सिरपुर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा नदी के किनारे पर उन्होंने एक नया शहर बसाया
0: जी।
1: सबसे पहले यहाँ पर एक किला बनाया
0: जी,
1: और इस जगह को सुरक्षित कर दिया, तो इस शहर का नाम पड़ा बल्लार शाह।
0: तो क्या ये वही बल्लार शाह है जो कि नागपुर और हैदराबाद के बीच पड़ता है और चंद्रपुर के बिल्कुल नजदीक?
1: जी हाँ, ये वही बल्लार शाह स्टेशन है।
0: अच्छा,
1: आप कभी दक्षिण की तरफ जा रहे हो
0: जी, जी,
1: तो ट्रेन यहाँ बड़े लंबे समय तक हॉल्ट करती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: वो आज भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से अगर आप सिकंदराबाद जाना चाहते हैं
0: जी, जी,
1: तो उसके लिए एक रूट है, अगर आप चेन्नई जाना चाहते हैं तो दूसरा रूट है, और केरल और कर्नाटक के लिए भी रूट है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो आज भी यहाँ पर एक जंक्शन जैसा है
0: जी।
1: तो बल्लार शाह इस जगह के महत्व को 600-700 साल पहले भी समझ पाए थे
0: जी, बिल्कुल।
1: और उन्होंने यहाँ राजधानी स्थानांतरित कर ली। तो उस जमाने में भी जो पैदल मार्ग था वो यहीं से होकर गुजरता था, और बल्लार शाह उस समय भी एक जंक्शन की तरह था
0: जी।
1: जब यहाँ राजधानी स्थानांतरित हो गई तो धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी
0: जी।
1: और दूर दूर से आकर लोग यहाँ पर व्यापारी बसने भी लगे
0: जी।
1: तो ये घनी आबादी वाला एक शहर हो गया जहाँ पर विभिन्न स्थानों से आए हुए लोग बस गए थे।
0: तो श्रोताओं देखिए, पूजा जी हमें इतनी अच्छी जानकारियां देती कि हमें हमारे सोचने का जो नजरिया है वो भी कितना विस्तृत होता चला जा रहा है कि हमारे पूर्वज इतने पहले भी उनकी सोच कितनी बड़ी थी कि वो जानते थे कि यदि किसी जगह से, आज तो हम ये निश्चित रूप से जानते हैं कि वो एक जंक्शन है, वहां से ट्रेनें विभिन्न मार्गों की होकर के गुजरती हैं, लेकिन तब उन्हें ये मालूम था कि दक्षिण जाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। तो उत्तर और दक्षिण के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु था और व्यापारिक स्थल बनाया, तो क्या खूब है ये बात जी। पूजा जी आगे चलते हैं।
1: इसके बाद उनका पोता हुआ हीर सिंह।
0: अच्छा।
1: और हीर सिंह ने जब शासन व्यवस्था संभाली तो उसने अपने अच्छे राजनीतिज्ञ होने का और युद्ध कौशल में पारंगत होने के बहुत से प्रमाण दिए। उसका शासनकाल भी बहुत अच्छी स्मृतियों से जुड़ा हुआ है
0: जी।
1: खास बात जो हीर सिंह की थी वो ये थी कि उन्होंने कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम सब जानते हैं कि जो गोंड जनजाति है
0: जी,
1: उसका कृषि का अपना एक परंपरागत तरीका है
0: जी, जी,
1: वह जंगल में ही कृषि करते हैं और एक स्थान पर करते हैं, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पर करते हैं, तब तक वहां जंगल उगता है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। लेकिन ये वो समय था जब वास्तव में समय बदल रहा था और कृषि के आधुनिक तरीकों को भी अपनाना आवश्यक था
0: जी।
1: क्योंकि बहुत से लोग अब वनों को छोड़कर नगर में बस गए थे या नगरों के पास जो ग्राम थे उनमें बस गए थे, तो अब खेती की तकनीकों में अंतर लाना समय की मांग थी। तो हीर सिंह ने समय की इस मांग को समझा और उन्होंने कृषि में क्या आधुनिकता लाई जा सकती है, क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, इस पर बहुत काम किया। इसका परिणाम ये हुआ कि उस समय का जो गोंड समाज था उसकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ, जो अब नगरों में आकर रहने लगा था या ग्रामों में आकर रहने लगा था।
0: तो पूजा जी, किस तरह के सुधार किए, किस तरह की आधुनिकता की आप बात कर रही हैं?
1: जी हाँ, गोंड काल में जो कृषि में सुधार हुए उसमें बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं
0: जी।
1: जैसे कि हम देखते हैं कि गोंड राजवंश में ही एक और राजा हुए हैं, राजा धुंडिया राम शाह।
0: अच्छा।
1: जिनका समय है 16वीं सदी में, 1597 से लेकर 1622 तक। तो इनके समय में हमें दिखता है कि बहुत से जो शैव लिंगायत थे वो आकर चंद्रपुर राज्य में बस गए थे
0: जी।
1: तो वे लोग खेती के अच्छे जानकार थे
0: जी।
1: रामशाह धुंडिया ने इनको भी खेती के कार्यों में कैसे और अधिक आधुनिकता लाई जा सके इस काम पर लगाया
0: जी।
1: और लगातार जो चंद्रपुर राज्य था वो फिर कृषि के आधार पर बहुत प्रगति करता चला गया। इसके साथ ही एक और जो हमको इनका कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है वो ये कि बहुत से तालाबों का निर्माण हुआ। कृषि के लिए जल आपूर्ति की तो आवश्यकता होगी ही,
0: और साथ ही वो जो क्षेत्र है वहाँ जल की कमी भी हमेशा बनी रहती, काफी गर्म जगह
1: जी हाँ। और हमने देखा था ना कि जब गढ़ा मंडला की बात हुई थी तब भी रानी दुर्गावती ने अनेक तालाबों का निर्माण कराया था, और उस समय भी हमने बात की थी कि जो गोंड है उनको जल प्रबंधन का बड़ा ही अच्छा ज्ञान है। और यहाँ पर क्योंकि आपने जैसे कहा कि पानी की बहुत कमी है, तो कुछ नई तकनीक भी हमको देखने को मिलती हैं कि कम से कम निर्माण में अधिक से अधिक पानी कैसे संग्रहित किया जा सकता है प्राकृतिक रूप से तालाबों में। उसके भी कई सारे उदाहरण हमको यहाँ दिखाई देते हैं। तो जैसे कि चंद्रपुर है, चंद्रपुर के आसपास जो है एक हमको रामाला तालाब दिखाई देता है और इसका निर्माण भी खांडक्या बल्लाल शाह ने कराया था।
0: अच्छा।
1: और इसके अलावा उनके जो वंशज हैं राम शाह, उन्होंने भी तालाब को आगे और सुदृढ़ किया, तो फिर नाम कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर रामाला पड़ गया था।
0: अच्छा।
1: जी हाँ। और हीर शाह जो हुए उन्होंने भी कोमटी नाम का एक तालाब बनाया, और उन्होंने ही नहीं उनकी जो पत्नी थी उन्होंने भी एक घुटकला नाम का एक तालाब बनाया। इस तरीके से हमको चंद्रपुर में ही 6 तालाब मिल जाते हैं। तो अनेक तालाब बनाए गए और यहाँ तक कि जो छोटी छोटी जगह हैं उन पर भी हमको बहुत से तालाब चंद्रपुर राज्य में मिलते हैं जो राजाओं ने ही नहीं बल्कि आम जनता ने भी बनवाए हैं। ऐसे तालाबों में जैसे एक नाम आता है गढ़चिरौली का कुनघाड़ा तालाब है, इसी तरीके से बहुत सारे नाम हैं जो इस जगह में हमको मिलते हैं तालाबों के।
0: जहां भी पानी उपलब्ध होता है वहां जाकर लोग बसते आए हैं, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन जो हमारे पूर्ववर्ती राजा थे वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि यदि उन्हें सुदीर्घ शासन करना है तो उस जगह पर जल व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहां पर समुचित पानी होना चाहिए। और इसलिए देखिए हमारे राजाओं ने सबसे ज्यादा जो काम किया है वो पानी की उपलब्धता को लेकर किया है, तालाब खुदवाए।
1: चंद्रपुर के गोंड राजा थे हीरशाह
0: जी,
1: और उनका तो एक उदाहरण बड़ा सुनने लायक है
0: जी।
1: और कैसे उन्होंने समृद्ध किया देखिए, उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक आदेश दिया कि जो किसान तालाब खोदेंगे और उसके जल का उपयोग कृषि के लिए करेंगे तो जितनी वो भूमि सिंचित करेंगे वो भूमि उसी किसान की हो जाएगी।
0: अरे वाह।
1: तो इससे कृषि को बड़ा प्रोत्साहन मिला।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कुछ लोग मिलकर अपना तालाब खोदते और फिर उस पानी से कृषि करते थे। तो इसके साथ ये भी डर था कि अगर लोग इस तरीके से कृषि भूमि ले लेंगे और मान लीजिए फिर उस पर कृषि नहीं की तो फिर स्वामित्व तो उनका हो गया, अब क्या होगा। तो राजा ने एक और आदेश पारित किया और उसमें ये सुनिश्चित किया कि यदि किसी किसान ने उस कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं किया, उसे यूं ही छोड़ दिया साल भर के लिए, तो फिर वो कृषि भूमि राजा वापस भी ले लेगा। तो इस तरीके से कृषि को बहुत प्रोत्साहन दिया, तालाबों के निर्माण के लिए भी बहुत प्रोत्साहन मिला
0: जी। पूजा जी, जब भी चंद्रपुर के गोंड शासन की बात आती है तो वहाँ के की एक रानी के भी शासन की चर्चा होती है, तो कौन थी वो रानी, किस तरह का था उनका राज्य?
1: जो अभी हमने हीरशाह की बात की
0: जी,
1: जिन्होंने अनेक तालाबों का निर्माण कराया, कृषि भूमि तैयार कराई, तो ये जो हीरशाह थे ये निसंतान थे।
0: अच्छा।
1: और इनकी पत्नी थी रानी हीराई। राजा की मृत्यु बड़ी जल्दी हो गई तो रानी ने उनकी मृत्यु के उपरांत एक बालक को गोद लिया
0: जी।
1: लेकिन वो भी वयस्क हो पाता उससे पहले उस बालक की भी मृत्यु हो गई। तो फिर रानी ने एक और गोंड बालक गोद लिया जिसका नाम अकवा था, वो बाद में फिर राजा भी बना
0: जी।
1: लेकिन अगर हम चंद्रपुर के गोंड इतिहास में देखें तो हम देखते हैं कि जो रानी हिराई है उनका स्थान तो राजमाता का है और लोग तो उन्हें सनातन की प्रतिमूर्ति भी कहते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि उन्होंने इतने सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया, मेले लगवाए
0: जी,
1: बहुत कुछ काम किया। तो इसलिए हीराई जो है वो राजमाता चंद्रपुर के नाम से जानी जाती है।
0: तो पूजा जी, क्या जो रानी हीराई ने उस वक्त जो वहां पर मंदिरों का निर्माण कराया चंद्रपुर में, क्या वो आज भी देखे जा सकते हैं? है?
1: जी हाँ, बहुत सारे मंदिर है ऐसे।
0: अच्छा।
1: और बड़े सुप्रसिद्ध हैं, जैसे एक महाकाली का मंदिर है
0: जी,
1: बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। एक और मंदिर है जिसका नाम एक वीरा मंदिर है, और अचलेश्वर का मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है
0: जी।
1: ये सारे मंदिर राजमाता हिराई के द्वारा बनाए हुए हैं। इसके अलावा एक जुनोना नाम की जगह है, वहां पर एक किला है, उसकी भी नींव जो है वो राजमाता हिराई ने रखी।
0: अच्छा।
1: और उसकी जो परकोटे की दीवार है उसका भी काफी हद तक निर्माण जो है रानी हिराई के शासनकाल में ही हो चुका था।
0: अच्छा।
1: इसी तरह चंदनखेड़ा का किला भी रानी हिराई ने ही बनवाया। और रानी हिराई का जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम माना जाता है वो ये है, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि महाकाली का मंदिर रानी हिराई ने बनवाया था, तो वहां उन्होंने एक और परंपरा डाली, एक मेले का आरंभ करवाया
0: जी।
1: ये मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है।
0: अच्छा।
1: और आज भी लगता है, इतने 100 साल के बाद भी वहां लगता है
0: जी।
1: और इस मेले ने उस समय भी और आज भी बहुत सा परिवर्तन लाया
0: जी। जी।
1: जैसे कि धर्म, व्यापार, सांस्कृतिक विनिमय को बहुत प्रोत्साहन मिला, और आज भी ये बड़े धूमधाम से ये मेला लगता है, हजारों लाखों लोग वहां पर जाते हैं
0: जी, जी।
1: चैत्र की पूर्णिमा पर। फिर यहाँ जब ये मेला लगता है इससे पहले कुछ यात्राएं भी होती हैं, परिक्रमाएं भी होती हैं, उससे भी बहुत सारे जन समुदाय आज तक इस क्षेत्र में जुड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। और एक और योगदान है जो राजमाता हिराई का है, वो ये है कि जब उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया तो उन्होंने विद्वानों को, लोक गीतकारों को, कवियों को बहुत प्रश्रय दिया।
0: अच्छा।
1: और आप मराठी के जो कई भजन सुनते हैं, कई गीत सुनते हैं जो आज भी प्रचलित हैं, यहाँ तक कि बहुत सी मराठी की आरतियां भी जो हैं,
0: जी जी,
1: वो भी राजमाता हिरई के समय की हैं।
0: अरे वाह।
1: जो उन्होंने उस समय विद्वानों को प्रश्रय देकर लिखवाई
0: जी।
1: और उनका प्रचलन आज भी हमको जगह जगह सुनाई देता है।
0: तो देखिए कितनी अच्छी परंपरा जो चैत्र पूर्णिमा का मेला रानी हिरई ने वहां पर शुरू कराया, वो न सिर्फ परंपरा के रूप में, आस्था के रूप में या धर्म का प्रतीक है, बल्कि आज तक वो पूरे क्षेत्र के लोगों को के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का भी केंद्र हो गया, क्योंकि पहले यात्राएं निकलती हैं, फिर इतने वक्त तक तो व्यापार का भी हो गया और साथ ही साथ मनोरंजन का तो है ही। तो पूजा जी, राजमाता हिरई के बाद चंद्रपुर में किसने शासन किया?
1: चंद्रपुर में अनेक राजा हुए, पर जो उल्लेखनीय राजा हैं वो हैं कर्ण शाह।
0: अच्छा।
1: और उनका समय है 1547 से लेके 1572 तक।
0: जी।
1: ये अकवा के पुत्र थे जिनकी अभी हमने बात की।
0: जी जी जी।
1: और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत न्यायप्रिय थे और इन्होंने गोंड राज्य का बहुत विस्तार भी किया।
0: जी।
1: और इनके समय की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, वो घटना ये है कि जैसे हमने गढ़ामंडला में भी देखा था कि ये वो समय था जब तेलंगाना में बहमनियों का शासन था।
0: अच्छा।
1: और उस समय जो तेलुगु ब्राह्मण हुआ करते थे उनका बड़ा उत्पीड़न हो रहा था।
0: जी।
1: और हमने जैसा पहले सुना भी था कि गढ़ामंडला में रानी दुर्गावती ने भी उनको प्रश्रय दिया था तेलुगु ब्राह्मणों को, तो उसी प्रकार से कर्ण शाह ने भी उनको प्रश्रय दिया। और केवल प्रश्रय ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने बहुत सारी जमीनें भी उनको अच्छा, दान में दी, जिससे कि वे वहां पर अध्ययन अध्यापन कर सकें और राज्य के प्रगति में काम आ सकें।
0: जी जी।
1: तो आपने एक जगह सुनी होगी शायद बाबूपेठ के नाम से।
0: जी जी।
1: महाराष्ट्र में है
0: जी।
1: यही चंद्रपुर के पास में। तो कहते हैं कि जब कर्ण शाह ने तेलुगु ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुलाया तो सबसे पहले उन्होंने उनको अपने चंद्रपुर किले के अंदर ही बसाया।
0: अच्छा।
1: किले की जो बाहरी दीवार होती है उसके अंदर का जो परिसर होता है वहां पर उनको बसाया।
0: जी।
1: तो इतनी बड़ी संख्या में तेलुगु ब्राह्मण वहां से उत्पीड़ित होकर आए थे कि वह जगह छोटी पड़ गई।
0: अच्छा।
1: और जो परकोटा था किले का उसके बाहर बबूल के पेड़ों का जंगल था।
0: जी।
1: तो इतनी बड़ी संख्या में ये ब्राह्मण आए थे कि उन्हें परकोटे के बाहर बबूल के पेड़ों को की सफाई करके भी रहना पड़ा।
0: अच्छा।
1: तो ये जगह का नाम पड़ा परकोटे के बाहर की जो जगह थी बबूलपेठ।
0: अच्छा, अच्छा।
1: आजकल ये जगह बाबूपेठ के नाम से जानी जाती है।
0: तो बबूलपेठ से बाबूपेठ हो गया।
1: हाँ जी।
0: बोलते बोलते अपभ्रंश हुआ। तो जो कर्ण शाह थे पूजा जी, इनका क्या क्या योगदान था, इन्होंने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया?
1: इन्होंने अपने पहले तो राज्य का विस्तार किया, इनका राज्य अब उमरेड, पटपवनी, चीचगढ़ यहाँ तक फैल चुका था।
0: अच्छा।
1: और फिर अनेक निर्माण कार्य भी कराए। तो चांदा में एक पुराना शिव मंदिर है
0: जी,
1: वो भी इनका बनाया हुआ है। इसके अलावा एक गुफा है।
0: अच्छा।
1: उसको भी इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। तो कर्ण शाह ने काफी काम कराए और जो उमरेड का दुर्ग है वो भी कर्ण शाह के काल का ही है। कर्ण शाह के बाद फिर बाबा जी बल्लाल शाह का राजत्व काल आरंभ हुआ 1572 से लेकर 1597 तक
0: जी।
1: तो इस समय जो है वो बहमनियों ने चंद्रपुर पर आक्रमण किया और बाबा जी बल्लाल शाह को उनका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। लेकिन एक यहाँ एक कहानी भी है, वो कहानी ये है कि जो चंद्रपुर के गोंड राजा थे
0: जी,
1: उन्होंने भी संगीत को बड़ा अपनाया, बड़े अच्छे संगीतकार हुए इनके यहाँ भी
0: जी जी।
1: और कहते हैं कि जब इनको जेल में डाल दिया गया बहमनियों द्वारा
0: जी,
1: तो एक सुबह बाबा जी ने एक गीत गाया।
0: अच्छा।
1: जो बहमनी शासक थे उनकी जो रानी थी उन्होंने सुना
0: जी।
1: और वो इससे इतनी प्रभावित हुई कि फिर उन्होंने उन्हें उसी दिन कैद से छोड़ दिया और इतना ही नहीं उनका राज्य भी वापस कर दिया।
0: अरे वाह।
1: हाँ। और ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि चंद्रपुर के गोंड राज्य से अनेक राजा लखनऊ जाते थे शास्त्रीय संगीत सीखने।
0: वाह।
1: तो इतनी संगीत
0: इतना
1: की परंपरा,
0: लगाव था और परंपरा थी जी।
1: आदिया बल्लाल शाह ने बर्दा नदी के पूर्वी किनारे पर यह किला बनवाया और इस किले के निर्माण में काले पत्थर का उपयोग किया गया। ये किला लगभग 6 एकड़ में फैला है और इसका जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व की तरफ है। तो सबसे पहले जब हम इस किले में प्रवेश करते हैं तो केशवनाथ का मंदिर आता है। और कहते हैं कि पहले जो केशवनाथ के मंदिर में प्रतिमा रखी थी उस पर सोने का मुलम्मा चढ़ा हुआ था, यानी
0: जी
1: सोने की परत चढ़ी
0: जी
1: हुई
0: जी
1: थी। बाद में फिर कभी 1818 ईस्वी में के आसपास ये मूर्ति चोरी हो गई।
0: अच्छा
1: तो अब फिर जो भोसले आए, जब मराठा शासन काल आया,
0: जी
1: तो एक पुजारी थे पाटिल मोरे, उन्होंने फिर एक नई शिला की एक नई मूर्ति वहां पर रखवा दी,
0: अच्छा
1: जिसके दर्शन आज भी होते हैं। इसके अलावा दुर्ग में अगर हम अंदर जाएं तो वहां पर जो राजा का महल है
0: जी
1: वो भी हमें दिखाई देता है। उसमें कई सारे अंडरग्राउंड कमरे भी हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, अंडरग्राउंड कमरों का भी बहुत सा उपयोग है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया
0: सुरक्षा
1: था।
0: व्यवस्था के लिए
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: बहुत महत्वपूर्ण है।
1: हाँ ये एक और बात है कि जो ये अंडरग्राउंड कमरे हुआ करते हैं,
0: जी
1: इसमें कई बार तो जैसे दुश्मनों को कैद किया जाता है ना,
0: जी
1: तो उसके भी उपयोग आ जाते हैं कि नीचे के कमरों में उनको कैद करके रख लिया
0: जी
1: और ऊपर आप रह रहे हो।
0: जी
1: इस
0: बिल्कुल
1: तरीके के भी प्रमाण मिलते हैं इतिहास में।
0: जी
1: तो इस दुर्ग का जो परकोटा है लगभग 12 मीटर चौड़ा है और काफी दूर तक ये इसकी परिधि है। इस दुर्ग में अस्तबल भी है, अस्तबल के साथ में कुछ और कमरे भी हैं जो वहां के जो कर्मचारी हुआ करते
0: जी
1: होंगे उनके वो रहने के लिए। इसके साथ ही किले के चारों तरफ खाई भी है
0: अच्छा
1: जो कि सुरक्षा व्यवस्था के काम आती थी। किले के अंदर कचहरी है, बहुत सारे निर्माण कार्य हैं, एक बावड़ी भी है। तो ये जो किला है ये आज एक पर्यटन स्थल के रूप में
0: बिल्कुल
1: जाना जाता है।
0: जी
1: और किले की एक बड़ी और खास बात भी है कि ये जो पहाड़ी है जिस पर किले का निर्माण हुआ है, एक और हीरे की खदान भी है। बल्लालपुर के तरह ही एक और किला है चंद्रपुर राज्य का,
0: जी
1: जो कि गढ़चिरौली जिले में है।
0: अच्छा
1: और ये किला तो चांदा से उत्तर पूर्व दिशा में है और 150 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग।
0: अच्छा
1: ये भी एक पर्यटन स्थल है। एक मरुम गांव नाम का स्थान आता है,
0: अच्छा
1: वहां से फिर आप मुड़ेंगे तो फिर ये किला आ जाता है। ये जो किला है ये भी पहाड़ी पर है और जो इसकी योजना है वो वर्गाकार है।
0: अच्छा
1: और ये लगभग 960 मीटर लंबा, 960 मीटर चौड़ा, इस तरीके से लगभग 2 मील क्षेत्रफल
0: ओहो
1: में फैला हुआ है।
0: जी
1: और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि दुर्ग में तो तालाब की बहुत जरूरत होती है, तो यहाँ पर भी एक बड़ा गहरा तालाब है पहाड़ी के ऊपर।
0: जी
1: इसके साथ ही इसी पहाड़ी से एक नाला भी निकलता है
0: अच्छा
1: जिसको वेलोचना कहते हैं। और ये जाके आगे एक नदी बहती है, खोबरागढ़ी नदी,
0: जी
1: उसमें मिल जाता है। और तो यहाँ से कई सारे इससे जुड़े हुए कई सारे अनुष्ठान भी हैं,
0: जी
1: मेले भी हैं, जो आज भी यहाँ पर लगातार कई 100 सालों से चलते आ रहे हैं।
0: जी
1: टीपागढ़ के इस किले के अवशेषों में कुछ भूमिगत कमरे भी हैं, हमको देखने को मिलते हैं।
0: जी और उनका जिक्र अभी कुछ देर पहले ही किया था हमने, चर्चा की थी कि वो किस काम में आते थे। पूजा जी ने हमें बताया कि दुश्मनों को कैद करने के लिए भी रखा जाता था ताकि राजा खुद ऊपर रहें और दुश्मन जो जो उनके कैदी हैं वो नीचे रहें और किसी भी तरह से गुंजाइश ना हो कि वो भाग सकें। तो देखिए बहुत अच्छी अच्छी इनकी योजनाएं थीं और हम हर जगह देख रहे हैं कि गोंड अपने किलों के अंदर पहाड़ियों में जल की बहुत अच्छी व्यवस्था करते थे। वहां तालाब होते थे, तालाब खुदवाए जाते थे और बल्कि पाइपलाइंस तक की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। पिछले एपिसोड में तो पूजा जी ने हमें बताया कि वहां पर बाकायदा टॉयलेट्स का निर्माण किया गया था और मैला ढोने की परंपरा भी नहीं थी। जो मैला था उसे भी पाइप्स के जरिए किले के बाहर किया जाता था। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही। और जहां तक बात की, जहां पर पूजा जी ने बात समाप्त की कि अवशेष, तो निश्चित रूप से ये जो अवशेष हैं वो हमारे सुनहरे इतिहास की थाती हैं और हमें इन्हें सहेज कर रखना होगा, इन पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि इसी से हमें हमारा समृद्ध इतिहास पता चलता है। फिलहाल इतिहास के पन्नों से मैं आज इतना ही। अपने अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एपिसोड में भी बने रहने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के
2: पन्नों। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
3: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम टेक गुरु।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे एआई पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि एआई क्या है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये है क्या, किसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है। अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कितना हम आप तक पहुंचा पाएं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MANIT मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने देने का मौका देने के लिए।
2: अनुग्रह जी, AI एक ऐसा विषय है जिस पर हम आपसे चाहेंगे रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कुछ आपके बारे में।
3: जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी अपने देश में, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणगान गा रही है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या विषय अछूता नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बोलते होंगे, इससे हमारा कोई उत्ता सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पे मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है
1: जी।
0: तब मैंने धीरे धीरे इस पर शोध करना चालू किया। तो मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग भू संचार प्रौद्योगिकी इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है, उसकी मदद से हम लोग जो अपने सेटेलाइट इमेजरी रहती है उसकी विवेचना करने का, उसके विश्लेषण करने में योगदान ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यही वो समय था जब मैंने अपनी आंखों से AI का अपने विषय में इस्तेमाल देखा, और उस इस्तेमाल को चूंकि मैं बाहरी था, कंप्यूटर साइंस से बाहर से आ रहा था, और मैंने देखा कि जब मेरे विषय में AI इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं यहाँ मैनेट में पढ़ता था तो किसी शहर की शहरी विकास योजना बनती है, शहर का एक नक्शा बनता है, तो 5-6 लोग 2-3 दिन बैठ के एक एक बिल्डिंग को फुटप्रिंट बनाते जाते हैं। मतलब शहर की सेटेलाइट इमेजरी इसरो से आएगी, एक एक सड़क को डिजिटाइज करेंगे, एक एक बिल्डिंग फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे, एक एक फीचर, नदी, नाले, पेड़। 5-6 लोगों की टीम 1-2 दिन लेती थी किसी भी बड़े शहर के लिए। AI की मदद से ये जो मैनुअल काम था डिजिटाइजेशन का, वो इसरो स्वयं ही करके दे देता था। मतलब वो अपने आप इमेज में, इसको कंप्यूटर विजन तकनीक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर, अपने आप ही फीचर डेलिनेट हो गया। आप सोचिए 4-5 लोगों के 2-3 दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये सिर्फ दो मशीनों के बीच में संवाद का जरिया नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक, उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय में नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने AI के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा, और फिर मेरी PhD जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है उस पे भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
1: तो AI क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
0: सर, ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नज़रों के सामने एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज़ था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में, पावर प्लांट्स में रहता था। आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। AI वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य यह है कि वो टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कंप्यूटर था, जैसे TV था, वो एक प्रोडक्ट था। लेकिन जैसे इंटरनेट है, दो कंप्यूटर्स के बीच में, चले इंटरनेट में मैं कहता हूँ कि कुछ हार्डवेयर रहता है, वायर्स या वायरल है, लेकिन AI जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे, वो AI कुछ क्षणों में, कुछ सेकेंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है, एक शहर का लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे, तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजिबल माध्यम, मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉन टेंजिबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैकएंड पे हो रहा है, जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। ChatGPT आपने बोला, अब ChatGPT आने से पहले लेखकों के, कॉपीराइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपीराइट दे दे, तो ये बैकएंड में ही संचालित हो रहा है, वही AI है।
1: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहे, एक हाँ। बात दूसरी चीज, उतना समय भी नहीं लग रहा।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या माने AI आने से लोगों के काम छिन गए?
0: देखिए, कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद, जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर, जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। डीटीपी का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे डीटीपी की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है, जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा। क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क, तो चैट जीपीटी उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहें तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज चैट जीपीटी में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए या उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ, ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रीडेवलप करना पड़ेगा। ये AI एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकेडमी है वहाँ पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में AI के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे जरूरी रहेगा 3 चीज़ों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक है और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
1: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं है?
0: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं। और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमें जो इसरो से शीट्स आई, सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी, वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी। हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करनी थी, मतलब वो नक्शे ले जाके साइट में चेक करना था कि कौन से फीचर सही है कौन से गलत है। तो जो प्रक्रिया 6 महीने लेती थी वो अब मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन में पूरी हो गई। हम लोग नक्शे लेके जाते थे, पेंसिल से मार्क करते थे और वही भेज के इसरो में अपडेट कर लेते थे। इस बचे हुए समय को हमने उस नगर का, इम्फाल की, अच्छे नगरी नियोजन, शहरी नियोजन कैसे किया जाए, कैसे हरियाली के बारे में क्वांटिफाइड स्टडी की जाए, उसमें लगाया। तो जहां समय बचता है वहां पे उसे दूसरे तरीके से उपयोग करने की सुविधा बढ़ जाती है। कई लोग जो AI विषय विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि वर्क डेज लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब जो 6 दिन या 7 दिन या 5 दिन काम होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे है, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीजों या तकनीक के प्रति उनकी पहुंच जो है वो और सुविधायुक्त हो जाएगी, तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है, तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
1: अनुग्रह जी, एक बात और, कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
0: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है, ये 1960 से चल रहा था। 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब चैट GPT लॉन्च हुआ, वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में चैट GPT हो गया है, जेमिनाई हो गया है, एयरटेल के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में, इतने ज्यादा लार्ज ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं। तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और भी मेरे साथी लोग थे। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे चर्चा हो रही थी, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश डाली, तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता
1: जी।
0: तो जब उनसे पूछा गया, क्योंकि उसमें मेंटरशिप होता है IIT में, डिप्रेशन में नहीं चले जाए, सुसाइड नहीं हो, तो संवाद अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट का, तो उसको बुला के पूछा भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन क्लास नहीं आ रहे हो, कुछ सब कुछ कुशल मंगल है, क्या समस्या है? तो बच्चे ने बोला सर जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं AI की मदद से इंटरैक्टिव तरीके से, एक घंटे का मान लीजिए क्लास है तो 15 मिनट में वो टॉपिक समझ जाता हूँ। और ऐसे टूल्स हैं, मैं भी अपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ाने के लिए कई ऐसे टूल्स यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कैसे इसको सरल भाषा में समझाया जा सके। तो बोले सर एक घंटे की क्लास का मटेरियल मैं 15 मिनट में कंज्यूम कर लेता हूँ और वो मेरे रिजल्ट में प्रोजेक्ट में दिख रहा है, बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए। तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है। तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई AI तो हमको भी रिप्लेस कर देगा। अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि 1-on-1 बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी AI घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है। आपके आजू बाजू भी कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं। आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया हो, उसके पास AI इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पे AI पेनिट्रेट नहीं करेगा,
1: वो DP में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
0: हाँ,
1: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अपन ने बात ही शुरू करी थी, विषय भी अपना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है।
0: हाँ।
1: उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी अभी, 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है, तो ये अंतर कैसा है? क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज़ को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
0: देखिए आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI मान लीजिए, आप ChatGPT खोल के उसमें लिखिएगा इमेजिन यू आर अ टीचर
1: जी,
0: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट
1: जी,
0: क्लास 5th स्टूडेंट करके देखिएगा, उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई एम ए स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से BA इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है कोई भी ChatGPT हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है। मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूं तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया। मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट उन लाइनों का, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है, और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द अगले वाक्य अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा। आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं, तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है, वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है, जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे पर टीचर, उतना बढ़िया टीचिंग पेडागोजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
1: जी।
0: तो ये AI का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा AI के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहाँ पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि AI समझता नहीं है शब्दों को, वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड, अगला लाइन, अगला पैराग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा है, तो AI कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो AI बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो AI सही प्रेडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है, जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि ChatGPT से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से, तो वो क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ा इसको हल्के पे लिया कि यार बताइए प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सही था, ChatGPT से अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि भैया एक ऐसे फोटो जनरेट करो जिसमें व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा, वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की फोटो बना ही नहीं सकता था। ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया था, शायद अब वो बता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जिन इमेजेस पे वो ट्रेन हुआ होगा या जिन कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रेन हुआ होगा उसमें उसके पास कोई लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हुए व्यक्ति की इमेज उसने देखी या समझी नहीं होगी, तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में चूंकि सब राइट हैंड से लिख रहे थे इसलिए वो भी राइट हैंड से क्रिएट कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है, अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज AI पर जो हमने बातचीत की उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर AI है क्या, AI कहां कहां अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु जिसमें आज हमने बात की AI पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया इसके मार्गदर्शन थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम टेक गुरु 90.8 MHz पर। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
3: अगर आपको 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये TB भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। TB किसी को भी हो सकता है। अगर आपको TB हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
4: कोई भी TB मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम TB की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। हम नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक TB खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड TB। TB हारेगा, भारत जीतेगा।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है TB की बीमारी। TB हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

0: शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।
1: तुलसी

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत विभूति।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
3: और मैं हूं मनीषा।
2: और आज हम अपने कार्यक्रम भारत विभूति में बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता के अग्रदूत, हिंदी कहानी के जनक माधव राव सप्रे की।
3: किसी भी महापुरुष को समझने के लिए उस युग को समझना आवश्यक है जिसमें उसने जन्म लिया और अपना जीवन जिया। माधव राव सप्रे का जन्म 1871 में हुआ। वो काल जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य की कठोर पकड़ में जकड़ा हुआ था। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद ब्रिटिश शासन और भी निरंकुश हो गया था। भारतीय समाज में एक और रूढ़िवाद, जाति भेद और अशिक्षा का अंधेरा था। दूसरी ओर पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से एक नई जागृति की लहर धीरे धीरे उठ रही थी।
2: हिंदी साहित्य उस काल में अपनी शैशवावस्था में था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य साहित्य को एक दिशा दी थी, किंतु हिंदी पत्रकारिता और कथा साहित्य अभी भी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मराठी, बंगाली और गुजराती में साहित्य और पत्रकारिता अपेक्षाकृत अधिक विकसित थी। हिंदी को एक ऐसे रचनाकार की आवश्यकता थी जो उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाए, और माधव राव सप्रे को उसी भूमिका के लिए नियति ने चुना था।
3: छत्तीसगढ़ का क्षेत्र उस काल में और भी पिछड़ा था। मध्य प्रांत के अंतर्गत ये क्षेत्र शिक्षा, उद्योग और राजनीतिक चेतना सभी दृष्टियों से अत्यंत पिछड़ा हुआ था। ऐसे में वहां से हिंदी की एक साहित्यिक पत्रिका निकालना और हिंदी कहानी की नींव रखना ये एक असाधारण साहस और दूरदर्शिता का प्रमाण था।
2: श्रोताओं, माधव राव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के पथरिया ग्राम में हुआ। उनका मूल परिवार महाराष्ट्र से आया हुआ मराठी ब्राह्मण परिवार था जो पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ की धरती पर बस गया था। पिता श्री दुर्गा प्रसाद सप्रे एक सात्विक और संस्कारी व्यक्ति थे। परिवार में संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन नियमित रूप से होता था।
3: दोस्तों, बालक माधव अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। गांव की छोटी सी पाठशाला में उन्होंने संस्कृत और हिंदी के साथ प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार पढ़ा हुआ पाठ उन्हें कंठस्थ हो जाता था। बचपन से ही उनमें पढ़ने की असाधारण लालसा थी। जो भी पुस्तक मिलती उसे वो अवश्य पढ़ते थे।
2: छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोकगीत, नदियां, जंगल और सामान्य जनजीवन ने उनके बाल मन पर गहरी छाप छोड़ी। इसलिए उनके लेखन में छत्तीसगढ़ की धरती और वहां के लोगों के प्रति एक गहरी ममता और आत्मीयता दिखाई देती है। पथरिया के उस छोटे से गांव की माटी ने एक ऐसे रत्न को जन्म दिया जो आगे चलकर हिंदी साहित्य का गौरव बना।
3: रायपुर से नागपुर तक प्रारंभिक शिक्षा के बाद माधव राव उच्च शिक्षा के लिए रायपुर आए। रायपुर उस काल में छत्तीसगढ़ का प्रमुख शैक्षिक और प्रशासनिक केंद्र था। यहाँ के राजकीय हाई स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। रायपुर में रहते हुए उनका संपर्क ऐसे शिक्षकों और विद्यार्थियों से हुआ जिनमें राष्ट्रीय चेतना का अंकुरण हो रहा था।
2: और इसके पश्चात वे नागपुर चले गए जो मध्य प्रांत की राजधानी थी और बौद्धिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र थी। नागपुर में उन्होंने उच्च शिक्षा जारी रखी। यहाँ उनकी भाषाई दक्षता और विस्तृत हुई। वे संस्कृत, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी चारों भाषाओं में पारंगत हो गए।
3: नागपुर में उनका परिचय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों और उनकी केसरी पत्रिका से हुआ। तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका उद्घोष उनके हृदय की गहराइयों में उतर गया। इसी दौरान उनकी रुचि पत्रकारिता की ओर भी जाने लगी। उन्होंने देखा कि मराठी में केसरी जैसी पत्रिका जनता को कितना जागृत कर सकती है और उनके मन में विचार आया कि हिंदी में भी एक ऐसी ही पत्रिका होनी चाहिए।
2: श्रोताओं, नागपुर में ही उन्होंने हिंदी और मराठी के साहित्यिक मंडलियों में भाग लेना शुरू किया। उस काल के अनेक विचारक और समाज सुधारक नागपुर में सक्रिय थे। इन सभी संपर्कों ने सप्रे जी की वैचारिक परिपक्वता को और गहरा किया। शिक्षा पूरी करने के बाद उनके सामने दो रास्ते थे, एक सरकारी नौकरी का सुरक्षित मार्ग, दूसरा साहित्य और पत्रकारिता का कंटकाकीर्ण किंतु सार्थक मार्ग। उन्होंने बिना किसी संकोच के दूसरा मार्ग चुना। यही उनकी महानता की असली पहचान थी।
3: माधवराव सप्रे को समझने के लिए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, एक ऐसी भूमि है जहाँ प्रकृति, लोक संस्कृति और आदिवासी परंपराओं का अद्भुत समन्वय मिलता है।
2: यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही रस है। यहाँ के लोगों में एक सहज सरलता और आत्मीयता है। सप्रे जी इसी माटी की संतान थे। उनके लेखन में छत्तीसगढ़ की ये सरलता और आत्मीयता झलकती है। उनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में जो विधवा स्त्री है, वो छत्तीसगढ़ के उसी सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करती है जो निर्धन है, निरीह है, किंतु अपने मातृभूमि से अपने बच्चों की तरह जुड़ा है।
3: छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं, लोक गीतों और लोक परंपराओं ने सप्रे जी को एक ऐसी भाषाई संवेदना दी जो पोथियों में नहीं मिलती। उन्होंने जब हिंदी में लिखा तो उनकी भाषा में एक लोक लय थी, एक धरती की मिट्टी की गंध थी जो उन्हें अन्य लेखकों से अलग और विशेष बनाती थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में उस काल में जो सामाजिक विषमताएं थीं, भूस्वामियों और किसानों के बीच की खाई, जमींदारी प्रथा का अत्याचार, स्त्रियों की दुर्दशा, इन सब ने सप्रे जी के सामाजिक सरोकारों को जन्म दिया। वो केवल साहित्यिक लेखक नहीं थे, वो एक सामाजिक चेतना के वाहक भी थे।
2: दोस्तों, सन 1900 में माधवराव सप्रे ने अपने घनिष्ठ मित्र रामराव चिंचोलकर के सहयोग से बिलासपुर जिले के पेंड्रा नामक स्थान से छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन आरंभ किया। ये हिंदी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली उन प्रारंभिक पत्रिकाओं में से एक थी जिसका स्वरूप पूर्णतः साहित्यिक और वैचारिक था। पेंड्रा उस काल में एक अत्यंत छोटा और दुर्गम स्थान था। वहां ना तो उन्नत मुद्रण सुविधाएं थी, ना ही पर्याप्त संख्या में पाठक। डाक व्यवस्था भी अनियमित थी, कागज और स्याही की आपूर्ति अनिश्चित थी। इन सब बाधाओं के बावजूद सप्रे जी ने हार नहीं मानी।
3: छत्तीसगढ़ मित्र, ये एक मासिक पत्रिका थी। इसमें साहित्य, इतिहास, दर्शन, समाज सुधार, राजनीति और विज्ञान विविध विषयों पर उच्च स्तर के लेख प्रकाशित होते थे। पत्रिका की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण थी ताकि सामान्य पाठक भी उसे समझ सके। इस पत्रिका ने पहली बार छत्तीसगढ़ के हिंदी पाठकों को एक ऐसा मंच दिया जहां वो अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और देश दुनिया की बातें जान सकते थे। ये केवल एक पत्रिका नहीं थी, ये एक आंदोलन था, हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान का आंदोलन।
2: छत्तीसगढ़ मित्र में केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं थी, इसमें समाज सुधार के लेख, भारत के इतिहास पर निबंध, किसानों और मजदूरों की दुर्दशा पर आलेख और राष्ट्रीय आंदोलन की खबरें भी प्रकाशित होती थीं। सप्रे जी चाहते थे कि पत्रिका केवल बुद्धिजीवियों तक सीमित ना रहे, वो आम पाठक तक भी पहुंचे। इसलिए उन्होंने भाषा को सरल रखा और विषयों को जीवन से जोड़ा।
3: पत्रिका में महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों पर भी लेख प्रकाशित होते थे, जो उस काल में अत्यंत साहसिक और प्रगतिशील कदम था। इसके साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के पुनरुद्धार पर भी सामग्री प्रकाशित होती थी।
2: श्रोताओं, आर्थिक कठिनाइयों और ग्राहकों की अपर्याप्त संख्या के कारण छत्तीसगढ़ मित्र केवल 3 वर्षों यानी 1900 से लेकर 1902 तक ही प्रकाशित हो सकी। ये सप्रे जी के जीवन का सबसे कठिन क्षण था। वो पत्रिका जिसे उन्होंने अपने सपनों के बीज से उगाया था, संसाधनों के अभाव में मुरझा गई, किंतु जो बीज उन्होंने बोया था वो कभी नष्ट नहीं हुआ। उससे प्रेरणा लेकर आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा और कर्मवीर जैसी पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता की परंपरा को आगे बढ़ाया।
3: पत्रिका के बंद होने का एक और कारण था, पेंड्रा जैसा दूर दराज स्थान, यहाँ से पत्रिका वितरित करना बहुत कठिन काम था। उस काल में रेल मार्ग और डाक सेवाएं सीमित थी, पत्रिका पाठकों तक समय पर नहीं पहुंच पाती थी। इन सब व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद जो 3 वर्ष छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुई, वो हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। छत्तीसगढ़ मित्र के 1901 के अंक में माधव राव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकार और विद्वान इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में स्वीकार करते हैं।
2: ये कहानी एक राजा और एक निर्धन विधवा की है। एक राजा के राज्य में एक निर्धन विधवा रहती है जिसकी छोटी सी झोपड़ी है। राजा उस भूमि को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। विधवा झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। बातचीत के दौरान विधवा राजा से कहती है कि वो जाने के लिए तैयार है, किंतु पहले उसे अपनी झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी दे दे, अपनी मातृभूमि की एक मुट्ठी माटी। राजा टोकरी भरवाता है, किंतु विधवा उस भरी हुई टोकरी को उठाने में असमर्थ हो जाती है। तब वो राजा से कहती है, यदि एक टोकरी भर मिट्टी का भार उठाना मेरे लिए इतना कठिन है, तो जिस राजा के ऊपर पूरी पृथ्वी का भार है, वो उसे कैसे उठा पाएगा?
3: बस ये कथन राजा को आत्मचिंतन पर विवश कर देता है और वो अपनी भूमि हत्याने का विचार छोड़ देता है। इस कहानी में मातृभूमि के प्रति प्रेम, सत्ता की निरंकुशता का विरोध, एक साधारण स्त्री की बुद्धिमता और नैतिक साहस जैसे गहरे विषय बड़े कौशल से उठाए गए हैं। भाषा सरल किंतु भावपूर्ण है, कथानक संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली है। शिल्प की दृष्टि से ये आधुनिक कहानी के सभी तत्वों को धारण करती है, एक केंद्रीय द्वंद, एक क्लाइमेक्स और एक अर्थपूर्ण अंत।
2: एक टोकरी भर मिट्टी एक स्वतंत्र मौलिक समकालीन यथार्थ से जुड़ी कहानी थी और इसलिए ये हिंदी कहानी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यदि हम एक टोकरी भर मिट्टी का साहित्यिक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इसमें आधुनिक कहानी के सभी आवश्यक तत्व उपस्थित हैं। ये कहानी उस काल की राजनीतिक परिस्थिति का भी रूपक है। जिस प्रकार राजा एक निर्धन विधवा की भूमि छीनना चाहता है, उसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य भारत की भूमि, संसाधन और स्वाभिमान छीन रहा था। ये समानांतर पाठकों को स्पष्ट था और इसलिए कहानी का प्रभाव केवल साहित्यिक नहीं राजनीतिक भी था।
3: एक टोकरी भर मिट्टी के अतिरिक्त माधवराव सप्रे ने हिंदी साहित्य को अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं दी। उनका संपूर्ण साहित्यिक योगदान कई आयामों में फैला हुआ है। सप्रे जी के निबंध हिंदी गद्य साहित्य की अनमोल धरोहर है। उन्होंने शिक्षा, समाज, धर्म, राजनीति, संस्कृति सभी विषयों पर गहन और विचारोत्तेजक निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों की विशेषता यह थी कि वो केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं थे, उनमें एक व्यवहारिक संदेश होता था, एक आह्वान होता था जो पाठक को निष्क्रियता से जगाकर सक्रियता की ओर प्रेरित करता था।
2: उन्होंने भारतीय इतिहास पर भी महत्वपूर्ण लेख लिखे। मराठा इतिहास और शिवाजी महाराज पर उनके लेख अत्यंत शोधपरक और प्रेरणादायक थे। शिवाजी की वीरता और राष्ट्र निर्माण की भावना उन्हें विशेष प्रिय थी। सप्रे जी ने अनुवाद को एक गंभीर साहित्यिक कार्य के रूप में अपनाया। उस काल में अनुवाद को प्रायः द्वितीय श्रेणी का कार्य माना जाता था, किंतु सप्रे जी जानते थे कि एक अच्छा अनुवाद मूल की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए नई भाषा में नई जान फूंकता है। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद किए, वे सभी इस कसौटी पर खरे उतरे।
3: उनके संपादकीय और समाचार टिप्पणियां हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उन्होंने पत्रकारिता में एक मानदंड स्थापित किया, तथ्यात्मक निष्पक्षता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण का समन्वय। छत्तीसगढ़ मित्र बंद होने के बाद माधव राव सप्रे स्थायी रूप से नागपुर आ गए। यहाँ उन्होंने साहित्यिक और पत्रकारिता की गतिविधियों को नए सिरे से संगठित किया।
2: नागपुर में उन्होंने हिंदी ग्रंथमाला नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी में उच्च कोटि के साहित्यिक, वैचारिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का प्रकाशन किया। उस काल में हिंदी में अच्छी पुस्तकों का घोर अभाव था। अंग्रेजी, मराठी और बंगाली में ज्ञान विज्ञान के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध थे, किंतु हिंदी पाठक उनसे वंचित थे। सप्रे जी ने हिंदी ग्रंथमाला के अंतर्गत न केवल मौलिक रचनाएं प्रकाशित की बल्कि अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथों के हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किए। इस प्रकार उन्होंने हिंदी पाठकों को भारतीय और विश्व विचार की मुख्य धारा से जोड़ा।
3: हिंदी ग्रंथमाला के अंतर्गत उन्होंने इतिहास, दर्शन, विज्ञान और राजनीति सभी विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की। इसके माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया कि हिंदी केवल काव्य और कथा की भाषा नहीं है, ये ज्ञान विज्ञान की भी भाषा हो सकती है और होनी चाहिए। ये उनकी एक दूरदर्शी सोच थी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। नागपुर में रहते हुए सप्रे जी ने हिंदी केसरी का संपादन किया। ये पत्रिका लोकमान्य तिलक की मराठी केसरी से भी प्रेरित थी और उसी राष्ट्रवादी चेतना की संवाहक थी। हिंदी केसरी में सप्रे जी ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया और जनता को स्वतंत्रता के लिए जागृत किया।
2: दोस्तों, इस पत्रिका के संपादकीय लेख अत्यंत तर्कपूर्ण, ओजस्वी और प्रभावशाली होते थे। वो पाठकों को न केवल सूचित करते थे बल्कि उनके भीतर एक आंदोलन की भावना जगाते थे। गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद एक महाकार्य माना जाता है। माधव राव सप्रे के अनुवाद कार्य में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भी यही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की अमर कृति श्रीमद् भगवत गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद।
3: गीता रहस्य तिलक ने मांडले जेल में लिखी थी जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कारावास की सजा दी थी। ये ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की एक क्रांतिकारी व्याख्या है जिसमें तिलक जी ने यह सिद्ध किया कि गीता केवल वैराग्य और संन्यास का उपदेश नहीं देती बल्कि कर्मयोग, सक्रिय और निर्भीक कर्म का संदेश देती है। ये व्याख्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक वैचारिक आधार प्रदान करती थी।
2: ये ग्रंथ मराठी में था। सप्रे जी ने इसका अनुवाद हिंदी में किया ताकि हिंदी क्षेत्र के पाठक भी इस महान विचार से लाभान्वित हो सकें। यह अनुवाद कार्य अत्यंत श्रमसाध्य था क्योंकि ग्रंथ में दार्शनिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों स्तरों पर गहन विचार विमर्श था, किंतु सप्रे जी की भाषाई दक्षता और वैचारिक गहराई ने इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस अनुवाद ने उत्तर भारत के हिंदी भाषी पाठकों तक तिलक जी के विचारों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: लोकमान्य तिलक और माधवराव सप्रे के बीच का संबंध केवल एक लेखक और उसके प्रेरणा स्रोत का संबंध नहीं था। ये दो समान विचार मनुष्यों के बीच का एक गहरा वैचारिक और भावनात्मक रिश्ता था। तिलक जी मराठी के माध्यम से जो काम कर रहे थे, सप्रे जी हिंदी के माध्यम से वही करना चाहते थे। जब तिलक जी जेल में थे तब भी सप्रे जी की कलम उनके विचारों की संवाहक बनी रही। गीता रहस्य का अनुवाद करना सप्रे जी के लिए केवल एक साहित्यिक कार्य नहीं था, ये उनकी श्रद्धा का, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का और उनके विचारों को हिंदी भाषी जनता तक पहुंचाने के संकल्प का भी प्रतीक था।
2: श्रोताओं, 1920 में तिलक जी की मृत्यु ने सप्रे जी को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने हिंदी केसरी में तिलक जी पर एक अत्यंत मार्मिक श्रद्धांजलि लेख लिखा जिसमें उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति दोनों की अभिव्यक्ति थी। माधवराव सप्रे केवल कलम के योद्धा नहीं थे, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में व्यावहारिक रूप से भी सक्रिय थे।
3: लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित होकर सप्रे जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के समर्थक बन गए। वे नरम दल की नीतियों से असंतुष्ट थे और मानते थे कि ब्रिटिश शासन से केवल विनम्र याचना से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसके लिए जनजागृति, असहयोग और दृढ़ संघर्ष आवश्यक है।
2: 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का सप्रे जी ने खुलकर समर्थन किया। उनकी पत्रिकाओं में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरक लेख प्रकाशित होते थे। वे स्वयं स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे और अपने परिचितों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते थे।
3: बंगाल विभाजन पर सप्रे जी का कहना था कि ये विभाजन केवल एक प्रांत का विभाजन नहीं है, ये भारत की एकता को तोड़ने का षड्यंत्र है। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो इसका विरोध करे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के पाठकों को उस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जो मुख्यतः बंगाल और महाराष्ट्र में केंद्रित था।
2: सप्रे जी की राष्ट्रवादी लेखनी ने ब्रिटिश प्रशासन को बार बार नाराज किया। उनकी पत्रिकाओं पर निगरानी रखी जाती थी और उन पर दबाव डाला जाता था, किंतु वो कभी झुके नहीं। वे कहते थे कि अन्याय के सामने मौन रहना सबसे बड़ा कायरपन है। उन्होंने एक बार कहा था, हम कलम उठाते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि लिखना हमारा काम है, हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि चुप रहना गुनाह होगा। ये वाक्य उनके पत्रकारिता दर्शन का सार है।
3: माधवराव सप्रे और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बीच का संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास का एक अत्यंत प्रेरणादायक अध्याय है। माखनलाल चतुर्वेदी, जो एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध थे, सप्रे जी को अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानते थे। सप्रे जी ने माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिभा को बहुत प्रारंभ में ही पहचान लिया था। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया, उनकी रचनाएं अपनी पत्रिकाओं में प्रकाशित की और उन्हें हिंदी साहित्य की मुख्य धारा से जोड़ा। माखनलाल जी की पुष्प की अभिलाषा जैसी कालजयी कविताओं के पीछे सप्रे जी जैसे गुरु का आशीर्वाद था।
2: दोस्तों, इस संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं था, दोनों एक ही स्वप्न के सहयात्री थे। दोनों हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना चाहते थे और दोनों साहित्य को स्वतंत्रता संग्राम का अस्त्र मानते थे। सप्रे जी हिंदी को केवल एक भाषा नहीं, राष्ट्रीय एकता का सूत्र मानते थे। उनका तर्क था कि भारत की विविधता में एकता लाने के लिए एक ऐसी भाषा आवश्यक है जो सर्वाधिक लोगों द्वारा समझी और बोली जाए, और वो भाषा हिंदी ही है। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलनों में और विभिन्न मंचों पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की।
3: सप्रे जी चाहते थे कि हिंदी की भाषा सरल, सहज और जनउपयोगी हो। वे संस्कृत की क्लिष्ट शब्दावली से लदी भाषा के विरोधी थे। उनका मानना था, जो भाषा आम आदमी की समझ में ना आए वो राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। इसलिए उनके अपने लेखन में एक अद्भुत सरलता और स्पष्टता मिलती है। वे हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं का प्रतिद्वंदी नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल सभी भाषाएं एक ही सांस्कृतिक परिवार की अलग अलग शाखाएं हैं। इसलिए उन्होंने मराठी से हिंदी में अनुवाद किए और मराठी साहित्यकारों से प्रेरणा भी ली।
2: सप्रे जी ने पत्रकारिता की भाषा को एक नया आयाम दिया। उन्होंने दिखाया कि पत्रकारिता की भाषा साहित्यिक भाषा से कम प्रभावशाली नहीं हो सकती, बशर्ते उसमें स्पष्टता हो, तर्क हो और जनता के प्रति प्रतिबद्धता हो। उनके संपादकीय लेख आज भी हिंदी पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन योग्य हैं। माधवराव सप्रे की पत्रकारिता केवल एक व्यवसाय नहीं थी, ये एक मिशन था, एक धर्म था। उनके पत्रकारिता दर्शन के कुछ मूल सिद्धांत थे जो उनके समस्त लेखन और संपादन में परिलक्षित होते हैं।
3: श्रोताओं, सप्रे जी हमेशा मानते थे कि पत्रकार का पहला धर्म सत्य है। किसी भी दबाव में, किसी भी प्रलोभन में सत्य से समझौता नहीं होना चाहिए। उनकी दृष्टि में समाचार वो है जो सत्य हो, न कि वो जो किसी को प्रसन्न करे। उनके लिए पत्रिका एक सामाजिक दायित्व था। पाठक केवल ग्राहक नहीं थे, वो उनके बंधु थे, उनके देशवासी थे। उनके प्रति उनकी एक जवाबदेही थी। पाठक को सूचित करना, शिक्षित करना और प्रेरित करना, ये तीनों संपादक के दायित्व थे।
2: प्रत्येक समाचार और लेख को वे राष्ट्रीय हित की कसौटी पर परखते थे। क्या ये देश की सेवा करेगा, क्या ये जनता को जागृत करेगा, यही उनका मापदंड था। स्वतंत्र और निर्भीक अभिव्यक्ति वे किसी के दबाव में नहीं आते थे, न सरकार का, न धनिक वर्ग का, न रियासतों का। उनकी कलम स्वतंत्र थी और वे इसे सदैव स्वतंत्र रखना चाहते थे।
3: माधवराव सप्रे एक जागरूक सामाजिक चिंतक भी थे। वो जाति प्रथा और अस्पृश्यता को भारतीय समाज का सबसे बड़ा कलंक मानते थे। उन्होंने अपने लेखों में इस विषय पर और अधिक स्पष्ट और निर्भीक रूप से लिखा। उनका कहना था कि जब तक समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता रहेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता संभव नहीं है और स्वतंत्रता का स्वप्न अधूरा रहेगा।
2: दोस्तों, सप्रे जी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि स्त्री की शिक्षा का सीधा संबंध राष्ट्र के भविष्य से है। एक शिक्षित माँ अपने बच्चों को संस्कारवान और देशभक्त बना सकती है। उन्होंने अपने लेखन में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बार बार आग्रह किया।
3: साहित्यिक दृष्टि से माधवराव सप्रे का योगदान केवल विषय वस्तु तक सीमित नहीं था, उनका गद्य शिल्प भी अत्यंत परिष्कृत था। उनकी भाषा में एक विशेष ओज और तेजस्विता थी। वाक्य विन्यास सुगठित और अर्थपूर्ण होते थे। वो अनावश्यक शब्दों के उपयोग से बचते थे। प्रत्येक शब्द अपना भार उठाता था और उनकी भाषा में मराठी और संस्कृत का सुंदर समन्वय भी मिलता था।
2: उनके निबंधों में तर्क, भाव और उदाहरण का अद्भुत संयोग मिलता है। वे किसी भी विषय को केवल सैद्धांतिक स्तर पर नहीं छोड़ते थे, उसे व्यावहारिक उदाहरणों और तर्कों से जीवंत बना देते थे। उनके संपादकीय लेख अत्यंत प्रभावशाली होते थे। वे पाठक की बुद्धि और भावना दोनों को एक साथ छूते थे। उनके संपादकीयों में एक सुनिश्चित राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण था, जो पाठक को सोचने और कुछ करने के लिए प्रेरित करता था।
3: माधवराव सप्रे का निजी जीवन अत्यंत सादा और संघर्षपूर्ण था। साहित्य और पत्रकारिता के लिए समर्पण का अर्थ था आर्थिक सुरक्षा का त्याग। पत्रिकाओं के प्रकाशन में निरंतर आर्थिक घाटा होता था। ग्राहकों की संख्या अपेक्षित नहीं बढ़ती थी। विज्ञापन की संभावनाएं नगण्य थी। मुद्रण व्यय बढ़ता जा रहा था। ऐसे में घर का खर्च चलाना भी कठिन हो जाता था।
2: किंतु सप्रे जी ने कभी अपनी कलम को बेचा नहीं। उन्होंने कभी किसी रियासत या धनिक वर्ग का पक्ष लेने के बदले आर्थिक सहायता नहीं ली। वे कहते थे, जो कलम बिक जाए वो कलम नहीं व्यापार है। ये उनके चरित्र की महानता थी। उनके परिवार ने भी उनकी साधना में निरंतर साथ दिया। उनकी पत्नी ने परिवार को कठिन परिस्थितियों में भी संभाला और सप्रे जी को अपने कार्य में लगे रहने का अवसर दिया।
3: माधवराव सप्रे का प्रभाव अपने समकालीन और परवर्ती साहित्यकारों पर बहुत गहरा था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी उनके सबसे प्रमुख शिष्य और अनुयायी थे। चतुर्वेदी जी ने स्वयं कहा कि सप्रे जी ने उन्हें न केवल साहित्य में बल्कि जीवन दर्शन में भी मार्गदर्शन दिया। माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय के अभिलेखों से पता चलता है कि अनेक हिंदी पत्रकार और साहित्यकार उनसे प्रेरणा लेने के लिए उनके पास आते थे।
2: दोस्तों, उनकी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक पूरी पीढ़ी को हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित किया। उस पत्रिका को पढ़कर जो बालक बड़े हुए, उनमें से अनेक आगे चलकर हिंदी के लेखक, पत्रकार और शिक्षक बने। जीवन के अंतिम वर्षों में माधवराव सप्रे का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा। वर्षों की अथक मेहनत, अनिद्रा, आर्थिक तनाव और राष्ट्रीय चिंताओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, किंतु उनकी जिजीविषा और कर्मनिष्ठा अंत तक बनी रही। अस्वस्थ होने पर भी वे लिखते रहे, सोचते रहे और हिंदी के भविष्य की चिंता करते रहे। उनके अंतिम दिनों में उनके निकट जो लोग थे, उन्होंने बताया है कि वे अंत तक हिंदी और भारत की स्वतंत्रता की चर्चा करते रहते थे।
3: अप्रैल 1926 को नागपुर में उनका निधन हो गया। वो मात्र 54 वर्ष की आयु में संसार से चले गए। उनके जाने से हिंदी साहित्य और पत्रकारिता को ऐसी अपूर्णीय क्षति हुई जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जब वो गए तो उनके पास भौतिक संपत्ति नाम मात्र को भी नहीं थी, किंतु उन्होंने हिंदी साहित्य को जो अमूल्य विरासत दी वो अनंत काल तक अक्षुण्य रहेगी।
2: सप्रे जी के निधन की सूचना मिलते ही हिंदी साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने उनके निधन पर जो शब्द लिखे, वे आज भी पढ़ने वालों की आंखें नम कर देते हैं। उन्होंने कहा था, सप्रे जी चले गए, हिंदी की एक मशाल बुझ गई, किंतु जो प्रकाश उन्होंने फैलाया वो कभी नहीं बुझेगा।
3: अनेक हिंदी पत्रकारों ने उनके निधन पर विशेष अंक निकाले और उनके जीवन कार्य को श्रद्धांजलि दी। ये इस बात का प्रमाण था कि जिस हिंदी साहित्य की सेवा में सप्रे जी ने अपना जीवन अर्पित किया था, वो साहित्य जगत उनके महत्व को भली भांति जानता और मानता था। सप्रे जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान की स्थापना की गई। ये संग्रहालय हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का एक अनमोल संरक्षण केंद्र है।
2: दोस्तों, प्रतिवर्ष 19 जून को सप्रे जी की जन्म जयंती पर यहाँ विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को माधवराव सप्रे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में माधवराव सप्रे का स्थान कई दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट है।
3: हिंदी साहित्य के इतिहासकार प्रायः भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच के संक्रमण काल में माधवराव सप्रे को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद ने जो नींव रखी थी उसे आगे बढ़ाने में सप्रे जी जैसे लेखकों की अहम भूमिका थी।
2: महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को जो मानक स्वरूप दिया था उस दिशा में सप्रे जी छत्तीसगढ़ मित्र से पहले ही काम कर रहे थे। इस अर्थ में सप्रे जी एक अग्रदूत थे जिन्होंने द्विवेदी युग की जमीन तैयार करने में योगदान दिया।
3: जब हम हिंदी कहानी का इतिहास लिखते हैं तो प्रायः प्रेमचंद से शुरुआत की जाती है, किंतु प्रेमचंद से पहले सप्रे जी ने जो बीज बोया था उसकी अनदेखी नहीं होना चाहिए। एक टोकरी भर मिट्टी और प्रेमचंद की पहली कहानी सौथ के बीच 6 वर्षों का अंतर है। यह अंतर बताता है कि सप्रे जी प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानी की जमीन तैयार कर रहे थे।
2: और दोनों में एक समानता भी है, दोनों ने अपनी कहानियों में सामान्य जन की पीड़ा और संघर्ष को केंद्र में रखा। दोनों ने साहित्य को समाज परिवर्तन का माध्यम माना। इस दृष्टि से सप्रे जी को प्रेमचंद के पूर्वज और पथ प्रदर्शक के रूप में देखा जाना चाहिए।
3: माधवराव सप्रे ने न केवल हिंदी साहित्य को बल्कि छत्तीसगढ़ को भी एक साहित्यिक पहचान दी। उनसे पहले छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य के मानचित्र पर लगभग अदृश्य था। छत्तीसगढ़ मित्र ने इस क्षेत्र को हिंदी साहित्य का एक सक्रिय केंद्र बनाया। आज छत्तीसगढ़ में जो समृद्ध हिंदी साहित्य परंपरा है उसके मूल में सप्रे जी का ही योगदान है। माधवराव सप्रे जी की जयंती को आज के डिजिटल और व्यावसायिक पत्रकारिता के युग में और भी प्रासंगिक रूप में देखा जाना चाहिए।
2: सप्रे जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि पत्रकारिता एक मिशन है, एक व्यापार नहीं। उन्होंने पत्रकारिता को सत्य, न्याय और जनसेवा के साधन के रूप में देखा और इस दृष्टि से कभी विचलित नहीं हुए। हिंदी के संदर्भ में भी उनकी दृष्टि आज प्रासंगिक है, जब हिंदी पर अंग्रेजी के वर्चस्व का खतरा बना हुआ है और हिंदी का व्यवसायीकरण हो रहा है, तब सप्रे जी की वो दृष्टि याद आती है जो हिंदी को एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय

0: केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक युग थे, एक चेतना थे, एक आंदोलन थे। हिंदी की प्रथम कहानी का जो बीज उन्होंने 1901 में बोया था, वो आज वट वृक्ष बन चुका है और उसकी छाया में हिंदी साहित्य की अनंत शाखाएं फल फूल रही हैं।
1: हिंदी भाषा और साहित्य के प्रत्येक अनुरागी को इस महान विभूति के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हिंदी का आज का रूप संभव नहीं था। पथरिया की उस माटी को प्रणाम जिसने ऐसा रत्न दिया, उस कलम को प्रणाम जो जीवन भर अडिग रही, उस दृष्टि को प्रणाम जो एक खंडित और पराधीन भारत में भी स्वतंत्र और विकसित हिंदी का भी स्वप्न देखती रही। माधवराव सप्रे अमर हैं, उनकी कलम अमर है, उनकी दृष्टि अमर है और उनका स्वप्न अमर है।
0: तो श्रोताओं, आज हमने बात की है माधवराव सप्रे की। कार्यक्रम भारत विभूति में आज अपना सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर किसी भारत विभूति के बारे में आपको बताएंगे, उनके जीवन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपसे इजाजत लेने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा का, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा
1: और मनीषा।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
3: मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: ये मेरा इंडिया।
3: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं गांधी भवन में, जहां 8 जुलाई को परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विज्ञान को लेकर

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए इस कार्यक्रम में।
1: या जो मानविकी है, या मैं तो ज्यादा आप छोड़ दीजिए साहित्यिक आलोचना है। अगर साहित्यिक आलोचना, आज क्यों लोग ये कहते हैं कि आलोचना खरी नहीं उतर रही है, क्योंकि वो अगर सवालों का जवाब नहीं दे पाती, वो ये नहीं बता पाती कि आज की कविता क्या है, तो वो जो कंटेस्टेबिलिटी होती है यानी विवाद के लिए और उसमें विवाद को स्वीकार करना पड़ता है। तो दूसरी इसी से बात, तीसरी जो बात है विज्ञान और बाकी जो दूसरी चीजें उनके बीच में एक और एक समाज विज्ञान नाम का क्षेत्र है, और समाज विज्ञान बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से प्रकृति विज्ञान नहीं, उसमें व्याख्या की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और जैसे ही हम आते हैं विज्ञान क्या है, तो एक बड़ी मुसीबत यह हो जाती है कि विज्ञान क्या है ये ना फिजिक्स का सवाल है, ना केमिस्ट्री का सवाल है, ना मैथमेटिक्स का सवाल है, ना एस्ट्रोनॉमी का सवाल है, ये किसी विज्ञान का सवाल नहीं है। विज्ञान क्या है ये एक सामान्य दार्शनिक सवाल है। और इसलिए जो ये जो एक बात है कि इसलिए ये जानना, आखिरी बात इसमें मैं ये कहूंगा कि किसी दूसरी किताब जो हम लोग दो बनाते हैं, ये वैज्ञानिक है और ये अवैज्ञानिक, क्योंकि गैर वैज्ञानिक की कैटेगरी अवैज्ञानिक की कैटेगरी से अलग, जो अवैज्ञानिक है वो अलग चीज है, जो गैर वैज्ञानिक है वो अलग चीज है, जो वैज्ञानिक है वो अलग चीज है, जो विज्ञान की आलोचना है जिसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश है, और जैसे विज्ञान का वर्ग चरित्र खुद साइंटिस्ट ने लिखा है, वो एक अलग चीज है, और विज्ञान विरोध ये बिल्कुल एक

20वीं सदी की शुरुआत तक ये तय हो चुका था कि या कम से कम विज्ञान के दार्शनिक ये मानते थे कि विज्ञान की बुनियाद जो है वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म में, और जिसको मैं हिंदी में इस तरह से कहता हूँ कि आंखों देखे और जहन में घोटे, यानी कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा चीजों को देखते हैं प्रयोगों के द्वारा, और फिर उसे तर्क के आधार पर हम धीरे धीरे एक सिद्धांत की तरफ हमारी एक यात्रा होती है। और वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे तैयार होता है ये अपने आप में, मतलब ये सारी चीजें बहुत कम वक्त में मतलब हम नहीं इस पर चर्चा कर सकते, पर पॉपर ने ये सवाल उठाया कि नहीं ये बात नहीं बनती। मैंने ये कहानी इसमें लिखी है कि नाजी प्रताड़ना की वजह से रुडोल्फ कार्नाप और कार्ल पॉपर ये दोनों जर्मनी से भाग कर चले गए थे, कार्नाप चले गए अमेरिका में। और तो कार्नाप ने ये कहा कि नहीं, विज्ञान में वेरिफिकेशन यानी प्रमाणित करना किसी भी प्राकृतिक घटना को देखना, उसको दोबारा मतलब बार बार उसे प्रमाणित करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये प्रमाण के तरीकों को हम कैसे जाने इस पर उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कि केवल प्रमाण कर पाना ही अपने आप में बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तर्कशीलता जिसको लेकर बाद में उत्तर आधुनिक चिंतकों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि हर तरह की तर्कशीलता हो सकती है, वैज्ञानिक तर्कशीलता कोई एक ही मतलब अपने आप में अनोखी तर्कशीलता नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम ऐसी किसी ऐसी कोई कल्पना कर सकते हैं जिसमें किसी सिद्धांत को गलत साबित किया जा सके। इसको उन्होंने फॉल्सिफाइबिलिटी कहा, फॉल्सिफिकेशन यानी गलत साबित करना, फॉल्सिफाइबिलिटी यानी उसकी गलत साबित करने की संभावना या गलत साबित करने के तरीके क्या हो सकते हैं।

डिमार्केशन जिसपे काम ऊपर का काम था कि साइंस को दूसरे नॉन साइंस से कैसे अलग किया जाए, और वहीं पर फिर एक जो लाटू ने एक प्रश्न अपनी किताब में उठाया है वो है स्यूडो साइंस, क्योंकि साइंस और नॉन साइंस में तो साहित्य कला वगैरह दर्शन वगैरह बहुत सारी चीजें, एक स्यूडो साइंस नाम की चीज भी है। तो मैं एक चर्चा की शुरुआत करने के लिए और इस प्रश्न के बाद में आप लोगों से भी एक दरख्वास्त रहेगी कि अपने आप सवाल तैयार करके रखें, और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो साइंस और उससे भी मतलब जुड़े रहे हैं, और जितने सटीक और संक्षिप्त मतलब वो प्रश्न होंगे उतना अच्छा होगा। तो मैं लखनऊ से कि साइंस और सूडो साइंस इसकी डिमार्केशन क्या है, और ये नॉन साइंस से या गैर विज्ञान से कैसे अलग है।

पुर्तगाल के शाही अनाथ ओरफास डेल री। क्या आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली साम्राज्य ने एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शाही अनाथों को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? लिस्बन के बंदरगाहों से निकलने वाली ये युवतियां केवल भाग्य की तलाश में नहीं थी, बल्कि वे एस्टादो द इंडिया को स्थायी बसावट के माध्यम से स्थिर करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा थीं। ये ओरफास डेल री अक्सर उन मृत रईसों या सैनिकों की बेटियां होती थीं जिन्होंने पुर्तगाली क्राउन की सेवा की थी। क्राउन ने हर साल लगभग 10 ऐसी युवतियों को एशिया भेजने का प्रावधान किया था। उनके विवाह और भविष्य के पतियों को जमीन से जोड़ने के लिए राजा उन्हें दहेज के रूप में प्राजो प्रदान करते थे। प्राजो अनिवार्य रूप से भूमि अनुदान या राजस्व अधिकार थे जो मुख्य रूप से प्रोवेंशिया दो नॉर्ते उत्तरी प्रांत में केंद्रित थे। उत्तरी प्रांत में वसई, दमन और चौल जैसे क्षेत्र आते थे। सन 1530 के दशक में इन क्षेत्रों को दो कारणों से हासिल किया गया था। पहला, गोवा के लिए खाद्य आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित करना और दूसरा, रईसों की जमीन की भूख को शांत करना। इन अनाथों को दहेज में प्राजो देकर क्राउन ने कासादोस फ्रोंटेइरोस अर्थात विवाहित सीमा रक्षकों का एक वर्ग तैयार किया। इन जमींदारों के लिए ये अनिवार्य था कि वे गांव के राजस्व के बदले अपने जमीन की रक्षा के लिए आर के बसियर्स यानी बंदूकधारियों की एक छोटी सी सेना बनाए रखें। पुर्तगाल में मुर्गादियो कानून के तहत केवल सबसे बड़ा बेटा ही पारिवारिक संपत्ति का वारिस होता था। छोटे बेटे और अवैध संतानें अक्सर अतिरिक्त संसाधन बन जाते थे, जिन्हें साम्राज्य की सीमाओं पर भेज दिया जाता था। एक शाही अनाथ से शादी करना इन नए पुरुषों के लिए प्रतिष्ठा का द्वार था। इसने उन्हें प्राजेरो लॉर्ड्स में बदलने का मौका दिया। उत्तरी प्रांत में ये प्रणाली पहले से मौजूद स्थानीय अधिकारों जैसे भारतीय इस्लामी एकता या राजस्व असाइनमेंट के ऊपर आरोपित की गई थी। ये प्राजो अक्सर कई पीढ़ियों के लिए दिए जाते थे। इस व्यवस्था ने एक अनूठा सामाजिक परिदृश्य बनाया जहां पुर्तगाली महिलाएं दहेज अधिकारों की प्राथमिक धारक होने के नाते इन बस्तियों का आधार बन गईं। हालांकि ओरफास डेल री की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उनका प्रभाव गहरा था। उन्होंने भारतीय तट पर एक सामंती व्यवस्था के उदय को सुगम बनाया जहां पुर्तगाली परिवार एशियाई जमींदारों की तरह रहने लगे। ये बदलाव साम्राज्य के शुरुआती समुद्री व्यापारिक फोकस से हटकर भूमि आधारित स्थिरता की ओर एक बड़ा कदम था।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये है रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। पेश है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम और कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित हमारा कार्यक्रम काव्य गुंजन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का ऐसा गुच्छा जिसकी हर पंखुड़ी में इतिहास की धड़कन बसती है, जहां शब्द दीपक बनकर जलते हैं और भावनाएं गंगा जल सी मन को पवित्र करती चली जाती हैं। यहां कविताएं केवल सुनाई नहीं जाती, वे समय के बंद कपाट खोलकर मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देती हैं।
1: श्रोताओं, पिछले अंक में आपने रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 8, 9 और 10 का काव्य पाठ सुना, जहां कर्ण की साधना उस दीपक की तरह दिखाई दी जो आंधियों के बीच भी अपनी लौ बचाए रखता है। महेंद्र पर्वत की नीरवता में बैठा वह सूर्य पुत्र अपने भाग्य से नहीं, स्वयं से युद्ध कर रहा था। गुरु परशुराम के चरणों में बैठकर वह केवल अस्त्रों का ज्ञान नहीं पा रहा था, वह अपने जीवन की टूटी हुई तकदीर को नए पुरुषार्थ से गढ़ने में लगा था। किंतु श्रोताओं, कहा भी तो गया है कि सत्य की डोरी चाहे जितनी लंबी हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। नियति ने भी वहीं अपना दांव चला। विषधर का दंश सहकर भी कर्ण की पलकों का न हिलना उस अग्नि का प्रमाण बन गया जो साधारण मनुष्य में नहीं जलती, और उसी क्षण गुरु परशुराम के सामने वह रहस्य खुल पड़ा जिसे कर्ण अपने प्राणों की तरह छिपाए फिर रहा था।
0: श्रोताओं, विश्वास जब टूटता है तो उसकी प्रतिध्वनि पत्थरों में नहीं, हृदय में सुनाई देती है। परशुराम के भीतर भी यही तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर उनका अटल व्रत, दूसरी ओर पुत्र व्रत प्रिय शिष्य के प्रति उमड़ता वात्सल्य। मानो धर्म और करुणा आमने सामने खड़े हों और दोनों ही पीछे हटने को तैयार ना हो। और कर्ण वो अपराधी की तरह नहीं, तपस्वी की भांति खड़ा है। उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल ये पीड़ा है कि जिसने उसे अपने हृदय का स्थान दिया उसी के विश्वास को वो अनजाने में छल बैठा। यही कारण है कि ये प्रसंग केवल शाप की कथा नहीं बनता, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले उस महासंग्राम का स्वरूप ले लेता है, जहां प्रेम और प्रतिज्ञा दोनों अपनी अपनी कीमत मांगते हैं।
1: श्रोताओं, समय का रथ अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां शब्द अंगार बनेंगे, आंखें अश्रु से भरेंगी और नियति अपना कठोर निर्णय सुनाएगी। गुरु का क्रोध वज्र की तरह गिरेगा, किंतु उसके भीतर स्नेह की धधकती राख भी दिखाई देगी। और कर्ण वह टूटकर भी झुकेगा नहीं, क्योंकि उसके भीतर का स्वाभिमान हिमालय की चोटी की तरह अडिग है। तो आइए अब बढ़ते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 11, 12 और 13 की ओर, जहां करुणा महाकाव्य बनती है, वियोग इतिहास रचता है और गुरु शिष्य का ये संबंध मानवता की सबसे उज्जवल गाथाओं में परिवर्तित हो जाता है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं दूसरे सर्ग के भाग 11 का काव्य पाठ और चर्चा।
0: तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या पता था लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सरखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं, लेकिन कहां उतारूं मैं।
1: इस पद पर बोला कर्ण,
2: दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को, अनल आज है गुरु ज्ञानी, परसाई ये अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग कर जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। दंड भोग कर जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा।
1: परशुराम ने कहा,
0: कर्ण तू बेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है ये मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा, उसे भूल तू जाएगा, उसे भूल तू जाएगा।
1: परशुराम आहत हैं, उन्हें छल से अधिक उस विश्वास के टूटने की पीड़ा है जिसे उन्होंने पुत्रवत संजोया था। और कर्ण अपराधी सा नहीं तपस्वी सा खड़ा है, दंड को दया समझकर स्वीकारने को तत्पर। श्रोताओं, वे बड़े खरे लोग थे जो अपने धर्म से तनिक भी डिगते नहीं थे, प्रेम को अपने स्वार्थ सिद्धि की ढाल नहीं बनाते थे। आज हम सभी इन मानव मूल्यों और नैतिक बल से कितनी दूर निकल चुके हैं। यही श्राप की त्रासदी है जब स्नेह को भी धर्म के आगे झुकना पड़ता है।
0: श्रोताओं, कर्ण पर श्राप का वज्र गिरा, पर उसके साथ आशीर्वाद की धूप भी झर पड़ी। कर्ण व्याकुल है, उसे जीवन नहीं साधना के निष्फल हो जाने का दुख साल रहा है। और परशुराम, वे भी पत्थर नहीं है, व्रत की मर्यादा उन्हें कठोर बनाती है, पर भीतर का स्नेह बार बार आंखों तक आ जाता है। वे शस्त्र का तेज हरते हैं, पर कर्ण के पौरुष पर विश्वास भी जताते हैं, दंड देते हैं, पर भविष्य की कीर्ति का वरदान भी। यहीं भाग 12 की भूमि तैयार होती है जहां शाप केवल क्षति नहीं चरित्र की अग्नि परीक्षा बन जाता है। गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने धर्म के प्रति अडिग हैं, पर दोनों के हृदय भीग रहे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 12 का काव्य पाठ।
1: कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे,
3: हाय हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारूढ़, लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं।
1: परशुराम ने कहा,
0: कर्ण ये शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है, रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से नवीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन, तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओ। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहां पर हम अभिशप्त किसी जन को, हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन, व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो, व्रत मेरा मत भंग करो, व्रत मेरा मत भंग करो।
1: यह आत्मसंयम की चरम स्थिति है। गुरु स्वयं को कठोर बना रहे हैं ताकि उनका व्रत न टूटे। यह विछोह करुण और उदात्त दोनों है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूल गुरुह कृपा। अर्थात गुरु मूर्ति का ध्यान करना ही सभी ध्यानों का मूल है। गुरु चरणों की पूजा करना ही सभी पूजाओं का मूल है। गुरु का वाक्य ही सभी मंत्रों का मूल है और गुरु की कृपा ही मोक्ष के समान है। श्रोताओं, अब यदि हम इस श्लोक की भावना को परशुराम और कर्ण के प्रसंग से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि परशुराम के भीतर केवल क्रोध नहीं था, वहां गुरु का वही विराट स्वरूप उपस्थित था। उन्होंने श्राप दिया क्योंकि व्रत और धर्म उनके लिए सर्वोपरि थे, किंतु कर्ण के प्रति उनका स्नेह कम नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तेज हर लिया पर उसकी कीर्ति का वरदान भी दिया। यह द्वंद नहीं गुरु हृदय की व्यापकता है। कर्ण एकलव्य से कम नहीं था गुरु भक्ति में। श्रोताओं, कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उसका कवच कुंडल नहीं, उसकी गुरु भक्ति है। जब सत्य उजागर हुआ, जब श्राप मिला, तब भी उसने दृष्टि उठाकर प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि वह गुरु चरणों में झुक गया। जिसने उसे दंड दिया उसी के प्रति उसका सम्मान तनिक भी कम नहीं हुआ। यही तो शिष्यत्व की पराकाष्ठा है, जहां अहम नहीं केवल समर्पण बोलता है। यही गुरु भक्ति कर्ण को महान बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने गुरु का मान रखे वही सच्चा शिष्य कहलाने योग्य होता है।
0: आज के समय में हम देखते हैं कि कई स्थानों पर शिक्षक पात्र और कुपात्र का विवेक खो बैठते हैं। कहीं स्वार्थ, कहीं पक्षपात, कहीं निजी लाभ शिक्षा के पवित्र संबंध को कलुषित कर देते हैं। गुरु का स्थान तभी ऊंचा है जब वो निष्पक्ष हो, न्यायप्रिय हो और शिष्य के उत्थान को अपने अहम से ऊपर रखे। परशुराम का यह प्रसंग हमें स्मरण कराता है कि गुरु का धर्म कठोर हो सकता है पर उसका हृदय करुणामय होना चाहिए। जहां व्रत और प्रेम साथ चलें, वहीं सच्चा शिक्षण जन्म लेता है।
1: श्रोताओं, यही से द्वितीय सर्ग के अंतिम चरण की महाकाव्यात्मक भूमिका प्रकट होती है। श्राप और आशीष, त्याग और करुणा दोनों मिलकर इस क्षण को दिव्य वियोग में रूपांतरित कर देते हैं। गुरु शिष्य को दूर भेजते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रेम का परम रूप विरह ही होता है। आइए अब बढ़ें उस अंतिम प्रसंग की ओर, जहां काल का रथ अविराम है और चलना ही नियति। आइए अब हम बढ़ते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के अंतिम भाग की ओर, भाग 13, जहां करुणा महाकाव्य बनती है और वियोग इतिहास रचता है। परशुराम कहते हैं,
0: आह, बुद्धि कहती थी कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा। जाने क्यों जाए, अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा ना लूं अभिशाप, पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए, पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए।
1: इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वही कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध्य अश्रु का दान दिया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरि श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, जैसे चांद चलता हो गगन में। यह गुरु का आंतरिक द्वंद है, धर्म और स्नेह का संघर्ष। बाहर कठोरता, भीतर करुणा की गंगा प्रवाहित हो रही है। यह मौन विदाई है, शब्द समाप्त हो गए हैं, केवल अश्रु संवाद कर रहे हैं। यह केवल गुरु शिष्य का वियोग नहीं, यह धर्म और प्रेम के बीच की मौन अग्नि परीक्षा है। परशुराम की बुद्धि अडिग है, पर हृदय भीग चुका है। कर्ण की साधना टूट गई, किंतु उसकी श्रद्धा नहीं टूटी। वह चरण धूलि लेकर चला है, मानो अपने जीवन की शेष ज्योति उसी भक्ति से प्रज्वलित करने लगा हो।
0: श्रोताओं, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रसंग को केवल करुण घटना नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे मनुष्य के भीतर चलने वाले सनातन संघर्ष, कर्तव्य और करुणा, व्रत और वात्सल्य, न्याय और प्रेम का महाभाव बना दिया। यही कारण है कि यह प्रसंग काल की सीमाओं से परे आज भी उतना ही स्पंदित है जितना तब था, क्योंकि मनुष्य का हृदय आज भी उसी द्वंद से गुजरता है। श्रोताओं, इसी करुण दीप्त क्षण के साथ द्वितीय सर्ग को प्रणाम। काव्य गुंजन के आगामी अंक में हम इस महाकाव्य यात्रा के अगले चरण की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां नियति का रथ और भी वेग से आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
0: और मैं संदीप शर्मा,
4: और मैं दीपक नेमा।
1: श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
0: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

अभी आप सुन रहे थे भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम और कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति कार्यक्रम काव्य गुंजन में 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

भूमध्य सागरीय मूर, मेडिटेरेनियन मूर्स, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के असली उस्ताद। क्या आप जानते हैं कि जब वास्को डिगामा सन 1498 में कालीकट पहुंचा, तो उसका सामना आदिम आदिवासियों से नहीं बल्कि ऐसे व्यापारियों से हुआ जो उनसे कहीं अधिक भाषाएं जानते थे और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेहतर समझते थे। पुर्तगाली अपने साथ रिकॉन विस्टा की मानसिकता लेकर आए थे, जहां वे पूरी दुनिया को केवल ईसाई और मूर यानी मुसलमानों के द्विआधारी चश्मे से देखते थे। उनकी अज्ञानता का आलम यह था कि उन्होंने हिंदू मंदिरों को भी चर्च समझ लिया। अमले में शामिल जोआओ नूनेस एक डेग्रेडादो यानी निर्वासित अपराधी था। गामा, जो हमले के डर से खुद तट पर उतरने से घबरा रहा था, उसने नूनेस को एक प्रयोग के तौर पर कालीकट के हलचल भरे बंदरगाह में भेजा। नूनेस का सामना ट्यूनीशिया के दो व्यापारियों से हुआ जो उस समय के मुआरो ब्रोंकोस यानी सफेद मूर नेटवर्क का हिस्सा थे। ये व्यापारी सोना, चांदी और बेहतरीन कपड़ों का व्यापार करते थे। जैसे ही उन्होंने पुर्तगाली अपराधी को देखा, उन्होंने उसकी ही भाषा में कास्टेलियन और जेनाइस के मिश्रण में चिल्लाकर कहा, शैतान की कसम, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इन ट्यूनीशियाई व्यापारियों का जीवन उस वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था का सबूत था जो पुर्तगालियों के आने से बहुत पहले से फल फूल रही थी। जब नूनेस ने कहा कि वे ईसाई और मसाले खोजने आए हैं, तो ट्यूनीशियाई डरे नहीं बल्कि उन्हें हंसी आ गई। उन्हें आश्चर्य इस बात पर था कि वेनिस, फ्रांस या स्पेन जैसी बड़ी शक्तियों ने पहले यहाँ अपने लोग क्यों नहीं भेजे। ये बिचौलिए एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय कुलीन वर्ग का हिस्सा थे जो जितना लेवेंट यानी भूमध्य सागर का पूर्वी तट में सहज थे, उतने ही भारत के तटों पर भी। वे पुर्तगालियों की तरह स्थानीय रीति रिवाजों से भ्रमित नहीं थे, वे भू राजनीति के उस्ताद थे। उनमें से एक व्यापारी ने नूनेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वे उन्हें ऐसी भूमि पर ले आए जहां इतनी दौलत है। इसका सीधा मतलब ये था कि पुर्तगाली किसी महान योजना के तहत नहीं बल्कि अंधे की तरह भाग्य के भरोसे इस खजाने तक पहुंच गए हैं। इन बहुभाषी ट्यूनीशियाई लोगों की मौजूदगी हमें ये याद दिलाती है कि खोजों का युग, जिसे हम एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं, अक्सर उन दुनियाओं के साथ आमना सामना था जो पश्चिम की भाषाओं और बाजारों से पहले से ही गहराई से परिचित थीं।

नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।

0: श्रोताओं, इसके पिछले भाग में हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की थी पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर पी के आयंगर जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। आइए आगे हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं।
1: विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर आयंगर ने कई सुधार किए। उन्होंने प्रयोगशाला में नए उपकरण मंगवाए, पुस्तकालय का विस्तार किया और छात्रों के लिए अधिक शोध अवसर बनाए। उनका मानना था कि छात्रों को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुभव भी मिलना चाहिए। एक बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने वनस्पति विज्ञान विभाग के बजट में कटौती करने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर आयंगर ने कुलपति से मुलाकात की और दृढ़ता से अपनी बात रखी। सर, विज्ञान में निवेश देश का भविष्य है। अगर हम आज अपने छात्रों को अच्छी सुविधाएं नहीं देंगे तो कल भारत वैज्ञानिक प्रगति में पिछड़ जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बजट कटौती पर पुनर्विचार करें।
0: कुलपति डॉक्टर आयंगर के तर्क और समर्पण से प्रभावित हुए। न केवल बजट कटौती रद्द की गई, बल्कि अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित की गई। डॉक्टर आयंगर के मार्गदर्शन में कई छात्रों ने पीएचडी की। उनकी मार्गदर्शन शैली बहुत व्यक्तिगत थी। हर शोधार्थी के साथ वे सप्ताह में कम से कम एक बार बैठते और उनकी प्रगति पर चर्चा करते।
1: एक शोधार्थी सुब्बा लक्ष्मी, जो दक्षिण भारत की पहली महिला वनस्पति विज्ञानी बनी, उन्होंने बाद में लिखा, प्रोफेसर आई

0: प्रोफेसर अयंगर केवल शिक्षक नहीं थे, वे पिता समान थे। एक बार मैं अपने शोध में बहुत निराश था, परिणाम नहीं मिल रहे थे और मैं सोच रहा था कि शोध छोड़ दूं। प्रोफेसर को पता चला, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। श्रीमती अयंगर ने चाय और स्नैक्स परोसे। प्रोफेसर ने मेरे साथ घंटों बैठकर मेरे शोध पर चर्चा की। उन्होंने कहा, नटराजन, विफलता सफलता का हिस्सा है। हर महान खोज असफलताओं के ढेर पर बनी है। तुम हार मत मानो। उस शाम ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने शोध जारी रखा और अंततः सफल हुआ।
1: डॉक्टर अयंगर को अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाता था। 1939 में उन्हें लंदन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया। ये यात्रा कठिन समय में थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। लक्ष्मी चिंतित थी, क्या आपको वास्तव में जाना चाहिए? यूरोप में युद्ध हो रहा है, डॉक्टर अयंगर ने आश्वासन दिया। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। भारत का प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात है।
0: सम्मेलन में डॉक्टर अयंगर ने अपनी एक प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति को काफी सराहना मिली। यूरोपीय वैज्ञानिक भारतीय समुद्री वनस्पतियों की विविधता से प्रभावित हुए। सम्मेलन के बाद कई वैज्ञानिकों ने डॉक्टर अयंगर से संपर्क किया और सहयोग की पेशकश की। ये भारतीय विज्ञान के लिए गर्व का क्षण था।
1: डॉक्टर अयंगर भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। 1942 में उन्हें वनस्पति विज्ञान खंड का अध्यक्ष चुना गया। उनका अध्यक्षीय भाषण बहुत प्रभावशाली था। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। भारत स्वतंत्रता के करीब है। एक स्वतंत्र भारत को मजबूत वैज्ञानिक आधार की जरूरत होगी। वनस्पति विज्ञान केवल पौधों का अध्ययन नहीं है, ये कृषि, औषधि, पर्यावरण सभी से जुड़ा है। हमें युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करना होगा, शोध को बढ़ावा देना होगा और देश की समृद्धि के लिए विज्ञान का उपयोग करना होगा।
0: भाषण के बाद कई युवा छात्र डॉक्टर अयंगर से मिलने आए। उनमें से एक ने कहा, सर, आपने हमें प्रेरित किया है, हम भारत के लिए काम करना चाहते हैं। डॉक्टर अयंगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही मेरा उद्देश्य था। विज्ञान देश की सेवा का एक माध्यम है। 1940 के दशक में जब डॉक्टर अयंगर अपने करियर के शिखर पर थे, घर पर चुनौतियां भी बहुत थीं। बड़े बेटे रामकृष्णन किशोरावस्था में थे और विद्रोही हो रहे थे। उन्हें विज्ञान में कोई रुचि नहीं थी, वे संगीत और कला में रुचि रखते थे। एक दिन रामकृष्णन ने घोषणा की, पिताजी, मैं वैज्ञानिक नहीं बनना चाहता, मैं संगीतकार बनना चाहता हूं।
1: ये डॉक्टर अयंगर के लिए निराशा का क्षण हो सकता था। कई पिता अपने बच्चों को अपने पेशे में ही देखना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर अयंगर अलग थे। उन्होंने गहरी सांस ली और शांति से कहा, रामकृष्णन, मैं चाहता हूं कि तुम वो बनो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर संगीत तुम्हारा जुनून है तो उसका पीछा करो, लेकिन याद रखो, जो भी करो पूरी ईमानदारी और समर्पण से करो।
0: लक्ष्मी, जो पास में बैठी थी, उन्होंने अपने पति का हाथ दबाया। वे जानती थी कि ये निर्णय डॉक्टर अयंगर के लिए आसान नहीं था, लेकिन ये सही था। रामकृष्णन बाद में एक प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीत कलाकार बने। हर कॉन्सर्ट के बाद वे अपने पिता को धन्यवाद देते, पिताजी, आपने मुझे मेरे सपने पूरे करने दिए। बेटी सरस्वती बहुत बुद्धिमान थी और विज्ञान में रुचि रखती थी, लेकिन 1940 के दशक में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा असामान्य थी। रिश्तेदार दबाव डालते, सरस्वती अब 18 की हो गई है, उसकी शादी करा दो।
1: लेकिन डॉक्टर अयंगर और लक्ष्मी दृढ़ थे। उन्होंने सरस्वती को कॉलेज भेजा। सरस्वती ने वनस्पति विज्ञान में स्नातक किया और अपने पिता की तरह शोध में रुचि विकसित की। एक दिन सरस्वती ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपकी तरह वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। डॉक्टर आयंगर की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। बेटी तुम मुझसे भी बेहतर वैज्ञानिक बनोगी, मैं तुम्हारी हर कदम पर मदद करूंगा। सरस्वती ने अपने पिता के मार्गदर्शन में पीएचडी की और भारत की शुरुआती महिला वनस्पति विज्ञानियों में एक बनी।
0: 1945 में लक्ष्मी गंभीर रूप से बीमार पड़ी, तेज बुखार और कमजोरी थी। डॉक्टर ने कहा कि ये टाइफाइड हो सकता है। डॉक्टर अयंगर बहुत चिंतित थे। उन्होंने कॉलेज से छुट्टी ली और लक्ष्मी की देखभाल में दिन रात लगे रहे। वे खुद उनके लिए खाना बनाते, दवा देते और रात में उनके पास बैठे रहते। बच्चों ने भी मदद की। सरस्वती ने घर का काम संभाला, रामकृष्णन छोटे वेंकटेश का ख्याल रखते। कई सप्ताहों की देखभाल के बाद लक्ष्मी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। जब वे पूरी तरह ठीक हुई, उन्होंने डॉक्टर आयंगर से कहा, आपने मेरी जान बचाई।
1: डॉक्टर आयंगर ने भावुक होकर कहा, लक्ष्मी तुम मेरी जीवन साथी हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य और प्रेम दोनों है। इस घटना ने पूरे परिवार को और करीब ला दिया। बच्चों ने देखा कि उनके माता पिता के बीच कितना गहरा प्रेम और सम्मान है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर आयंगर और उनका परिवार मद्रास की सड़कों पर उत्सव में शामिल हुआ। तिरंगा फहराया गया और लोग नाचे और गाए। डॉक्टर आयंगर ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों ये ऐतिहासिक दिन है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक मजबूत भारत बनाने में योगदान दें। विज्ञान, शिक्षा, सेवा, हर क्षेत्र में हमें काम करना होगा।
0: स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विज्ञान और शिक्षा पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। डॉक्टर आयंगर को कई सरकारी समितियों में शामिल किया गया जो वैज्ञानिक नीतियां बनाती थीं। 1950 के दशक में डॉक्टर आयंगर अब 60 के दशक में थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। उन्होंने 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए थे और कई पुस्तकें लिखी थीं। 1954 में भारत सरकार ने घोषणा की, प्रोफेसर पी के आयंगर को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये खबर जब मिली, पूरे मद्रास विश्वविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई।
1: छात्रों ने विशेष समारोह आयोजित किया, विभाग को फूलों से सजाया गया, सहकर्मियों ने बधाई दी। प्रोफेसर आयंगर विनम्रता से सबका आभार व्यक्त करते रहे। घर पर लक्ष्मी ने विशेष पूजा की और गरीबों को भोजन कराया। बच्चों ने मिठाई वितरित की। रामकृष्णन ने एक विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित किया अपने पिता के सम्मान में। पुरस्कार समारोह के लिए पूरा परिवार दिल्ली गया। ये छोटे वेंकटेश की पहली दिल्ली यात्रा थी। राष्ट्रपति भवन की भव्यता देखकर वे चकित थे।
0: समारोह का दिन आया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में भव्य व्यवस्था थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना था, कलाकार, वैज्ञानिक, समाज सेवक। जब प्रोफेसर अयंगर का नाम पुकारा गया, वे मंच की ओर बढ़े। सफेद धोती, सफेद शर्ट और काले कोट में वे बहुत गरिमामय दिख रहे थे। तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण का पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा, प्रोफेसर आयंगर, आपने भारतीय वनस्पति विज्ञान को समृद्ध किया है और कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया है। देश आपका आभारी है।
1: प्रोफेसर आयंगर ने विनम्रता से कहा, महामहिम, ये सम्मान मेरे गुरुओं, सहकर्मियों, छात्रों और परिवार का है। विज्ञान एक सामूहिक यात्रा है, मैं केवल एक छोटा योगदान करता हूँ। दर्शकों में बैठी लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोचा कि वो गरीब केरल गांव का लड़का कितनी दूर आ गया है। पद्म भूषण के बाद प्रोफेसर आयंगर और भी विनम्र हो गए। उन्होंने कहा, सम्मान जिम्मेदारी बढ़ाते हैं, अब मुझे और अधिक काम करना होगा।
0: वे अपने शोध में और भी सक्रिय हो गए। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की जो भारतीय समुद्री वनस्पतियों का संपूर्ण दस्तावेजीकरण है। उन्होंने कई युवा शोधकर्ताओं को इस परियोजना में शामिल किया। प्रत्येक शोधकर्ता एक विशेष समुद्री क्षेत्र का अध्ययन करता। ये एक बहुवर्षीय परियोजना थी जो भारतीय वनस्पति विज्ञान के लिए मील का पत्थर साबित हुई। पद्म भूषण के बाद प्रोफेसर अयंगर को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें फेलोशिप प्रदान की। ये किसी भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ा सम्मान था।
1: जर्मनी की एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें मानद सदस्यता दी। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। 1958 में प्रोफेसर अयंगर ने अमेरिका की 3 महीने की यात्रा की। उन्होंने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT में व्याख्यान दिए। अमेरिकी वैज्ञानिक भारतीय विज्ञान की प्रगति से प्रभावित हुए। एक अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा, प्रोफेसर अयंगर, आप साबित करते हैं कि विश्व स्तरीय विज्ञान केवल पश्चिम में ही नहीं होता, भारत भी महान वैज्ञानिक पैदा करता है।
0: 1960 के दशक में प्रोफेसर अयंगर अब 60 के दशक के अंत में थे। शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। लंबे घंटे प्रयोगशाला में खड़े रहना मुश्किल हो गया था। आंखों की रोशनी कम हो रही थी जिससे सूक्ष्मदर्शी से काम करना कठिन था, लेकिन उनका मन अभी भी जवान था। वे हर सुबह कॉलेज जाते, हालांकि अब बेटा वेंकटेश उन्हें कार में छोड़ने लगा था। लक्ष्मी चिंतित रहती थी, अब आराम करने का समय आ गया है, आपने पर्याप्त काम किया है। लेकिन प्रोफेसर अयंगर मुस्कुराते, लक्ष्मी जब तक शरीर साथ दे मैं काम करूंगा, विज्ञान मेरा जीवन है।
1: 1962 में जब प्रोफेसर अयंगर 66 वर्ष के हुए, उन्हें विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार रिटायर होना पड़ा। रिटायरमेंट समारोह भव्य था, पूरा विश्वविद्यालय इकट्ठा हुआ। कुलपति ने कहा, प्रोफेसर अयंगर ने इस विश्वविद्यालय को 35 वर्ष दिए। उन्होंने सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया जो अब देश विदेश में प्रतिष्ठित पदों पर हैं। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। छात्रों ने एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया। पुराने छात्र जो अब मध्यम आयु के प्रोफेसर थे, देश के विभिन्न हिस्सों से आए। एक एक करके उन्होंने अपने अनुभव साझा किए।
0: नटराजन जो अब IARI के निदेशक थे, उन्होंने कहा, सर आपने मुझे न केवल विज्ञान सिखाया बल्कि जीवन जीना सिखाया, आप हमेशा मेरे आदर्श रहेंगे। सुब्बा लक्ष्मी जो अब दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थीं, उन्होंने कहा, सर एक महिला के रूप में विज्ञान में मेरी यात्रा कठिन थी, लेकिन आपने मुझे साहस दिया, आपने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं सफल हो सकती हूँ।
1: प्रोफेसर अयंगर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय छात्रों, आप सब मेरे गर्व हो। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार ये देखना है कि उसके छात्र सफल हो रहे हैं। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर अयंगर घर पर रहने लगे। शुरुआत में ये मुश्किल था। 35 वर्षों तक कॉलेज जाना एक आदत सी बन गई थी। अचानक घर पर पूरा दिन बिताना अजीब लगता था।
0: लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नई दिनचर्या बनाई। सुबह बगीचे में समय बिताते, उन्होंने घर में एक छोटा सा वनस्पति उद्यान बनाया जहां विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। पोते पोतियों के साथ वहीं पर समय बिताते, दोपहर में अपनी पुस्तकों पर काम करते। उन्होंने अपने जीवन भर के शोध को संकलित करना शुरू किया। वे अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में लगे रहते।
1: रिटायरमेंट के बाद भी प्रोफेसर अयंगर ने लिखना बंद नहीं किया। उन्होंने कई लेख लिखे जो वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उनकी कई लेख प्रकाशित हुए और पुस्तक तुरंत वनस्पति विज्ञान के छात्रों के लिए मानक बन गई। पुस्तक के लोकार्पण समारोह में कुलपति ने कहा, प्रोफेसर अयंगर रिटायर हो गए हैं, लेकिन विज्ञान में उनका योगदान जारी है। ये पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य संसाधन होगी।
0: उन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम किया, अपनी आत्मकथा लिखना शुरू की। हालांकि ये पुस्तक उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी, बाद में उनकी बेटी सरस्वती ने इसे पूरा किया और प्रकाशित करवाया। 1965 के आसपास प्रोफेसर आयंगर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें मधुमेह की समस्या थी जो नियंत्रित नहीं हो रही थी। हृदय भी कमजोर हो रहा था।
1: डॉक्टरों ने सलाह दी कि वे पूरा आराम करें और तनाव से बचें। लक्ष्मी ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने विशेष आहार तैयार किया, कम शक्कर, कम नमक, नियमित दवाइयां दे दी, लेकिन प्रोफेसर आयंगर के लिए निष्क्रिय रहना मुश्किल था। लक्ष्मी, मैं बिस्तर में नहीं रह सकता, मुझे कुछ काम करना होगा, वे यही कहते। लक्ष्मी समझाती, उन्होंने प्रोफेसर आयंगर के लिए बिस्तर के पास एक छोटी मेज लगाई जहां वे लेट कर भी पढ़ लिख सकते थे।
0: प्रोफेसर आयंगर के पुराने छात्र और सहकर्मी उनसे मिलने आते रहे। हर मुलाकात भावुक होती थी। नटराजन दिल्ली से आए, सुब्बा लक्ष्मी भी आई। कॉलेज के सहकर्मी, पुराने मित्र सभी अपने प्रिय प्रोफेसर से मिलना चाहते थे। एक दिन भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मिलने का अनुरोध किया। हालांकि प्रोफेसर आयंगर बहुत कमजोर थे, उन्होंने मिलने की अनुमति दी।
1: प्रतिनिधि मंडल के जो नेता थे उन्होंने कहा, सर, आप भारतीय विज्ञान के स्तंभ हैं, आपका योगदान अमूल्य है, हम आपको सम्मान देने आए हैं। प्रोफेसर आयंगर ने धीमी आवाज में कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। भारतीय विज्ञान का भविष्य युवा वैज्ञानिकों के हाथों में है, उन्हें प्रोत्साहित करो, संसाधन दो और देखो कैसे भारत विश्व में विज्ञान का नेतृत्व करेगा।
0: 1966 के पतझड़ में या उसके आसपास प्रोफेसर आयंगर की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने परिवार को तैयार रहने की सलाह दी। पूरा परिवार घर पर इकट्ठा था। एक शांत रात जब चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, प्रोफेसर आयंगर ने अपनी आंखें खोली। लक्ष्मी उनके पास बैठी थी, उनका हाथ पकड़े हुए। बच्चे और पोते पोतियां भी पास में थे। प्रोफेसर आयंगर ने सबको देखा, उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने धीमे से कहा, मैं भाग्यशाली हूं, इतना प्यार मिला, सुंदर जीवन मिला। अब थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। 70 वर्ष की आयु में प्रोफेसर पी के आयंगर ने अपनी अंतिम सांस ली।
1: अगली सुबह खबर फैल गई। मद्रास विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक समुदाय, छात्र सभी शोक में डूब गए। विश्वविद्यालय ने एक दिन की छुट्टी घोषित की। प्रोफेसर आयंगर के पार्थिव शरीर को फूलों से सजाया गया। पारंपरिक दक्षिण भारतीय रीति के अनुसार उन्हें सफेद कपड़ों में लपेटा गया, चंदन का लेप लगाया गया। घर पर सैकड़ों लोग आए, छात्र, सहकर्मी, मित्र, रिश्तेदार, सभी ने श्रद्धांजलि दी। कई लोग रो रहे थे। नटराजन, सुब्बलक्ष्मी और अन्य पुराने छात्र विशेष रूप से दुखी थे।
0: दोपहर में अंतिम संस्कार के लिए जुलूस निकला। शव को एक सजे हुए ट्रक पर रखा गया। हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए। विश्वविद्यालय से लेकर शमशान घाट तक सड़कें लोगों से भरी हुई थी। कुलपति, विभाग के प्रोफेसर, छात्र सभी पैदल चल रहे थे। कुछ लोग प्रोफेसर आयंगर अमर रहे के नारे लगा रहे थे।
1: कुछ दिनों बाद मद्रास विश्वविद्यालय ने एक विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। हॉल खचाखच भरा था। मंच पर प्रोफेसर आयंगर का बड़ा चित्र लगा था, फूलों की माला से सजा हुआ। कुलपति ने कहा, आज हमने एक महान वैज्ञानिक, एक प्रेरक शिक्षक और एक उत्कृष्ट इंसान को खो दिया। प्रोफेसर आयंगर ने अपना जीवन ज्ञान की खोज और उसके प्रसार में समर्पित किया। उन्होंने सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया जो आज देश विदेश में विज्ञान की सेवा कर रहे हैं। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।
0: नटराजन, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने भावुक होकर कहा, सर केवल शिक्षक नहीं थे, वे पिता, मित्र और मार्गदर्शक थे। उन्होंने हमें विज्ञान के साथ साथ जीवन के मूल्य भी सिखाए। उनकी विनम्रता, समर्पण और मानवता हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। सभा के अंत में दो मिनट का मौन रखा गया। पूरा हॉल शांत था, केवल सिसकियों की आवाजें आ रही थीं।
1: प्रोफेसर आयंगर की मृत्यु के बाद मद्रास विश्वविद्यालय ने उनके सम्मान में कई पहल की। प्रोफेसर पी के आयंगर मेमोरियल लेक्चरर हर वर्ष एक प्रतिष्ठित वनस्पति वैज्ञानिक को ये व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आयंगर फेलोशिप युवा शोधार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जो वनस्पति विज्ञान में PhD कर रहे हैं। आयंगर हर्बेरियम विश्वविद्यालय में एक विशेष अनुभाग जहां प्रोफेसर आयंगर द्वारा एकत्रित नमूने संरक्षित हैं।
0: प्रोफेसर आयंगर के शोध पत्र और पुस्तकें आज भी वनस्पति विज्ञान के छात्रों द्वारा पढ़ी जाती है। कई शैवाल और कवक प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम में आयंगरी जुड़ा है, जिसका नामकरण उनके सम्मान में किया गया है।
1: आज 21वीं सदी में प्रोफेसर पी के आयंगर की कहानी युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। एक छोटे से केरल गांव से निकलकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक बनना, ये यात्रा दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। उनका जीवन ये सिखाता है कि ज्ञान की खोज एक आजीवन यात्रा है। शिक्षक का प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। विनम्रता और सरलता सच्ची महानता की निशानी है। परिवार और करियर में संतुलन संभव है। विज्ञान देश और मानवता की सेवा का माध्यम है।
0: प्रोफेसर पी के आयंगर का नाम भारतीय विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनकी विरासत, उनके शोध, उनके छात्र, उनके मूल्य आज भी जीवित हैं और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। प्रोफेसर पी के आयंगर का शरीर भले ही 1966 में हमें छोड़ गया, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनके मूल्य आज भी जीवित हैं। हर बार जब कोई छात्र सूक्ष्मदर्शी में एक कोशिका देखकर आश्चर्यचकित होता है, हर बार जब कोई शिक्षक अपने छात्र को प्रोत्साहित करता है, हर बार जब कोई वैज्ञानिक विनम्रता से अपना ज्ञान साझा करता है, प्रोफेसर आयंगर वहां मौजूद हैं।
1: उनकी ये कहानी केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, ये भारतीय विज्ञान के विकास की कहानी है। ये समर्पण और सेवा की कहानी है। ये प्रेम और परिवार की कहानी है। ये मानवता की कहानी है।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की प्रोफेसर पी के आयंगर जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक निमा,
1: और मैं प्रमिला मुंशी दिवाकर।
0: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
3: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
4: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद की एक विदेशी शिष्या भगिनी क्रिस्टीन के संस्मरण हम सुन रहे हैं, जिसमें स्वामी जी के व्यक्तित्व के अनेक अनजाने पहलुओं की जानकारी मिल रही है। विविध विषयों पर स्वामी जी के कुछ दुर्लभ विचारों को भी हमने जाना है।
1: प्राचीन इतिहास के तो वे प्रकांड पंडित थे, उनके बताए गए ऐतिहासिक चरित्र इतने सजीव होते थे कि श्रोता उन चरित्रों के साथ एकात्म हो जाते थे। भगिनी क्रिस्टीन के संस्मरणों में हमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक चरित्रों के बारे में पता चलता है जिनका वर्णन स्वामी जी ने अपने ढंग से किया था।
2: लगता था कि मुगलों ने स्वामी जी पर जादू कर दिया। भारतीय इतिहास का ये काल वे ऐसी प्रभावशाली सजीवता के साथ प्रस्तुत करते कि बहुधा हमें लगता मानो कि वे अपने ही अतीत की कथा सुना रहे हों। कई बार हम लोग ये सोचने को मजबूर हो जाते कि कहीं हम महाप्रतापी अकबर के नए अवतार को तो नहीं देख रहे हैं। स्वामी जी ने हमारे समक्ष इन शासकों, महारानियों, प्रधानमंत्रियों, सेना नायकों आदि के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का इतना जीवंत वर्णन किया है कि वे हमें परिचित सजीव नर नारी प्रतीत होने लगे। हमने फरगना के 12 वर्षीय बादशाह बाबर को देखा जो अपनी मंगोल दादी से प्रभावित हुआ था और अपनी माँ के साथ एक बड़ा कठोर कष्टपूर्ण जीवन बिता रहा था। बाद में हमने उसे 100 दिनों तक समरकंद के सुल्तान के रूप में देखा, तब भी वो एक बालक ही था और अपनी इस नई उपलब्धि पर वैसे ही प्रसन्न था मानो उसे कोई बड़ा खिलौना मिल गया हो। फिर उसके अपने इस सपनों के नगर के खो जाने पर हमने उसकी चिंता तथा हताशा को देखा, उसके संघर्षों, उसकी जय पराजय को देखा। उसके बाद हमने उसे अपने सैनिकों के साथ उत्तुंग पहाड़ी दर्रे को पार करके भारत के मैदानी क्षेत्रों में उतरते देखा। एक विदेशी तथा आक्रांत होकर भी भारत के सम्राट के रूप में उसने स्वयं को इस देश के साथ एकात्म कर लिया था और तत्काल सड़कें बनवाने, पेड़ लगवाने, कुएं खुदवाने और नगरों के निर्माण कार्य में लग गया था। परंतु उसका हृदय हमेशा ही अपने उन पहाड़ी अंचलों में लगा रहता जहां से वो आया था और जहां आखिर में उसे दफनाया गया। वो एक आकर्षक और साहसी व्यक्ति था जिसने मानव इतिहास के महानतम राजवंशों में से एक की स्थापना की थी।
0: स्वामी जी अकबर के भी प्रशंसक थे। अकबर की बातें, उनकी धर्मनिरपेक्षता आदि के बारे में स्वामी जी अपने विदेशी शिष्यों को बताते रहते थे।
2: इतिहास में उसके समान अनेक गुणों से युक्त बहुत ही कम हुए हैं। उनकी महानता और उदारता के समक्ष उनके महान सेनापति बैरहम खां भी लज्जित हो जाते थे। उनकी किशोरावस्था में ही जब बैरहम खां ने उनके शत्रु को हाजिर किया तो बोले, मैं पराजित शत्रु को नहीं मारता। उनका साहस निर्विवाद और सर्वजन प्रशंसित था। खेलकूद, निशानेबाजी, पोलो और घुड़सवारी में भी शायद ही कोई बराबरी कर पाता था। परंतु इन सब के बावजूद उनकी आदतें बड़ी ही संयमित थी। वे मांस नहीं खाते थे। कहते, मैं अपने पेट को कब्रिस्तान क्यों बनाऊं? हर रात वे केवल कुछ घंटे ही सोते और बाकी समय दार्शनिक तथा आध्यात्मिक चर्चाओं में बिताते। एक मुसलमान होकर भी वे सभी धर्मों के आचार्यों के उपदेश सुनते और उनसे प्रश्न भी करते। फिर एक ब्राह्मण को अपने कबाखाना में बुलाकर वे रात रात भर उससे हिंदू योग के रहस्य भी सीखते। बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक नवीन धर्म स्थापित करने की योजना बनाई जिसमें मुसलमानों के साथ हिंदू, ईसाई तथा पारसी भी योगदान करने वाले थे।
1: अकबर कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते थे। हिंदू मुस्लिम दोनों ही उनके मित्र थे। क्रिस्टीन को स्वामी जी के विचार याद आते हैं। वे कहती हैं,
2: शहंशाह होकर भी उनमें सच्चे मित्र बनाने का गुण था। उनमें से चार ऐसे थे जो इन देवात्मा के मित्र होने के योग्य थे। उनके प्रधानमंत्री अबुल फजल, महाकवि फैजी, ब्राह्मण प्रशंसक बीरबल और साले तथा सेनापति मान से, दो हिंदू और दो मुसलमान, दोनों फजल भाई भाई थे। उनके मित्र न केवल उनके साथ हंसी खुशी के मौके पर साथ रहते थे, अपितु दरबार और युद्ध में उनका जीवन खतरे में पड़ा तो वे लोग अपनी तलवारें निकालकर उनकी रक्षा में जुट गए। वे मुसलमान हो या हिंदू, उनके नए धर्म के अनुयायी बन गए और उनके सभी कार्यों का निष्ठापूर्वक समर्थन किया। किसी व्यक्ति को शायद ही कभी इतने सच्चे मित्र मिले होंगे।
0: स्वामी जी को स्त्रियों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। इतिहास प्रसिद्ध महिलाओं में नूरजहां ने उनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था।
2: अब जहांगीर की साम्राज्ञी नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी का आकर्षक व्यक्तित्व प्रकट होता है, जो 20 वर्षों तक भारत की वास्तविक शासक रही। इस अद्भुत महिला का प्रभाव असीम था। काफी हद तक उसी की महान विवेक बुद्धि तथा व्यावहारिकता के कारण साम्राज्य की स्थिरता, समृद्धि तथा सत्ता कायम रही। नूरजहां के शासन के दिनों में ही एक नए प्रकार की स्थापत्य कला आरंभ हुई, एक कोमल पद्धति का स्थापत्य जिसमें अकबर द्वारा निर्मित भवनों के मर्दाने लाल बलुआ पत्थरों के साथ सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ और उसमें तरह तरह के कीमती तथा कम कीमती जवाहरात जड़े जाने लगे। साधारण दीवारों की जगह रत्न जड़े दीवारों ने ले ली। मध्य एशियाई पहाड़ियों की ऊर्जा और ताकत का स्थान फारस की बारीकी और मृदुता ने ले ली। ताजमहल और संगमरमर के बने आगरा, दिल्ली तथा लाहौर के महल इसी स्थापत्य कला की विरासत है।
0: स्वामी जी के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों ही भारतीय हैं, उनमें वे कोई भेद नहीं करते थे।
2: उनके लिए भारत केवल हिंदुओं का ही नहीं, सबका देश था। वे प्रायः ही कहा करते, मेरे मुसलमान भाई, क्योंकि इन मुसलमान भाइयों की संस्कृति, धर्म निष्ठा तथा पौरुष के बारे में उनकी जो समझ, प्रशंसा और एकात्मता का भाव था, उसकी बराबरी शायद ही कोई मुसलमान भी कर पाता। उनकी एक यात्रा की संगनी बताती है कि जब जलियान ने जिब्राल्टर में प्रवेश किया तो मुसलमान लश्करों का दीन दीन पुकारते हुए जमीन पर लेट जाना देखकर स्वामी जी बड़ी गहराई तक अभिभूत हो गए थे।
1: हजरत मोहम्मद के बारे में बताते बताते स्वामी जी विभोर हो जाते थे। लगता नहीं था कि वे और किसी धर्म के बारे में कह रहे हैं।
2: वे लगातार घंटों तक अरब के उन युवा ऊंट चालकों के बारे में बोलते रहते जिन्होंने ईसा की 6वीं शताब्दी में अपने देश को पतन के गर्त में ऊपर उठाने का प्रयास किया था। हमें बोध हुआ कि अरब, फिलिस्तीन या भारत में जब ईश्वर के पुत्र नया जन्म लेते हैं तो वे सर्वत्र एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। स्वामी जी पैगंबर के एकाकीपन को महसूस करते थे। वर्षों तक केवल मुट्ठी भर लोगों ने ही उन पर तथा उनके संदेशों पर विश्वास किया। अरब के पैगंबर ने इस कार्य को जिस धैर्य, करुणा तथा उत्तरदायित्व के साथ पूरा किया उसे हम धीरे धीरे ही समझ सके थे। विशुद्धतावादी मानसिकता रखने वाले किसी ने प्रतिवाद करते हुए कहा, पर उन्होंने तो बहुविवाह का प्रचार किया था। इस पर स्वामी जी ने बताया कि अरब देशों में पहले से ही बहुविवाह का एक और भी विकृत रूप प्रचलन में था। मोहम्मद ने उसे प्रति व्यक्ति 4 पत्नियों तक ही सीमित कर दिया।
0: मुस्लिम धर्म के बारे में पश्चिमी लोगों में अनेक गलत धारणाएं थीं। स्वामी जी उनका निराकरण करते थे।
2: एक अन्य ने उद्विग्न स्वर में कहा, उनका कहना था कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती, इससे इस्लाम में महिलाओं का स्थान विषय पर व्याख्या की जरूरत पड़ी। अमेरिकी श्रोताओं को ये जानकर थोड़ी खींच भी हुई कि मुस्लिम महिलाओं को कुछ ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो तथाकथित स्वतंत्र अमेरिकी महिलाओं को भी प्राप्त नहीं।
1: भगिनी क्रिस्टीन से हमें स्वामी जी और उनके शिष्यों के बीच कैसा रिश्ता था ये मालूम पड़ता है।
2: स्वामी जी अपने शिष्यों को जो प्रशिक्षण देते थे वो हर एक के लिए भिन्न तथा विशिष्ट हुआ करता था। जब तक कोई निश्चित रूप से शिष्यत्व ग्रहण की इच्छा प्रकट नहीं करता और जब तक उन्हें विश्वास नहीं हो जाता कि दीक्षार्थी इस कदम के लिए तैयार है, तब तक वे अपने पास रहने वालों के व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। कुछ लोगों को वे पूर्ण स्वाधीनता दे देते और वे उसी स्वाधीनता में आबद्ध हो जाते। हमसे अपरिचित कुछ लोगों के बारे में वे ये बता देते, वो शिष्य नहीं मित्र है, वो एक बिल्कुल भिन्न प्रकार का संबंध होता। मित्रों के जीवन में भूलें तथा पूर्वाग्रह रह सकता था। मित्रगण संकीर्ण मनोवृत्ति रख सकते थे, परंपरागामी रह सकते थे, परंतु स्वामी जी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि वे दूसरों के जीवन से संबंधित कोई मत व्यक्त करना भी दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप जैसा अक्षम्य अपराध समझते थे।
0: गुरु शिष्य परंपरा को निभाना, शिक्षा तथा सीख जो स्वामी जी अपने शिष्यों को सिखाते थे, वे विदेशी शिष्यों के लिए नया था।
2: परंतु एक बार उन्हें गुरु स्वीकार कर लेने के बाद सब कुछ बदल जाता था। तब वे अपनी जिम्मेदारी महसूस करते थे, तब वे जानबूझकर शिष्य की दुर्बलताओं, पूर्वाग्रहों तथा मापदंडों पर और यहां तक कि व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली हर असंगति पर प्रहार करते। यदि आप अपने अपरिपक्व उत्साह में संसार में विश्वास करते तो आपकी इन सारी मधुर भ्रांतियों को दूर करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। वे समझा लेते, यदि अच्छाई सत्य है तो बुराई भी सत्य है, दोनों एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न पहलू हैं, अच्छाई और बुराई दोनों माया के अंतर्गत आते हैं। शुतुरमुर्ग के समान बालू में अपना सिर छिपाकर ये न कहो सब कुछ अच्छा है, कहीं कोई बुराई नहीं है। जैसे मधुर की पूजा करते हो वैसे ही भयंकर की भी पूजा करो और उसके बाद दोनों के परे चले जाओ। कहो एकमात्र ईश्वर ही सत्य है। जब हम पर संकट आ पड़े तब भी क्या हम में ऐसा कहने का साहस है? क्या अब भी असंख्य लोग आपदा के शिकार नहीं है? क्या संसार दुखों से परिपूर्ण नहीं है? क्या लाखों लोगों का जीवन त्रासदी द्वारा अछत्र नहीं है? क्या पृथ्वी पर रोगी बाधर्क और मृत्यु का साम्राज्य नहीं व्याप्त है? इन वास्तविकताओं के बावजूद यदि कोई हल्केपन से कहता कि संसार सुंदर है तो या तो वह मूढ़ है और नहीं तो वह दूसरों की पीड़ाओं के प्रति पूर्णतः उदासीन, स्वार्थ केंद्रित है।
1: सांसारिक बातों को स्वामी जी उदाहरण देकर समझाते थे, इसलिए उनके शिष्य उन बातों को आसानी से समझ जाते थे।
2: यह संसार एक कीचड़ का गड्ढा है। स्वामी जी की ये उक्ति सुनकर हम लोगों को झटका सा लगा और विरोध, शंका तथा हल्की सी नाराजगी के स्वर भी उठे थे। वर्षों बाद एक अविस्मरणीय रविवार की सुबह कोलकाता के उपनगरीय दमदम मार्ग से जाते हुए मैंने कुछ भैंसों को कीचड़ में लौटते देखा था। उसे देखते ही मेरा मन तत्काल वितृष्णा के भाव से परिपूर्ण हो उठा। मेरे मन में आया कि भैंसों को भी आनंद मनाने के लिए कीचड़ की अपेक्षा थोड़ी अच्छी चीज ढूंढना चाहिए, परंतु उन्हें उसी में शारीरिक सुख का बोध हो रहा था। तभी सहसा स्मरण हो आया, ये संसार एक कीचड़ का गड्ढा है। अमृत के उत्तराधिकारी और उच्चतर जीवनोद्देश्य रखने वाले हम लोगों की भी हालत इन भैंसों से बेहतर नहीं है। हम भी इस संसार रूपी कीचड़ के गड्ढे में लौटते हैं और हमें भी इसी में आनंद आता है।
0: स्वामी जी सबको स्वावलंबी बनाना चाहते थे ताकि वे गुरु पर निर्भर ना रहकर अपना रास्ता खुद ढूंढ सकें।
2: हमारी समस्याओं का वे स्वयं समाधान नहीं करते थे, वे आदर्श को हमारे समक्ष रख देते थे, परंतु उसका उपयोग हमें स्वयं ही करना पड़ता था। वे स्वयं पर किसी भी तरह की ढुलमुल निर्भरता या सहानुभूति की अपेक्षा को प्रोत्साहित नहीं करते थे। वे गरज उठते, अपने स्वयं के पांवों पर खड़े हो, तुम्हारे भीतर ही अनंत शक्ति निहित है। उनका एकमात्र उद्देश्य हमारे लिए मार्ग को सहज बनाना नहीं, अपितु हमें स्वयं में निहित शक्ति को विकसित करना सिखाना था। वे कहते, शक्ति शक्ति, मैं शक्ति के अलावा अन्य किसी तत्व का प्रचार नहीं करता, और इसीलिए मैं उपनिषदों का ही प्रचार करता हूं।
0: स्त्रियों के उत्थान का प्रश्न उनके मन में सदा बना रहता था, वे उसी कार्य को प्राथमिकता देते थे।
2: महिलाओं की भूमिका के बारे में वे क्या सोचते थे? निश्चय ही वह बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने तक ही सीमित नहीं था, पहले से ही हजारों स्कूल विद्यमान थे। एक कम या अधिक होने से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला था, और ना ही वह आवासीय विद्यालय चलाने जैसा कुछ था। भले ही उससे उन बालिकाओं को आश्रय देने की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती जिनके माता पिता उनका विवाह कराने में असमर्थ थे।
1: स्त्रियों के उद्धार के लिए उन्हें किसी उपयुक्त महिला की जरूरत थी। वे उस आदर्श नारी को खोज कर लाना चाहते थे।
2: जब वे भारत का भ्रमण कर रहे थे, उन दिनों में भी वे उस नारी की खोज कर रहे थे जो उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। एक एक कर कईयों का परीक्षण किया गया, पर उनमें से कोई भी योग्य साबित नहीं हुई। उनमें से एक से उन्हें बड़ी उम्मीद थी। उसके विषय में जब उनसे पूछा गया क्या वो भी नहीं, तो उन्होंने उत्तर दिया था, देखो उसमें अपना खुद का ही कार्य करने की प्रवृत्ति है, इसमें कोई आलोचना नहीं थी, अपितु वास्तविकता का निरूपण मात्र था। जिन्हें उनका कार्य करना हो उसमें पवित्रता, शिष्यत्व और श्रद्धा के गुण होना अनिवार्य था। वे बहुधा और सर्वदा बड़े मार्मिक भाव से कहते, मुझे पवित्रता से लगाव है। वे कहते, सारे प्रयास सीता के आदर्श पर आधारित होने चाहिए। सीता जो पवित्रता से भी बढ़कर पवित्र थी, सतीत्व की प्रतिमूर्ति थी, धैर्य और सहनशीलता से परिपूर्ण थी। वे ही भारतीय नारियों की आदर्श है। वे भारतीय नारी की ठीक वैसी ही प्रतिरूप है जैसा कि उन्हें होना चाहिए, क्योंकि पूर्णता प्राप्त नारी के सभी भारतीय आदर्श एकमात्र सीता के जीवन में केंद्रीभूत है, और वे हजारों वर्षों से पूरे आर्यवर्त के हर नर नारी तथा बालक की पूजा ग्रहण करती हुई विराजमान है।
0: स्वामी जी के लिए आदर्श नारी केवल कोमल पवित्र गुणों का आधार ना होकर साथ साथ वीरांगना भी होनी चाहिए।
2: पवित्रता के बारे में वे निरंतर बोलते रहते, परंतु उसके साथ ही कभी कभी एक अन्य गुण का भी आभास देते जो सीधे सीधे नारीत्व से संबंधित नहीं है। तथापि वे जो कहानियां बताते उनसे हम समझ जाती थी कि उनके मतानुसार उसके बिना नारी का भी रूप परिपूर्ण नहीं होगा। वे बारंबार उस राजपूत पत्नी की कथा बताते जिसने अपने पति को कवच पहनाते हुए कहा था, या तो तुम इस कवच के साथ आना या फिर वीर गति को प्राप्त होकर लौटना। कितनी सजीवता के साथ वे राजपूत महारानी पद्मिनी की गाथा सुनाते। वो परम सुंदरी अपने समस्त रूप लावण्य कांति मृदुता के साथ हमारे सम्मुख जीवंत हो उठती। उस वीर जाति की प्रत्येक नारी आक्रांता की कामुक दृष्टि का सामना करने के स्थान पर मृत्यु का आलिंगन करने को दौड़ पड़ती थी। अपने प्रियतम के प्राणों के लिए भय से कांपती हुई अबला के प्रति सहानुभूति जताने के स्थान पर वे कहते, एक राजपूत पत्नी के समान बनो।
1: स्वामी जी कभी किसी की कटु आलोचना नहीं करते थे। वे प्यार तथा समझाइश द्वारा सुधार करने में विश्वास करते थे।
2: काफी काल बाद हमें पता चला कि वे सभी भले बुरे पक्षों पर विचार करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। इसका ये तात्पर्य न था कि एक पक्ष पूरी तौर से सही है और दूसरा पक्ष पूरी तौर पर गलत, बल्कि ये कि पलड़ा एक के पक्ष में जरा सा झुका हुआ था, और वो भी शायद समय की जरूरत के कारण। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद वे उस विषय पर चर्चा करना बंद कर देते और इन निष्कर्षों को कार्य रूप में परिणित करने का कोई उपाय सोचने लगते। नेताबान को वे क्षतिकर मानते थे। उनका विचार था कि निंदा पर आधारित सुधार की चेष्टा से लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है, क्योंकि ऐसे सुधार कार्य सर्वदा छिद्रान्वेषण से ही आरंभ होते हैं, और विशेषकर भारत जैसे देश की एकता के लिए तो ये घातक होगा।
0: शिष्यों के साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते समय विवाह प्रथा पर भी वे अपना विचार व्यक्त करते थे।
2: इसके बाद अपरिहार्य रूप से निकट भविष्य में आने वाले सामाजिक परिवर्तनों के बारे में सोचते हुए वे पूछते, कौन सा विवाह अच्छा है? भारत जैसा नियोजित विवाह या फिर पश्चिम जैसा व्यक्तिगत चुनाव पर आधारित विवाह? पर हमारे देश के युवक अभी से अपने लिए पत्नियां चुनने का अधिकार मांग रहे हैं, फिर कहते क्या अंतर जातीय विवाह उचित है? अब तक दोनों प्रजातियों के निकृष्ट लोगों ने मिलकर एक अभागी प्रजाति की सृष्टि की है। यदि दोनों जातियों के श्रेष्ठ लोगों को जोड़ा जाए, इसका क्या परिणाम होगा? संभव है इससे अति मानवों की एक प्रजाति उत्पन्न हो, क्या ऐसा होगा?
1: स्वामी जी स्वप्न दृष्टा थे। अमेरिका में रहते समय ही वे भारत में बनने वाले आदर्श आश्रम की कल्पना करते थे।
2: सहस्त्र द्वीपोद्यान में निवास करते समय स्वामी जी भविष्य के लिए योजनाएं बनाए करते थे। ये योजनाएं न केवल उनके भारतीय शिष्यों तथा वहां के कार्य के विषय में होती, अपितु उनके उन अमेरिकी अनुयायियों के विषय में भी होती जो भविष्य में कभी भारत जाने की आशा रखते थे। उस समय हमने सोचा था कि उनकी ये योजनाएं दिवा स्वप्न मात्र है। एक दिन वे बोले, भारत में एक द्वीप पर तीन तरफ से समुद्र से घिरी हुई हमारी एक सुंदर जगह होगी। उसमें निर्मित छोटी छोटी गुफाओं में से प्रत्येक में दो लोगों के रहने का स्थान होगा, और गुफाओं के बीच स्नान के लिए एक कुंड होगा तथा हर गुफा में पेयजल लाने वाले नल की व्यवस्था होगी। सभागृह के लिए खुदाई द्वारा अलंकृत स्तंभों वाला एक हॉल होगा, और उपासना के लिए एक और भी विशाल चैत्य हॉल होगा। आहा, वो स्थान क्या ही सुखमय होगा। उस समय ऐसा लगा मानो वे हवाई किले बना रहे हों। हम में से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस कल्पना को कभी साकार किया जा सकेगा।
0: स्वामी जी साहसी बलशाली जनता का गठन करना चाहते थे। गुरु पर विश्वास और संपूर्ण समर्पण उनका ध्येय था।
2: वे बारंबार गोविंद सिंह की कथा बताते, जिन्होंने अपने शिष्यों की कठिन परीक्षा लेते हुए पूछा था कि उनमें से कौन मृत्यु पर्यंत उनमें विश्वास रख सकेगा। एक उठकर सामने आया, वे महान नेता उसे अपने तंबू में ले गए और कुछ मिनटों बाद हाथों में लहू टपकती हुई तलवार लिए बाहर आए। पुनः उन्होंने उनके विश्वास को चुनौती दी और पुनः एक उठकर उनके साथ तंबू में गया और वापस नहीं लौटा। यही घटना कई बार दोहराई गई और पांच लोग तंबू में जाकर नहीं लौटे। इसके बाद उन्होंने तंबू का पर्दा हटा दिया और सबने देखा कि उनके साथी सुरक्षित तंबू में बैठे हैं, और वही गुरु द्वारा मारा हुआ एक बकरा पड़ा था। मृत्यु पर्यंत श्रद्धा रखने वाले ऐसे शिष्यों के साथ गुरु गोविंद सिंह ने जो महान कार्य संपन्न किए, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। क्योंकि स्वामी जी प्रायः ही कहा करते थे, गुरु अद्भुत हो और शिष्य भी अद्भुत हो।
1: स्वामी जी विदेश भ्रमण समाप्त कर भारत लौट आए और बेलूड़ मठ की स्थापना की और भी कई संस्थानों को रूप दिया। अंतिम समय आने तक उनका कार्य लगभग पूरा हो चुका था।
2: उनका बहुत सा कार्य समाप्त हो चुका था। वे अमेरिका तथा इंग्लैंड में और जर्मनी तथा फ्रांस तक में अपने संदेश प्रचार कर चुके थे। वे गंगा तट पर भूमि खरीदकर एक मठ की स्थापना कर चुके थे। वे प्रचार केंद्रों, शिक्षण संस्थानों, अनाथालयों, अकाल तथा बाढ़ राहत कार्यों का गठन कर चुके थे। वे केवल 39 वर्ष के थे और जानते थे कि उनकी महासमाधि मुक्ति आसन्न है। 4 जुलाई 1902 को वो दिन आ पहुंचा।
0: स्वामी जी केवल भारत के लिए ही नहीं, वे तो संपूर्ण विश्व के लिए थे। एक नया विश्व गढ़ने का प्रयास किया था। वर्तमान युग को जिस संदेश की परम आवश्यकता है वो किसने दिया है? इस संदेश को किसी राष्ट्र विशेष के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए होना चाहिए। वो कौन सा संदेश है जिसने नवीन आध्यात्मिक युग का श्री गणेश किया हो, जिसने एक ऐसी ज्योति का प्रादुर्भाव किया हो जो कभी बुझाई ना जा सकेगी, जिसने एक ऐसी शक्ति को उन्मुक्त कर दिया हो जो एक नए स्वर्ग तथा एक नई पृथ्वी का निर्माण करेगी? केवल भविष्य ही इसका निर्णय कर सकेगा।
1: भगिनी क्रिस्टीन के लेखों से हमें विवेकानंद का एक संपूर्ण चित्र मिलता है। वे विदेशिनी थी पर स्वामी जी से मिलने तथा दीक्षा लेने के बाद भारतीय रंग में डूब गई थी। भगिनी क्रिस्टीन हम भारतीयों से भी ज्यादा भारतीय मानसिकता की अधिकारिणी थी। उन्हें हम नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब हमारी सभा समापन की ओर है, तो चलते चलते हम आपको बता रहे हैं कि कल यानी 9 जुलाई गुरुवार को आप हमारी सुबह की सभा में कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। सुबह 7 बजे जब सभा आरंभ होगी, आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ सुनिएगा हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। 7:20 से लीजिएगा भक्ति संगीत का आनंद। सुबह 8 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम वतन का राग का। कल ये कार्यक्रम सितांशु दत्त रॉय पर आधारित होगा। सुबह 8:30 का वक्त होगा कार्यक्रम बाल सभा का। कल बाल सभा में विषय है नशे का साथ जिंदगी का नाश। सुबह 9 आप सुनिएगा हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा घर। कल इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कारगिल युद्ध का भाग 2। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से चर्चा की है इस कार्यक्रम में पूर्वा खले ने। सुबह 9:30 सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, कल हमारे विशेष कार्यक्रम में रेडियो आजाद हिंद की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है तीजन बाई को। सुबह 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान। श्रोताओं, कल जिस संस्थान को हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है वो है BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। सुबह 10:30 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा, जो कि आधारित होगा असित भट्टाचार्य पर। दिन में 11 पेश की जाएगी रेडियो रिपोर्ट और साथ ही साथ आप सुनेंगे परिक्रमा। दिन में 11:30 सुनिएगा हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए और दीजिए अनुमति अब इस सभा से पूर्वा खले को। नमस्कार।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं, अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।